0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 364.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वररंजनी, जिसमें आज आपने सुना धुरपद पर राग भैरव। कलाकार थे प्रभाकर नारायण पाठक। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद आप सुन सकते हैं 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं।

0: इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नई दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The 18th BRICS Summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The 2-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit.

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 6:10 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

सुबह के 6:27 और 30 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे सरोजनी नायडू के विचार।
1: सरोजिनी नायडू अपने घर की छोटी सी दुनिया में बहुत सुखी थी। वो घर परिवार, मेहमान, रिश्तेदार सभी का बहुत ख्याल रखती। कभी किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। एक बार उनके गहरे मित्र गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, तुम अपने घर संसार में बहुत सुखी नजर आती हो, पर न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आँखें, तुम्हारा मन कुछ और ही चाहते हैं। इतना सुनते ही सरोजिनी नायडू अपने मन की बात दबा नहीं पाई और बोली, सारा देश भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने में जी जान से लगा है। कहीं कोई अपना बलिदान दे रहा है तो कोई आमरण अनशन कर रहा है। ऐसे में मैं अपने घर के सुखों का आनंद ले रही हूँ। ये सुख मुझे अंदर ही अंदर

0: आता रहता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सरोजिनी नायडू की बात सुनकर उन्हें अपने जीवन और गीतों को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया और गांधी जी से उनकी मुलाकात करवाई और फिर सरोजिनी नायडू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक कर्मठ स्वयंसेवक के रूप में देश की आजादी के लिए वो आगे आ गईं। सरोजिनी नायडू का स्वास्थ्य कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहता था और सभी के मना करने के बावजूद भी जिम्मेदारी अपने सर पर लेना ही नहीं बल्कि उस जिम्मेदारी को सही परिणाम तक पहुंचाना भी उन्हें भली भांति आता था। हुआ ये कि सरोजिनी नायडू की तबीयत बहुत खराब थी। सन 1919 में पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ जिसे लेकर समस्त देश में क्रोध भड़क उठा और इस पाशविक अत्याचार के विरोध में सरोजिनी नायडू ने अपना कैसरे हिंद का खिताब वापस कर दिया और गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। पर वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इसमें शामिल हों। खासकर सरोजिनी नायडू का बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य देखकर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि वो सत्याग्रह में भाग न लें। पर सरोजिनी नायडू ने तो अपना जीवन इस देश के नाम कर ही दिया था, तो वो कैसे अपने आप को इस सत्याग्रह से दूर रख पाती? वो पूरी तरह से सक्रिय होना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने गांधी जी को हर तरह से बहुत मनाने की कोशिश की। गांधी जी जानते थे कि इस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार हिंसा का सहारा लेगी, जो महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। और अभी जलियांवाला कांड का रक्त भी नहीं सूखा और फिर से कुछ ऐसा हो, इसके लिए गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को सत्याग्रह से बाहर रखा। पर वो धुन की पक्की थी। उन्होंने गांधी जी को देश पर मर मिटने के लिए झांसी की रानी, चांद बीबी, रजिया सुल्तान ऐसी बहुत सी महिलाओं के उदाहरण दे दिए। अपने महिला मित्रों के साथ मिलकर गांधी जी के सामने दृढ़ता से कहा, अपना कर्तव्य समझती हूँ कि अपनी महिला सदस्यों के साथ मिलकर सत्याग्रह में भाग लूं। इस आग्रह के आगे गांधी जी को झुकना पड़ा। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात में धरासभा में लवण पटल की पिकेटिंग करते हुए जब तक वो स्वयं गिरफ्तार नहीं हो गई, तब तक वो सत्याग्रह आंदोलन का संचालन करती रही। धरासभा में पुलिस ने शांतिमय और अहिंसक सत्याग्रहियों पर घोर अत्याचार किए, पर सरोजिनी नायडू ने उस परिस्थिति का बड़े साहस के साथ सामना ही नहीं किया बल्कि अपने बेजोड़ विनोदी स्वभाव से वातावरण को भी सजीव बनाए रखा और अपनी गिरफ्तारी होते ही उन्होंने हंसते हुए कहा, अंग्रेज सरकार को मेरा कितना ख्याल है कि उसने मुझे कुछ दिन का आराम देने के लिए अपनी कैद में रख लिया है। उनके इस विनोदी स्वभाव के चलते मुश्किल से मुश्किल तकलीफ भी उनके साथ रहते हुए सब लोग भूल जाते थे।
1: अभी आप कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 45।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ ना हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है,

दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

0: अभी आप रामचरितमानस भाग 45 सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवाद विधेहे बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शांतिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्ष मंडलस्य पूर्णं सुदृढं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतानि वक्तव्यानि फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the

0: एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीय शिखर सम्मेलने ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारतम्, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात इत्येतं समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार, सहकार, सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ, चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ, दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ, मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्देल फतह अल सीसी, इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रब्रुवो सुबियांतो, ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ, अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान इत्यसौ, अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षी बलेन संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुख मार्गेषु यातायाते परिवर्तनं नियन्त्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत। आरक्षी बलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाश्च सेवाः प्राथम्यं भजेरन्। सममेव दिल्ली मेट्रोयान विभागेनापि आवश्यकाः सूचनाः प्रसारिताः। अन्ते च क्रीडा वार्तासु, महिला क्रिकेट एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्य चक्रे गतरात्रौ भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये समायोजितवे द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेश दलं 40 धावनांकैः पराभूय एशिया चषक स्पर्धायाः निर्णायके चक्रे स्थानं संप्राप्तम्। दुबई नगरे अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रांगणे समायोजिते एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता स्पर्धा विजिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपद, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत

0: यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचर से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमरीका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank, Dilma Rousseff, are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi police has informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi today from 2 p.m. to 8:30 p.m. During this period, Sardar Patel Marg, Teen Murti Marg, 30 January Marg, Rajesh Palat Marg, Subramaniam Bharti Marg, Mathura Road, Motilal Nehru Marg, Dr. Zakir Hussain Marg, Africa Avenue Road, Shanti Path, Janpath, अशोका।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आज आप सुनेंगे सुमन देवगन के गाए भजन। सितार पर हैं खालिद मुस्तफा, कीबोर्ड पर हैं BD पवार, हारमोनियम पर हैं दामोदर लाल घोष और तबले पर संगत की है शिवित भारद्वाज ने। आइए सुनते हैं सुमन देवगन के गाए भजन।

अभी आप संगीतिका कार्यक्रम में सुमन देवगन के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस खूबसूरत और ताजगी भरी सुबह में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो तो पूरा दिन बेहतरीन हो जाता है। और हम भी आ गए हैं आपके साथ, और अब आप भी उठ जाइए क्योंकि हमारा प्रोग्राम सुनकर आपका दिन भी अब बेहतरीन होने वाला है।

दोस्तों, लगता है कि हमने आपको उठा तो दिया ही है, और अब उठ जाइए और शुरू हो जाइए अपने काम पर। और देखा होगा दोस्तों आपने कि हम जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और सीखने की इच्छा हमेशा ही होनी चाहिए। जहां आपने ऐसा समझ लिया कि मुझे सभी कुछ आता है और मुझे सब कुछ पता है, समझो वहीं आपकी तरक्की का रास्ता हमेशा के लिए रुक गया।

बिल्कुल दोस्तों, ज़िंदगी आपकी बात ज़रूर सुनेगी, बस ये है कि आपको हमेशा खुश रहना होगा और मुस्कुराहट हमेशा लबों पर होनी चाहिए। सुबह की नर्म धूप और फूलों की मुस्कान, सुबह की नर्म धूप और फूलों की मुस्कान, मुबारक हो आपको ये खूबसूरत नया जहां। खुदा करे आपका हर दिन यूं ही खिलता रहे, लबों पर आपके हमेशा रहे प्यारी सी मुस्कान।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आपका एक बार फिर से स्वागत है।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

दोस्तों, हर सुबह एक नया पैगाम लाती है और ज़िंदगी हमें एक और नई सुबह से मिलवाती है। मत बांटो अपने गम को अंधेरे में, हर सुबह नई उम्मीद का दीप जलाती है। उठो, मुस्कुराओ और ये ठान लो कि आज का दिन सबसे बेहतरीन बनाना है। बीते हुए कल को छोड़ो पीछे, आज एक नया इतिहास रचाना है।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स

0: शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इन्क्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें ये तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: govin पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
4: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR News Hindi और पब्लिक पर एट AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
6: धन्यवाद।

0: भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है, ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है, बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And the news in detail. The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The president of South Africa is set to arrive this morning.

0: gold, 2 silver and 1 bronze on the opening day of the event at Changwon in South Korea yesterday. The Indian women's team of Moona Agarwal, Avni Lekhara and Millie Shah clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. Moona Agarwal also won silver in the individual event while Avni Lekhara got bronze. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Shagun. The Asian Age headlines, PM backs safe space for benefits for all humanity at Paris summit, lauds ISRO and scientists, invites world to join India's space research, the paper adds. Indian space station by 2035, moon landing by 2040, says Modi. India turns diplomatic hotspot as BRICS leaders to share stage is a front page headline in the Tribune. The paper adds the national capital is set to become the center of global diplomacy. And finally, the Pioneer informs an ensemble of over 100 artists drawn from India and other member countries of BRICS is set to perform at a gala dinner that Prime Minister Narendra Modi will host for various world leaders on the opening day of the group's summit. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India as a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैन अल-अक़वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक किलीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC NET जून 2026 के अंग्रेजी कॉमर्स और सोशियोलॉजी के फिर से कराए गए इम्तिहान की उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। और क्रिकेट में दुबई में भारत पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर खवातीन एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। कौमी राजधानी में इस अहम तकरीब के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इस दो रोजा सरबराह मीटिंग में 11 उभरती हुई बड़ी और तरक्की पजीर मईशतों वाले मुल्क शिरकत करेंगे। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। भारत की सदारत में होने वाली सरबराह मीटिंग का मौजू है मजबूत इख्तरा तावुन और पायदार तरक्की का कयाम। इस सरबराह मीटिंग में मुख्तलिफ आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। इनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेदशकियान, अबू जहबी के वली अहद शहजादे, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन-नहान और इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली शामिल हैं। ब्राजील की नुमाइंदगी वहां के वजीर खारजा माउरो वियरा करेंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अस-सऊद भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हुंग उन सरबराहान ममलुकत में शामिल हैं जो इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। इधर अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनॉम गेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदर

0: ने राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें और अब अखबारात कहने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के इनेकाद से मुतालिक खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, दिल्ली ब्रिक्स सरबराह इजलास के लिए तैयार, मेहमानों की आमद शुरू। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत की डिप्लोमेसी का असर, ट्रंप समेत पूरी दुनिया की ब्रिक्स समिट पर नजर। इसी अखबार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी नुमाया किया है कि भारत तरक्की और अमली तआवुन को तरजीह देना चाहता है। वजीर आजम मोदी की इस्माइली तबके के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की खबरों को अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। इसके अलावा अहम बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, यमन में हौसियों का बुहरे अहमर के साहिली शहर मोखा पर कब्जा, ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाब जीतने पर हर अमरीकी शहरी को $5,000 देने का वादा किया।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैन अलाक्वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के कयाम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। और क्रिकेट में दुबई में भारत पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर ख्वातीन एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 8:45 और 16 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन राग शुद्ध सारंग में। तबले पर हैं आशीष मिश्रा और हारमोनियम पर संगत की है जाकिर ढोलपुरी ने।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप राकेश पाठक का गायन सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में। तबले पर थे आशीष मिश्रा और हारमोनियम पर संगत की थी जाकिर धोलपुरी ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। आलेख एवं स्वर मुनीश कुमार शर्मा।
1: 20वीं शताब्दी को युद्धों की शताब्दी कहा जाता है। इस सदी में दो विश्व युद्ध हुए, करोड़ों लोग मारे गए और दुनिया ने परमाणु बम की विभीषिका भी देखी। ऐसे समय में एक दुबले पतले बैरिस्टर ने बिना सेना, बिना पैसा, बिना हथियार के पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने राजनीति को शक्ति का खेल से नैतिकता का धर्म बना दिया। उनके दो सिद्धांत सत्य और अहिंसा ने न सिर्फ भारत को आजाद कराया बल्कि तत्कालीन विश्व राजनीति की पूरी धारा बदल दी। आज भी जब दुनिया में कोई अन्याय होता है तो लोग बंदूक नहीं उठाते, गांधी जी की तस्वीर लेकर सड़क पर उतरते हैं। गांधी जी के लिए सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं था, उनके लिए सत्य ही ईश्वर था। वे कहते थे, सत्य के रास्ते पर चलने वाला कभी हारता नहीं। बल्कि अहिंसा का अर्थ केवल मारपीट करना नहीं था, अहिंसा का अर्थ था विरोधी से भी प्रेम करना, नफरत को प्रेम से जीतना। आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। 20वीं सदी की राजनीति जो बंदूक और बम पर टिकी थी, गांधी जी ने उसे नैतिकता और आत्मबल पर खड़ा कर दिया। 1947 से पहले दुनिया के अधिकांश देश यूरोप के गुलाम थे। सबका मानना था कि गुलामी से मुक्ति सिर्फ हिंसक क्रांति से मिलेगी, लेकिन गांधी जी ने 1919 से 1947 तक चंपारण, खेड़ा, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन सब कुछ अहिंसा से लड़ा और 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत की आजादी की खबर ने एशिया और अफ्रीका में आग लगा दी। इंडोनेशिया, वियतनाम, घाना, कीनिया, नाइजीरिया के नेताओं ने कहा, अगर भारत बिना खून बहाए आजाद हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। इस तरह 1947 से 1970 के बीच 50 से ज्यादा देश आजाद हुए। इतिहासकार इसे गांधी प्रभाव कहते हैं। गांधी जी उपनिवेशवाद को खत्म करने के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने। 1950 से 60 के दशक में अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव चरम पर था। उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, अलग स्कूल में पढ़ना

पड़ता था। उस समय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर नाम के एक युवा पादरी सामने आए। वे भारत आए, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पढ़ी। उन्होंने कहा, मैंने गांधी जी से सीखा है कि प्रेम नफरत को पराजित कर सकता है। फिर उन्होंने 381 दिन तक बस का बहिष्कार किया। वाशिंगटन में शांतिपूर्ण मार्च निकाला, पुलिस ने लाठी मारी, जेल में डाला, लेकिन उन्होंने एक पत्थर नहीं उठाया। 1964 में अमेरिका में सिविल राइट एक्ट पास हुआ, अश्वेतों को समानता और वोट का अधिकार मिला। आज भी अमेरिका में किसी भी शांतिपूर्ण विरोध को गांधीयन टेक्निक कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1994 तक रंगभेद यानी जातीय भेदभाव चरम पर था। गोरे लोग काले लोगों को इंसान नहीं मानते थे। नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया। जब वे 1990 में जेल से बाहर आए तो पूरी दुनिया को लगा अब खून खराबा होगा, लेकिन मंडेला ने कहा, नहीं, गांधी ने हमें सिखाया है कि दुश्मन को भी माफ करना पड़ता है। उन्होंने बदले की जगह सुलह और मेल मिलाप की नीति अपनाई। 1994 में बिना एक गोली चलाए रंगभेद खत्म हुआ और मंडेला दुनिया के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मंडेला ने कहा था, यदि गांधी जी न होते तो दक्षिण अफ्रीका आजाद नहीं होता। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, 6 करोड़ लोग मारे गए। तब दुनिया ने महसूस किया कि युद्ध मानवता के लिए खतरा है। इसी सोच के साथ संयुक्त राष्ट्र बना। यूएन के चार्टर की पहली लाइन है, हम आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाएंगे। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, उसमें अहिंसा, समानता, धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई। ये सब गांधी जी के विचार ही थे। आज भी जब रूस, यूक्रेन या इजराइल, फिलिस्तीन में लड़ाई होती है तो यूएन सबसे पहले कहता है, बातचीत करो, सीधे हमला नहीं। यह अहिंसा का ही विस्तार है। 1990 के बाद दुनिया में एक नई तरह की क्रांति शुरू हुई। इसमें जनता ने बिना हिंसा के तानाशाह को हटाया। पीपल पावर रिवॉल्यूशन में लाखों लोग फूल लेकर सड़क पर आए और फिलीपींस का तानाशाह मार्कोस भाग गया। छात्रों ने आउटपोर आंदोलन चलाया और यूगो स्लाविया के तानाशाह मिलोसेविक को बिना हिंसा के हटाया। इन सभी में गांधी वाला तरीका था, धरना, हड़ताल, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं। 9/11 के बाद दुनिया ने सोचा कि आतंकवाद का जवाब सिर्फ बम और मिसाइल है। अमेरिका ने 20 साल तक वार ऑन टेरर चलाया, लेकिन अंत में दुनिया समझ गई कि नफरत से नफरत खत्म नहीं होती। आज G20 सार्क जैसी बैठकों में सबसे पहले संवाद की बात होती है। हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर की बात होती है, यानी लोगों का दिल जीतना। यह सोच सीधे गांधी जी की अहिंसा से आई है। आज की सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है। इस लड़ाई में भी गांधी जी प्रासंगिक हैं। महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं, लेकिन एक पत्ता नहीं तोड़ा। ग्रेटा थनबर्ग के नेतृत्व में बच्चे हर शुक्रवार स्कूल न जाकर मार्च करते हैं। प्रकृति हमारी जरूरत पूरी करती है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज दुनिया वही कर रही है। आज भारत दुनिया में बुद्ध और गांधी की धरती के नाम से जाना जाता है। हमारी विदेश नीति का मूल मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। जब भारत पाकिस्तान से बात करता है तब हम यूएन में सबसे ज्यादा शांति सेना भेजते हैं। कोरोना में 150 देशों को दवाइयां भेजते हैं। ये सब गांधी जी की विश्व बंधुत्व वाली सोच है। इसे आज भारत की सॉफ्ट पावर कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 21वीं सदी में अहिंसा बेकार है, आतंकवादी बंदूक से बात करते हैं, लेकिन इतिहास इसका जवाब

0: जवाब देता है। 1947 में भी लोग यही कहते थे कि अंग्रेज बंदूक के बिना नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। 2011 में अरब देशों में तानाशाह शांति से हारे। इसका मतलब है कि समय बदलता है, हथियार बदलते हैं, लेकिन सत्य और अहिंसा की ताकत कभी नहीं बदलती। कहा जा सकता है कि गांधी जी ने विश्व राजनीति को एक नया आयाम दिया। उन्होंने राजनीति को सत्ता पाने का साधन से जनसेवा का धर्म बना दिया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत मिसाइल नहीं नैतिकता है, सबसे बड़ा हथियार टैंक नहीं सत्य है। आज भी जब दुनिया में कहीं अन्याय होता है तो लोग गांधी जी की राह चुनते हैं, क्योंकि गांधी जी ने हमें सिखाया कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सत्य और अहिंसा के बल पर दुनिया बदल सकता है। यदि मानवता को बचाना है तो उसे गांधी जी के रास्ते पर चलना ही होगा।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। आलेख एवं स्वर मुनीश कुमार शर्मा।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन की तैयारियां अंतिम रूप में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
2: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य सेवाएं बहाल रहेंगी। ब्रिक्स व्यापार मंच का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस एक दिन के कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। एक बयान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद ये बयान आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजेक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मुख्य कारण सेवाएं और निर्यात में हुई वृद्धि है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 की जून की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में कल हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में

घड़ी की सुई ने वक्त बताया है 10:10 और पूरे हो चले हैं ये 30 सेकंड। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्मी संगीत, आपकी फरमाइश। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा, और आपसे कहूँगी कि आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए, क्योंकि खूबसूरत सी जो महफिल सजी है ना, उसमें बहुत ही खूबसूरत गीत हैं। और मैं जानती हूँ कि मैं तो आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, और ये प्यारे प्यारे गीत भी हमारे साथ हैं। चलिए सुन लेते हैं ये पहला गीत और फिर करते हैं आपसे बहुत सारी बातें।

भाई हमने आओ कहा और हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो हमारे साथ जुड़ गए। और वैसे गीत की अगर बात करें ना, तो कहते हैं ना कि जो कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। और कभी-कभी कोई धुनें जो है वो हमें अपने बीते दिनों में ले जाती हैं, और कोई धुन जो है वो हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देती है, और ये एक लिस्ट सी बन जाती है हमारे दिमाग में कि ये गीत हमें पसंद है और ये गीत हमें पसंद है और कुछ बेहद पसंद है ना। फिलहाल बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे गीतों की बातें हैं, लेकिन आपके संदेश जो है वो आ गए हैं, उन्हें हमें शामिल करना है और हम शुरू करते हैं। संदेश बहुत से आ रहे हैं, हमें जो संदेशा भेजा है वो है सतीश अनेजा जी, और ये लिखते हैं, नमस्कार ज्योति जी, आपको भी नमस्कार। और ये लिखते हैं कि नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। क्या बात है। इनके साथ हैं विमल अनिजा जी, ये जुड़े हमारे साथ चंडीगढ़ सिटी से। उसके अलावा हमारे साथ ये जुड़े हैं जो दोस्त हमारे छत्तीसगढ़ से, ये हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। और एक और हमारे दोस्त जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसार और नरगिस खातून। ये जुड़े हमारे साथ जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। और अगले जो हमारे साथी हैं वो जुड़े हैं उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और ताज मोहम्मद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से ये हमारे साथ जुड़े हैं। और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से जुड़े हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। और ये कह रहे हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो। बिल्कुल आपका भी खुशियों से भरा हो। और हरजिंदर सिंह जी ने एक बार फिर से संदेशा भेजा है। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये जुड़े हैं हमारे साथ कृष्णा कॉलोनी से। इनके साथ हैं सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ये हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़े हैं हमारे साथ, जमशेदपुर से जुड़े हैं ये हमारे साथ। और अगले जो साथी हैं हमारे साथ ये हैं ओम प्रकाश जी, और ये ओम प्रकाश राय जी हैं। इनके साथ हैं श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। और जिला गाजीपुर से भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक।

कुछ लोग तो शब्दों में बयां कर पाते हैं और कुछ अंदर ही अंदर मुस्कुरा कर उसे बयां करते हैं। खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप बता सकते हैं किसी अपने को। चलिए फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे साथ साथ जो जुड़े हैं वो हमारे दोस्त कौन कौन हैं। हमारे साथ जुड़े हैं योगेश शर्मा जी, दुर्गेश शर्मा, रजनी शर्मा, वसुधा शर्मा, रोहन शर्मा, रिया शर्मा, आन्या शर्मा, आर्यन शर्मा, प्रणवी शर्मा, अमित शर्मा और पूरी शर्मा फैमिली। ये जुड़ी हमारे साथ मोती बाग आनंद निकेतन से। और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं दिशा शर्मा, अंकित शर्मा, लव शर्मा, मोहित शर्मा, रविंदर शर्मा, सुशील शर्मा और प्रवेश शर्मा। ये भी हमारे साथ मोतीबाग से ही जुड़े हैं। उसके अलावा सौरव, नितिका, अद्रित, अशोक शर्मा, कुपला शर्मा, ये जुड़े हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं ये जो हमारे दोस्त हैं रवि कुमार, ये जुड़े हैं राहुल, इनके साथ हैं रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीत राहुल और गुरशब्द राहुल, ये जुड़े हैं अम्बाला हरियाणा से। और उसके बाद संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये जुड़े हैं हमारे साथ, इनके साथ हैं और भी हमारे दोस्त, ये जुड़े हमारे साथ जलंधर से। और एक और जो दोस्त हैं जिन्होंने संदेशा भेजा है ये हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ इतने सारे दोस्त जुड़े हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारे दोस्त कह रहे हैं कि उन्हें गीत पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड से। और उत्तम कुमार भगत जी जुड़े हैं, इनके साथ हैं श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, ये जुड़े हैं हमारे साथ झारखंड से। और रविंद्र मोहनदास जी जुड़े हैं किशनगंज बिहार से, इनके साथ हैं आशा देवी। और अगला गीत जो है ना वो कह रहा है कि उसे सुन लिया जाए, उसके बाद बाकी हमारे दोस्तों के संदेश शामिल हो गए। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दोस्त संदेशा भेजना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता है कैसे भेजना है, तो आप कर सकते हैं ये ईमेल एड्रेस नोट। ईमेल है ip.radio.delhi@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, ip.radio.delhi@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और हम करेंगे आपके संदेश शामिल।

वैसे मेरे जैसे इंसान को ना चुप रहना उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ कभी कभी खामोश रहना अच्छा लगता है, क्योंकि खामोशी भी ना एक सुकून देती है, और वो ऐसा सुकून देती है ना कि आपको जो कश्मकश आपके दिल में चल रही होती है ना, उसे कहीं ना कहीं छूमंतर कर देती है। फिलहाल बहुत सारे संदेशे हैं जो हमारे पास हमें मिल रहे हैं, और गुड़गांव से भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दोस्त, ये हैं नीना प्राशर, महेश प्राशर, शोभित प्राशर, और इनके साथ नमस्वी और पूर्वा भी हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं। उसके अलावा फरीदाबाद से हैं नरेश लखनपाल, चंचल लखनपाल और ध्रुव जुड़े हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। उसके अलावा सुधाकर जादव भी हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ हैं डॉक्टर प्रशांत राजे और कुमार संचित देशमुख हमारे साथ जुड़े हैं जाफराबाद से, और कोमल मेहरा हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ हैं कृष्ण मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, ये जुड़े हैं भिवानी से। और एक संदेशा जो हम तक पहुंचा है वो है मोहम्मद सैयद अब्बासी जी, और इनके साथ है निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, ये जुड़े हैं अपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से हमारे साथ। और बिट्टू भाटिया जी जुड़े हैं, रीटा भाटिया

भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ये जुड़े हैं झज्जर हरियाणा से, और आर कुमार जी जुड़े हैं, ये आर कुमार जी कौन है, बड़े पंजाब से हैं, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं शंभू दयाल जी, और इनके साथ हैं विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, ये जुड़े हमारे साथ राजस्थान से। और जो हमारे अगले श्रोता है ताज मोहम्मद जी, ये एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, दिग्दर्शन गौर जुड़े हमारे साथ, और पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ हैं ये जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अगले जो हमारे दोस्त हैं वो है निसार अली, निसार अली के साथ हैं नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, और ये हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। और एक और संदेशा हम शामिल कर लेते हैं, ये कौन जुड़े हमारे साथ पहाड़गंज से, हाँ अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप मकर जी जुड़े हैं एक बार फिर से हमारे साथ जलंधर से, और हमारे एक और दोस्त हैं, ये हैं अहमद फूलवाले, और इनके साथ है दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापरसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से जुड़े हैं बिटिया आमना, नसरीन, आसमा, परी, राबिया, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली। वाकई जब सब लोग साथ मिलकर सुनते हैं ना ऐसा कोई कार्यक्रम तो बहुत मज़ा आता है। और अब एक और प्यारा सा गीत जो आपके अंदर थोड़ा सा जोश भी भर देगा।

गाने ऐसे होते हैं ना जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें सुनने के साथ साथ हरकत यानी डांस करने का भी मन करता है ना। तो चलिए, अगर आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल मौका मत गंवाना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अब कर

सुबह सुबह नींद जो है ना, वो कहते हैं ना, इतनी ज्यादा आती है कि दिल करता है सोते रहे, है ना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ कैसा होता है ये आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल हमें संदेश मिल रहे हैं और अगला जो संदेश हमें भेजा है ये है गुड़गांव से स्तुति और देवांश, और राजपुरा से जुड़े हैं हमारे साथ दिनेश जोशी, बेबी जोशी, हरीश जोशी, सोनिया जोशी और जोशी फैमिली, और उसके अलावा आनंद निकेतन से जुड़े हैं हमारे साथ पंकज, रुचिका, शानवी और दित्या, और अशोकनगर से जुड़े हमारे साथ अभिषेक अग्रवाल, शिल्पा शर्मा, और हमारे साथ जुड़े हैं एक हमारे दोस्त, ये लिख रहे हैं हमारे ईमेल पर भी गौर कीजिएगा, बिल्कुल हमने गौर किया, ये महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल खोले, छाया खोले और प्रियांश, और ये लिख रहे हैं धन्यवाद, बिल्कुल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और साथ ही बिहार से जुड़े हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, और राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ है प्रमोद कुमार दुदी, पुष्पेंद्र कुमार, और ये जुड़े हैं हिसार से। और अगले जो हमारे दोस्त जुड़े हैं वो हैं तन्वी बोट, निखिल, बबीता बोट और सीताराम, ये जुड़े हैं एकता कॉलोनी रोहतक से, और हमारे साथ जुड़े हैं ये राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, और ये लिख रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और इन्हें गीत भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम कतार में हैं, अपने इंतज़ार में हैं। बिल्कुल देखिए, आपका इंतज़ार ना हमने ख़त्म कर दिया है और आपको हमने आपके नाम को शामिल कर लिया, आप तो शामिल हैं ही। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता, ये जुड़े हैं हमारे साथ बक्सर से, और एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये हैं जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष और आयुषी, और साथ ही सानवी गुप्ता भी इनके साथ हैं, और मुकेश कश्यप जी हमारे साथ हैं, इनके साथ हैं शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, ये जुड़े हैं हमारे साथ जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। और हरजिंदर सिंह जी लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आपको भी सत श्री अकाल, आपने मेरा सिर्फ सिंगल नेम पढ़ा है। अरे जी नहीं, आपके साथ जो दोस्त हैं उनका भी नाम हम पढ़ रहे हैं, ये जुड़े हमारे साथ जमशेदपुर से, इनके साथ हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, के साथ हैं एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया, और ये लिख रहे हैं शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता भी हमारे साथ।

जुड़े हैं। और एक और संदेशा हम शामिल कर लेते हैं, ये हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हैं ये हैं जगमोहन सिंह जी, और इनके साथ हैं श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन और रामानंद कश्यप, ये जुड़े हमारे साथ बागपत से, और रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। और फिलहाल जो अगला गीत आ रहा है वो है ये।

0: खूबसूरत सी ज़िंदगी मिली है हमें तोहफे में, और इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के लिए मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस देने वाले का जिसने ये खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस लायक समझा और हमें ये जीवन दिया वाकई, और वही जो है वो मुश्किलों से हमें पार भी निकालता है। फिलहाल एक संदेशा हम शामिल करते हैं, ये है लाल गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमें भेज रहे हैं संदेशा राजस्थान से। इनके साथ हैं हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, और लेकिन उससे पहले एक संदेश हम सुन लेते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यशमीत यशु निरंजन सिंह और सौम्या सिंह अविरल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन जी एक बार फिर से जुड़े हैं, मोहम्मद सादिक हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ हैं मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा।

वक्त हो रहा है 10:55 और ये पूरे हो चुके हैं 30 सेकेंड। संगीत सुन रहे हैं आप मेरे यानी ज्योति शर्मा के साथ, और अब घड़ी जो है ना वो इशारा कर रही है कि इस कार्यक्रम को यही ख़त्म करना होगा, लेकिन हाँ अभी 5 मिनट बाकी हैं। आपके संदेशे जो है वो हम जरूर शामिल करेंगे और साथ ही एक गीत भी होगा। ये हमारे दोस्त जुड़े हमारे साथ, प्रिंस डोंगरे, परी डोंगरे, इंद्रमोहन डोंगरे, मंजूलता डोंगरे, ये जुड़े हमारे साथ मध्य प्रदेश से, और ये लिख रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बबल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बबल मल्होत्रा जुड़े हैं हमारे साथ पंजाब से, ओम प्रकाश मल्होत्रा इनके साथ हैं और कह रहे हैं हमारा जो नाम है वो शामिल कर लीजिए। बिल्कुल, कोशिश तो पूरी रहती है दोस्त कि आपका नाम शामिल करें। और एक दरवाज़ा एटा से जुड़े हैं हमारे साथ, नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अशफ अब्बासी, रसीद वारसी, और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुड़े हैं ज़ुबैर अली खान, सबीहा अंजुम खान, और ये लिख रहे हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्त आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही हमारे साथ दिलावर खान जुड़े हैं, टीटी मल्होत्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, और भगवत मेहरा, सुरन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, मास्टर अशोक कुमार, राधेश्याम शर्मा उनके साथ ही, और सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामेश्वरम हमारे साथ जुड़े हैं, एस वी गोयल, सीताराम, और हमारे साथ डी के बी परिहार जी और इनके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप कीजिए इसे एंजॉय और हमारे साथ बने रहिए, यानी आकाशवाणी की दिल्ली के इंद्रप्रस्थ के साथ बने रहिए। जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक छोटी सी कोशिश कीजिए अपने अपनों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की। और हाँ, मुश्किलों से घबराना नहीं है, मुश्किलें तो आती रहेंगी, उनको पार कैसे करना है ये आइडियाज़ आपको ढूंढने हैं। और जो मैंने कहा ना कि अपने चेहरे पर तो मुस्कान लानी ही ज़रूरी है, और साथ ही अपने अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने की छोटी कोशिश करते रहना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास लगातार जारी हैं।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधिकर्ता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसओचैम के सहयोग से हो रहा है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एक रिपोर्ट।
2: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवो ओजुकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। विद्युत तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल 14 से 16 सितंबर तक अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाली G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अमेरिका की G20 अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में G20 देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा, अवसंरचना के लिए विकास और मजबूत ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थान है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग गौड सारंग में बसेनजीत रॉय का सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में राग गौड सारंग में प्रसेनजीत रॉय का सितार वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवु ओजुफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective.

0: her an dedi.
1: नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव, जिनके संस्कार और जिनका स्नेह हमारे परिवार और समाज की नींव को मजबूत करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की। आज घर आंगन में महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों के अनुभव, स्वास्थ्य जागरूकता, अकेलापन, परिवार में उनकी भूमिका, पुराने हुनर, पाक कला और आत्मनिर्भरता जैसे विषय, इन पर चर्चा होगी और आप सुनेंगे खूबसूरत नगमे, क्योंकि हमें आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े भी तो रहना है। सबसे पहले सुंदर विचार। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि में नई कोपले फूटते रहना। नई कल्पना, नया उत्साह, नई खोज और नई स्फूर्ति प्रतिभा के ही लक्षण है। तो लीजिए, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

गीत आप सुन रहे थे लिबास फिल्म से, आवाज थी लता मंगेशकर की। आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन। आज का घर आंगन उन सभी महिलाओं और पुरुषों के नाम जिन्होंने अपने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा परिवार को संवारने में लगा दिया। बच्चों की पढ़ाई, उनकी नौकरी, बच्चों की शादियां, घर परिवार की जिम्मेदारियां। और अब जब जिंदगी थोड़ी ठहरी है तो सवाल ये है कि क्या इस उम्र में जिंदगी के सपने ठहर जाने चाहिए? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। 60, 70 या 80 की उम्र जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि जिंदगी को अपने तरीके से जीने का एक नया पड़ाव है, सपने देखने का। और सपने ही तो अपने हैं, क्यों ना उन सपनों को फिर से ढूंढकर निकालकर फिर से जिया जाए। हर उम्र में कुछ ना कुछ नया करते रहना ही तो जिंदगी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुझी ऐ दिल जमाने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अपने लिए समय निकालना भी जरूरी है। और अब जब समय है तो कीजिए नए नए एक्सपेरिमेंट जिनकी कभी इच्छा रही थी। ढूंढ लीजिए अपना वो हुनर जिसके लिए समय नहीं था, और अब समय है अपने हुनर को नई पहचान देने का।

गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में था। और हमारे जो वरिष्ठ हैं, क्या आप जानते हैं, वो एक चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। जी हाँ, उनके पास अनुभव है, कहानियाँ हैं, रिश्तों को निभाने की समझ है और वो धैर्य है जो आज की तेज भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आज के बच्चों को, युवाओं को अपने वरिष्ठ यानी बड़ों से सीखना चाहिए और वरिष्ठ लोगों को भी अपने अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाने चाहिए, अपनी कहानी सुनानी चाहिए, बड़े लोगों को अपनी रेसिपी लिखनी चाहिए ताकि उनकी जो रेसिपी है, उनकी जो धरोहरें आगे जा पाए, अपने जीवन के अनुभव साझा करने चाहिए। क्योंकि अनुभव तभी विरासत बनते हैं जब उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। उनके अनुभव ही तो अमूल्य मार्गदर्शक होते हैं और उनके अनुभवों से सीखकर हम लोग और युवा उन गलतियों से बच जाते हैं जो उन्होंने की थी। संकट के समय हमें वरिष्ठ नागरिकों के जो हमारे बड़ों के अनुभव हैं, हमें मानसिक ताकत देते हैं।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में ये गीत दिल और मोहब्बत फिल्म से था। गोल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम घर आंगन, और आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों की, अपने बुजुर्गों की उम्र के साथ फैशन क्यों बदले। जी हाँ, बढ़ती उम्र का मतलब ये तो नहीं कि रंगों से दोस्ती ही खत्म हो जाए। साड़ी हो, कुर्ता हो, शॉल हो या कोई भी सुंदर आभूषण, अपने मन का पहनना चाहिए और खुशी से पहनना चाहिए, चाहे कोई भी उम्र हो। आजकल वरिष्ठ महिलाओं के लिए आरामदायक और आकर्षण कपड़ों के ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। हल्के कपड़े, सुविधाजनक जूते, आसान डिजाइन और अपनी पसंद के रंग। फैशन का मतलब सिर्फ दूसरों को अच्छा दिखाना नहीं है, फैशन का मतलब है कि अपने बारे में अच्छा महसूस करना। इसलिए उम्र कोई भी हो, फैशन से दोस्ती तो होनी ही चाहिए, और बुजुर्गों के लिए फैशन आज के समय में आराम और शालीनता का एक खूबसूरत मेल बन चुका है। बढ़ती उम्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टाइल से समझौता किया जाए। आजकल वरिष्ठ नागरिक न सिर्फ अच्छे और आरामदायक कपड़े चुन रहे हैं, बल्कि अपने लुक में आधुनिकता का टच भी दे रहे हैं। इसलिए कीजिए रंगों से दोस्ती और अपनाइए फैशन हर उम्र में।

प्रेम पुजारी, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। अब हमने बात करी है बुजुर्गों की, वरिष्ठों की, तो हमारे घरों में कितनी रेसिपी ऐसी हैं जिनका स्वाद हमें आज भी याद आता है। दादी के हाथ के लड्डू, नानी के हाथ का अचार, माँ के हाथ की मठरी, घर की बनी नमकीन, इनका स्वाद बाजार में कहाँ मिलता है। आज भी बुजुर्ग महिलाएं अपने पुराने व्यंजनों को लिख रही हैं। जी हाँ, लिखना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी पुरानी रेसिपी आपको याद है, आपकी दादी नानी ने आपको सिखाई, और आपकी दादी नानी अगर हैं और आपकी माताजी अगर उन रेसिपी को लिख लें तो परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। चाहे तो छोटी छोटी सी होम कुकिंग या रेसिपी गतिविधि भी शुरू की जा सकती है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया पर भी डाली जा सकती हैं अपनी मम्मी और अपनी दादी नानी के हाथ की जो छोटी छोटी रेसिपी हैं। बहुत सारी काम की चीजें हैं उनके पास, लेकिन उम्र के साथ खान पान में संतुलन भी जरूरी है। स्वाद के साथ साथ साफ सफाई, उचित मात्रा और अपने व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार भोजन का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन जो रेसिपी की बात मैंने बताई ना, वो बहुत ध्यान रखने की जरूरी। मुझे याद है जैसे कि मेरी मम्मी हमें लौकी की बर्फी बनाकर खिलाती थी, जो उन्हें हमारी दादी ने सिखाई थी। एक कप लौकी को कद्दूकस करके आधा कप चीनी डालकर कढ़ाई में पकने रख दें। फिर जब पानी सूख जाए तो लौकी भी गल जाएगी, तो उसमें मावा डालकर ट्रे में जमा दें। और ये व्रत में भी खाई जा सकती है और वैसे भी खाई जा सकती है। तो ये रेसिपी तो हुई मेरी, जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी, जो उन्होंने मेरी दादी से सीखी थी। आप भी अगर ऐसी ही कोई रेसिपी हमें बताना चाहें तो बता सकते हैं हमारा, और आप ये भी बता सकते हैं हमारे कार्यक्रम में कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हमने आपको

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत फिल्म तुम्हारे लिए से था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन FM 100.1 MHz पर, और आज हूँ इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक, और बात चल रही है हमारे वरिष्ठ नागरिकों की। नौकरी से रिटायरमेंट हो सकती है लेकिन हुनर से नहीं। किसी को सिलाई आती है, किसी को कढ़ाई आती है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, और संगीत सिखाना आता है, गाना गाना आता है। क्यों ना अपने हुनर को बच्चों या आसपास के लोगों को सिखाया जाए। ये जरूरी नहीं कि हर काम पैसा कमाने के लिए ही किया जाए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भी किया जा सकता है, और समय भी कट जाता है और अपने दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। कई बार अपने हुनर को किसी और तक पहुंचाना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। यदि कोई बुजुर्ग सुरक्षित और अपनी क्षमता के अनुसार छोटा काम करना चाहे तो वह आत्मविश्वास और सक्रियता का अच्छा माध्यम भी हो सकता है।

में हुए पराए। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। अब दोस्तों बात करेंगे अकेलेपन की। बुजुर्ग साथियों को, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अकेलापन नहीं अपनापन चाहिए। जी हाँ, उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत केवल दवा या आराम या खान पान की नहीं होती, जरूरत होती है किसी के साथ बैठकर बात करने की। बच्चों के पास समय नहीं है, पोते पोतियां अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, हमारे वरिष्ठ लोगों को रोज थोड़ा सा समय देना बहुत बड़ी बात है। एक फोन, एक कप चाय, साथ बैठकर पुरानी बातों पर बातचीत, पुरानी यादों पर बातचीत, ये छोटी छोटी चीजें उनके दिन को खूबसूरत बना सकती हैं। और हमारे बुजुर्ग श्रोताओं से भी यही कहना है, अपने पुराने दोस्तों से संपर्क कीजिए, सामाजिक गतिविधियों से जुड़िए, अपने शौक को समय दीजिए, अकेले मत रहिए, लोगों से जुड़े रहिए।

किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में ये गीत आपने सुना कालिया फिल्म से। अब देखिए बात हो रही है वरिष्ठ नागरिकों की, तो वरिष्ठ महिलाओं कार्यक्रम तो महिलाओं का ही है, तो हम कैसे महिलाओं की बात ना करें। अब महिलाओं की बात जब हम करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारी वरिष्ठ महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित रही हैं। आज अगर वे अपने लिए कुछ करना चाहें तो परिवार को उनका साथ देना चाहिए। सिलाई, कुकिंग, बागवानी, हस्तकला, लेखन, संगीत, जिस काम में मन लगे वही कीजिए। यदि कोई महिला डिजिटल माध्यम से अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचाना चाहती हैं तो परिवार के युवा उनके साथी बन सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और दो पीढ़ियों का ये मेल दोनों के लिए सीखने का एक सुंदर अवसर है।

आशा भोसले की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फागुन फेंसे। स्वास्थ्य के साथ साथ खुशियों की देखभाल भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, उम्र बढ़ने पर शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच, उचित भोजन, अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, ये बहुत जरूरी है। और साथ में संगीत सुनना, किताब पढ़ना, दोस्तों से मिलना और हंसना हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी केवल वर्षों की गिनती नहीं है, जिंदगी उन पलों का नाम है जिन्हें हम खुशी से जीते हैं और किसी के साथ जीते हैं।

इधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। लव इन टोक्यो फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है जिंदगी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। देखिए, रिटायरमेंट नौकरी की हो सकती है, हुनर की नहीं। बच्चे बड़े हो

सकते हैं, लेकिन माता पिता की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। और सबसे जरूरी, अपने लिए जीने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं। जड़ें मजबूत रहेंगी तभी नई पीढ़ी का पेड़ मजबूत होगा। इसलिए आज अपने घर के किसी बुजुर्ग के साथ बैठिए, अपने मोहल्ले के बुजुर्गों के साथ भी बैठना चाहिए, उनकी बात सुनिए, उनसे कोई पुरानी कहानी पूछिए। अगर आप स्वयं बुजुर्ग हैं तो अपने मन से कहिए, मेरी जिंदगी अभी बाकी है, मेरे सपने अभी बाकी हैं और मेरी मुस्कान अभी बाकी है। और इसी मुस्कान के साथ आज के घर आंगन से राधा पाठक को दीजिए विदा। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई पुरानी यादों और सदाबहार गीत के साथ। और आप सुनिए ये गीत।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा।

0: पेदरशकिन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसुका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोखवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity,
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
1: एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट।
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स टुडे रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 1/4।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range

0: 80 lakh human papillomavirus HPV vaccinations, marking another major step towards strengthening preventive health care and protecting against HPV infection and HPV-associated cancers. The Ministry of Health and Family Welfare said every vaccination brings India closer to a healthier and cancer-free future for its daughters. In the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mo Chi in China this afternoon at 2:15 p.m. IST. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद हम उन्हें नहीं भूल पाते। उनकी कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं रहती बल्कि हमारे मन में भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेती है। आज की फिल्म भी एक ऐसी ही कहानी है जो वर्ष 1993 में आई थी और जिसका नाम है दामिनी। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रेम है, रिश्ते हैं, परिवार है, संघर्ष है और सबसे बढ़कर है सच के लिए खड़े होने का साहस।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, दामिनी का निर्देशन किया था राजकुमार संतोषी ने, पटकथा राजकुमार संतोषी ने लिखी थी और संवाद थे दिलीप शुक्ला के। फिल्म का निर्माण करीम मोरानी ने और अली मोरानी और बंटी सूरमा ने किया था। दामिनी का किरदार निभाया था मीनाक्षी शेषाद्री ने, उनके पति शेखर गुप्ता की भूमिका में थे ऋषि कपूर। और फिल्म में एक ऐसा किरदार है जिसकी एंट्री के बाद पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये किरदार था वकील गोविंद श्रीवास्तव का, जिसे निभाया था सनी देओल ने। वहीं अमरीश पुरी ने बैरिस्टर इंद्रजीत चड्डा की भूमिका निभाई थी। फिल्म में कुलभूषण खरबंदा, रोहिणी हटगड़े, परेश रावल और कई दूसरे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। फिल्म के संगीत की बात करें तो संगीत दिया था मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण ने और गीत लिखे थे समीर ने। अलका याग्निक, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म के गीतों को खूब पसंद किया गया।

कहानी शुरू होती है दामिनी से। दामिनी एक सीधी सादी और खुश मिजाज लड़की है। उसकी शादी होती है शेखर गुप्ता से। शेखर एक संपन्न परिवार से है और शादी के बाद दामिनी भी अपने नए परिवार में खुश रहने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अब यही उसका घर है और यही उसके अपने लोग हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। दामिनी की जिंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आता है। एक दिन उसके सामने घर में काम करने वाली एक लड़की के साथ हुआ एक गंभीर अपराध आता है और दामिनी उस घटना की गवाह बन जाती है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो सच बोले या फिर परिवार की इज्जत के लिए चुप रह जाए। दामिनी के लिए ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि जिन लोगों पर आरोप है वे उसके अपने परिवार से जुड़े हैं और यहीं से शुरू होती है दामिनी की असली परीक्षा। दामिनी सच बोलना चाहती है, लेकिन परिवार चाहता है कि वो चुप रहे। उसे समझाया जाता है कि अगर ये बात बाहर चली गई तो परिवार की बदनामी होगी, लेकिन दामिनी के मन में एक बात बार बार आती है, गलत तो गलत है, चाहे उसे करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो। दामिनी अपनी बात पर कायम रहती है, लेकिन सच का साथ देना उसके लिए आसान नहीं रहता। उसे दबाव का सामना करना पड़ता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। धीरे धीरे वो अपने ही घर में अकेली पड़ने लगती है। जिस परिवार को उसने अपना

समझा, उसी परिवार के लोग अब उसके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। और यही फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है, क्या परिवार की इज्जत सच से बड़ी हो सकती है? दामिनी का जवाब है नहीं।

दोस्तों, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी और मुश्किल होती जाती है। दामिनी की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे मानसिक रूप से भी बहुत परेशान किया जाता है। उसकी बात को कमजोर साबित करने की कोशिश होती है, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई उसे हारने नहीं देती। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। दामिनी की जिंदगी में आता है वकील गोविंद श्रीवास्तव। सनी देओल ने इस किरदार को निभाया था। गोविंद खुद भी परेशानियों से घिरा हुआ इंसान है, लेकिन जब उसे

दामिनी के सामने की सच्चाई पता चलती है तो वो उसके साथ खड़े होने का फैसला करता है। अब दामिनी अकेली नहीं है, उसके साथ एक ऐसा इंसान है जो सच को सच कहने से डरता नहीं है। और अब कहानी पहुंचती है अदालत तक। एक तरफ दामिनी की सच्चाई है, दूसरी तरफ पैसा है, ताकत है और प्रभाव है। अदालत में सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, गवाह सामने आते हैं और हर कदम पर दामिनी को चुनौती का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर है बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा। ये भूमिका निभाई थी अमरीश पुरी ने। अब आमने सामने हैं दो मजबूत किरदार, गोविंद श्रीवास्तव और इंद्रजीत चड्ढा। अदालत के इन दृश्यों में सनी देओल और अमरीश पुरी की टक्कर फिल्म का बेहद यादगार हिस्सा बन जाती है और इसी फिल्म का एक संवाद बाद में लोगों की जुबान पर चढ़ गया, तारीख पे तारीख। आज भी जब अदालतों में तारीख पर तारीख मिलने की बात होती है तो इस संवाद को याद किया जाता है। और इन सबके बीच दामिनी की जिंदगी लगातार एक मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दामिनी केस जीतेगी या हारेगी, सवाल ये है कि क्या सच की आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पैसे और प्रभाव के सामने भी टिक सके। और आखिरकार कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां सच सामने आने लगता है। दामिनी ने जिस बात के लिए लड़ाई शुरू की थी वो लड़ाई अब बहुत बड़ी हो चुकी है। उसने सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठाई, उसने ये साबित किया कि अगर हम किसी गलत चीज को अपनी आंखों के सामने होते देखें तो सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए क्योंकि सामने वाला ताकतवर है। दामिनी की कहानी हमें यही बताती है कि सच की राह मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन अगर इरादा मजबूत होना तो मुश्किल रास्ते पर भी मंजिल मिल सकती है।

दामिनी फिल्म को मिले पुरस्कारों की। दामिनी को 39वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में कई महत्वपूर्ण सम्मान मिले। राजकुमार संतोषी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, सनी देओल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, सुतानु गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए सम्मान मिला और राकेश रंजन को सर्वश्रेष्ठ साउंड के लिए पुरस्कार मिला। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी नामांकन मिला। मीनाक्षी शेषाद्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अमरीश पुरी को नकारात्मक भूमिका के लिए नामांकन मिला। और सबसे खास बात, सनी देओल को गोविंद श्रीवास्तव की भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान भी मिला। यानी दामिनी ने सिर्फ दर्शकों का दिल नहीं जीता बल्कि अपने अभिनय, कहानी और निर्देशन के लिए कई बड़े सम्मान भी हासिल किए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मेल के जरिए हमारे साथ कौन कौन से श्रोता जुड़े हैं। ये हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षिता। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवाश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जागुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। अगला मैसेज आया है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, ये लिख रहे हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, अदीब और नाजिया, आफिया और इब्राहिम सद्दाम। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और सुपान तायड़े।

कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर ने भी हमें मेल भेजी है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही एक फिल्म से कार्यक्रम का समय संपन्न होता है। हमारी आज की फिल्म थी दामिनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहलां चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दोपहर बाद नवी दिल्ली विच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी के सारे रूपों खिलाफ भारत का संकल्प अडोल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आत्म निर्भरता के संकटों तो उभरन की योग्यता अज हर देश की आर्थिक रणनीति लिए महत्वपूर्ण बन गई है। केंद्रीय समाजिक न्याय ते शक्तिकरण राज मंत्री रामदास आठवले अज पंजाब दे एक दिन दौरे ते ओ जलंधर दे डेरा सचखंड बल्लां च नतमस्तक होए ते जूनियर एशिया कप हॉकी च मर्दां दे सेमीफाइनल ते अज भारत दा मलेशिया नाल मुकाबला होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दोपहर बाद नवी दिल्ली च रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल दुवल्ली गलबात करनगे। दोवां नेतावां वल्लों आपसी हितां दे मुद्दिआं ते चर्चा कीते जाण दी उम्मीद है। मीटिंग दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पछमी एशिया संकट, व्यापारक संबंध ते ऊर्जा सहयोग वर्गे मुद्दिआं ते चर्चा होण दी संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन अज सवेरे ब्रिक्स सम्मेलन विच शामिल होण लई भारत पहुंचे। श्री मोदी अज शाम ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्के नाल वी गलबात करनगे। ईरान दे राष्ट्रपति अज दुपहर बाद नवी दिल्ली पहुंच रहे ने। पछमी एशिया की मौजूदा स्थिति नूं देखदिआं इह मुलाकात महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के सकत्र जनरल एंटोनियो गुतरेस नाल भी गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल तो शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन लिए विश्व नेता नवी दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास प्रकट किया कि सम्मेलन में वख-वख मुद्दों पर सकारात्मक अर्थपूर्ण चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व भलाई होगा। नवी दिल्ली के भारत मंडपा विखे होने वाले दो रोजा सम्मेलन च ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रीका ते संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 प्रमुख उभरियां ते विकासशील अर्थव्यवस्था एक मंच ते होणगियां। सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फाता अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियन, आबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन समेत कई प्रमुख विश्व नेता शामिल होंगे। ब्राजील की नुमाइंदगी विदेश मंत्री मोरोवियरा करनगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री क्राउन प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आत्म निर्भरता के संकटों से उभरन की योग्यता अज हर देश की आर्थिक रणनीति लिए महत्वपूर्ण बन गई है। इस तो अलावा मजबूत सहयोग ते भाईवाली राही निरंतर विकास नूं उत्साहित करना भी जरूरी है। डॉ जयशंकर अज सवेरे नवी दिल्ली विच ब्रिक्स व्यापार फोरम नूं संबोधन करदिआं इह गल कही।
1: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
0: है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह समूह मेंबर देशों को अपने तजर्बे और नीतियों की तुलना करने, ठोस विधियां मजबूत करने और नए मौकों की कोख करने लिए एक मंच प्रदान करता है। डॉ जयशंकर ने कहा कि यह साल ब्रिक्स लिए एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है क्योंकि समूह 20 साल के संस्थागत सहयोग को पूरा कर रहा है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी

0: प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: शंकर ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन अजय समय हो रहा है जो विश्व राजनीति से आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण तब्दीलियां आ रही ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नवी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन तो पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स सम्मेलन तो पहले अज नवी दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वीरा का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश रक्षा ऊर्जा खेतीबाड़ी और पुलाड़ के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत दुवल्ले संबंधों पर चर्चा की थी। यह खबर आकाशवाणी से सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दी का खतरा लगातार बढ़ रहा है पर इसके सारे रूपों विरुद्ध भारत का संकल्प पक्का है। अमरीका में खौफनाक 9/11 दहशतगर्द हमलों की 5वीं वरेगंढ से एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी ने दुनिया भर में अणगिनत जाना लिया ने। उन्होंने कहा कि सरहद पारों दहशतगर्दी तो प्रभावित भारत दहाकों तो इस विरुद्ध लड़ाई में सब तो अगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भेंट की और उन्होंने परिवारों नाल एकजुटता प्रगट की। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी विरुद्ध सारे यत्नों के नाल खड़ा है। श्री मोदी ने 2014 में न्यूयॉर्क में 9/11 की यादगार के अजायब घर की अपनी फेरे दी झलकियां भी सांझियां कीतियां। केंद्रीय समाजिक न्याय ते शक्तिकरण राज मंत्री रामदास आठवले आज जलंधर के डेरा सचखंड बल्ला गए और संत निरंजन दास जी महाराज नाल मुलाकात की। अपने दौरे बारे बोलदिया श्री आठवले ने गुरु रविदास जी के योगदान नूं याद किया जिन्होंने जात पात खत्म करन अते समाजिक एकता ते समानता नूं उत्साहित किया। श्री आठवले ने कहा कि संत निरंजन दास जी महाराज समाज विच समाजिक सद्भावना ते एकता लई काम करके इस विरासत नूं अगे वधा रहे ने। उन्होंने यह भी कहा कि वह संत निरंजन दास जी महाराज ते डेरे वालों किए जा रहे कामां दा बहुत सत्कार करते ने।
2: संत निरंजन दास महाराज जी को मिलने के लिए मैं इधर आया था। गुरुद्वारा पूरे पंजाब में बहुत बड़ा फेमस गुरुद्वारा है। एक बहुत हमारे दलितों का बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है तो इनका काम बहुत बड़ा है। संत रविदास जी ने मतलब जातीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने समाज में एकता पैदा करने के लिए काम किया था और उसी को आगे बढ़ाने का काम यहाँ संत निरंजन दास महाराज जी कर रहे हैं और हमें उनके बारे में बहुत बड़ा गर्व है।
1: श्री ठाफले अज पंजाब दे एक दिन दौरे ते ने। ओ लुधियाना विच उद्योगपतियां अते सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां दे नुमाइंदियां नाल गल्लबात करनगे। महाराष्ट्र विच कल शाम नंदेड़ बोकर सड़क ते सीताखंडी घाट ते एक तेज रफ्तार ट्रक अते एक होर मुसाफिर वाहन विचकार टक्कर होण कारण 8 लोकां दी मौत हो गई ते 4 होर गंभीर जख्मी हो गए। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जदों के 2 होर हस्पताल ले जांदियां दम तोड़ गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदेड़ में हुए सड़क हादसे में हुए जानी नुकसान से दुख प्रगट किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस दुख की कड़ी में पीड़ितों के परिवारों नाल हमदर्दी प्रगट की और जख्मियों के छेती ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नंदेड़ विच सड़क हादसे विच हुए जानी नुकसान ते डूंघा दुख प्रगट किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे विच मरन वालियां दे परिवारां नूं 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान भी किया। जख्मियों नूं 50-50 हजार रुपए दिते जाणगे। जूनियर एशिया कप हाकी च मर्दां दे सैमीफाइनल च अज भारत दा मलेशिया नाल मुकाबला होगा। यह मैच चीन दे मौके विच दोपहर बाद 2:15 बजे शुरू होगा। 5 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਲ ਏ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ 15-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪੂਲ ਏ ਵਿਚ 3 ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ 1 ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪੂਲ ਬੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। US ओपन टेनिस विच दूजा दर्जा प्राप्त एलेना रायबेकिना दूजे महिला सिंगल सैमीफाइनल विच चौथा दर्जा प्राप्त कोको गोफ नूं 3-6, 6-4, 6-4 नाल हरा के फाइनल विच पहुंच गई है। अंत विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दोपहर बाद नवी दिल्ली विच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल गल्लबात करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी के सारे रूपां

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी भलाई से मुतालिक उमंगों के साथ मुस्बत मुजाकरात की उम्मीद जाहिर की है। जैसा कि आलमी रहनुमा कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली में यकजा हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेजशकियान के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। कौमी राजधानी में ब्रिक्स तजारती फोरम का आगाज हो गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने के मौके पर बढ़ती हुई मजबूती, पायदार तरक्की और ताउन के लिए कहा है। भारत ने अमरीका में 9/11 के वहशियाना हमलों के 25 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अपने पुख्ता अज़्म को दोहराया है। चीन के शहर मोकी में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज दोपहर भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। और अमरीकी ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन एरीना सेबालिंका और दूसरे दर्जे की एलिना रिबाकीना खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कल से शुरू होने वाली 18वीं ब्रिक्स सबरा मीटिंग में शिरकत के लिए दुनिया भर के रहनुमा नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि सबरा मीटिंग में दुनिया की खुशहाली के रहनुमा उसूल के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बामाना और तामीरी बातचीत की जाएगी। भारत मंडपम में होने वाली दो रोजा सरबराह मीटिंग में 11 उभरती हुई बड़ी और तरक्की पजीर मईशतों वाले ममालिक शिरकत करेंगे। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब इमारात शामिल हैं। भारत की सदारत में होने वाली सबराह मीटिंग का मौजू है मजबूत इख्तरा ताउन और पायदार तरक्की का क्याम। इस सबराह मीटिंग में मुख्तलिफ आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। इनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के सदर पराबुओ सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेजशकियान, अबू जहबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन्नहियान और इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली शामिल हैं। ब्राजील की नुमाइंदगी वहां के वजीर खारजा माउरो वीए ईरा करेंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। सरबराह मीटिंग कल जामे आलमी हुक्मरानी और कसी रुखी निज़ाम को मजबूत बनाने के मौजू पर ब्रिक्स रुकन मुल्कों के बंद कमरे के इजलास के साथ शुरू होगी। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के रहनुमा भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स नुमाइश भी देखेंगे। इसके बाद वो मुश्तरका तौर पर शजरकारी करेंगे। शजरकारी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शानदार इशाया का अहतमाम किया जाएगा। वजीर आजम मोदी सरबराह मीटिंग के मौके पर ब्रिक्स मुल्कों के रहनुमाओं के साथ कई दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। इतवार के रोज वजीर आजम मोदी ब्रिक्स के शराकतदार मुल्कों के रहनुमाओं और मदऊ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। ये रहनुमा मजबूत इख्तरा ताउन और पायदार तरक्की का क्याम जामे आलमी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की तामीर के मौजू पर मुनक़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से पहर नई दिल्ली में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल मुतवक्के है। दोनों रहनुमा रूस यूक्रेन तनाज़े, मगरबी एशिया के हालात, तजारती ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन जैसे मामलों पर बातचीत करेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए आज सुबह सवेरे कौमी राजधानी पहुंचे। वजीर आजम मोदी आज शाम ईरान के सदर मसूद पेजशकियान के साथ भी बातचीत करेंगे। सदर पेजशकियान आज से पहर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात को खास अहमियत हासिल है। तवक्को है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई हालात व वाकयात गुफ्तगू

0: ब्रिक्स तजारती फोरम का आगाज हो गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने के मौके पर बढ़ती हुई मजबूती पायदार तरक्की और ताउन के लिए कहा है। भारत ने अमेरिका में 9/11 के वहशियाना हमलों के 25 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अपने पुख्ता अज्म को दोहराया है। चीन के शहर मोकी में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज दोपहर भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In men's junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Alina Rybakina set up women's singles title clash. Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow.

0: need to remove or replace their existing FASTag sticker when changing their bank account. Addressing the gathering, Mr. Gadkari said the government aims to bring down the waiting time at toll plazas to less than 10 seconds by the end of the current financial year. The BJP today announced Debashish Sharma as its candidate for the by-election to the Nagaon Lok Sabha seat in Assam. His candidature was approved by the party's Central Election Committee. The notification for the Lok Sabha by-election was issued last week. Candidates can file their nominations until the 16th of this month. Polling will be held on the 6th of October, while counting of votes will take place on the 9th of October. Besides the Nagaon Lok Sabha by-election, 5 assembly seats will also go to polls on the 6th of October. In Bihar, the flood situation remains critical. According to the State Disaster Management Department, more than 44 lakh people remain affected across 85 blocks in 14 districts. More from our correspondent.
1: Relief operations are underway in the affected districts, with 1,046 community kitchens serving food. More than 2,50,000 polythene sheets and over 41,000 of dry ration packets have been distributed. 1,942 boats are in operation, while 812 medical camps have been set up. According to the Water Resources Department, water levels in major rivers have receded over the past 24 hours. However, 8 rivers are still above the danger mark. The Ganga remains above the danger mark at several locations in Patna, Munger, Bhagalpur and Kahalgaon, while the Kosi is above mark at Baltara in Khagadia and Kursela. The Punpun River at Shripalpur in Patna is receding by around 2 centimeters every hour, bringing relief to people in low-lying areas. Nidhishree for Akashvani News, Patna.
0: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semi-final in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In men's Junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में अरीना सबालेंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित

0: ग्यारह प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
5: For BRICS particularly, higher economic activity,
0: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
5: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार

0: सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
2: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
4: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं।

0: 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है, वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540, जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में।

दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही 90 के दशक की खूबसूरत यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज की हमारी स्टोरी एक ऐसी ही एक्ट्रेस की जिसकी मुस्कान में सादगी थी, चेहरे पर मासूमियत और अभिनय में एक अलग ही आत्मविश्वास। पहाड़ों की ठंडी हवाओं में जन्मी इस लड़की ने अपनी मेहनत के बदौलत पूरे देश का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की। 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग में महिमा चौधरी का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम ऋतु चौधरी था। पिता यूपी के बागपत जिले के जाट परिवार से थे और माँ नेपाली मूल की थीं। इसी वजह से ये हिंदी और नेपाली दोनों भाषाएं आसानी से बोल लेती हैं। ऋतु चौधरी से महिमा चौधरी बनने की ये कहानी हम आपको आज के इस कार्यक्रम में ज़रूर बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म परदेस का ये रोमांटिक सा सॉन्ग।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं खूबसूरत महिमा चौधरी। दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में पली बड़ी ऋतु चौधरी ने शायद उस समय कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन पूरा देश इन्हें महिमा चौधरी के नाम से पहचानेगा। इन्होंने अपनी एजुकेशन दार्जिलिंग में पूरी की, इसी दौरान ये मॉडलिंग भी करती रहीं। फिर इन्होंने मिस दार्जिलिंग का खिताब जीता और ये दिल्ली आ गई। यहाँ इन्होंने कई ऑडिशन दिए और बहुत से एड प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया। ये वीडियो जॉकी भी रहीं। इस दौरान जाने माने फिल्म मेकर सुभाष घई की नज़र इन पर पड़ी। सुभाष घई अपनी नई फिल्म के लिए एक नया चेहरे की तलाश कर रहे थे, जिसमें भारतीय लड़की की सादगी, आत्मविश्वास और खूबसूरती तीनों दिखाई दे। रितु इस भूमिका के लिए चुनी गईं और सुभाष घई के कहने पर रितु चौधरी बन गई महिमा चौधरी। और फिर साल 1997 में वो फिल्म आई जिसने महिमा की ज़िंदगी रातों रात बदल दी। फिल्म थी परदेस। महिमा ने गंगा का किरदार निभाया। फिल्म में इनके साथ थे सुपरस्टार शाहरुख खान और अमरीश पुरी। फिल्म की कहानी और गाने सुपरहिट साबित हुए और महिमा चौधरी को अपनी पहली फिल्म के लिए फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। पर अभी महिमा चौधरी की असली परीक्षा बाकी थी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अभी सुनिए इनकी फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर का ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

दोस्तों, आकाश में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं आज आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, फिल्म परदेश की जबरदस्त सफलता के बाद महिमा चौधरी के सामने फिल्मों के दरवाजे खुल चुके थे। ठीक अगले ही साल इनकी 4 फिल्में रिलीज हुई। दाग द फायर फिल्म में ये संजय दत्त और चंद्रचूड़ सिंह के साथ डबल रोल में नजर आई। फिल्म दिल क्या करे में इन्होंने अजय देवगन और काजोल के साथ मुख्य भूमिका निभाई। वहीं फिल्म धड़कन में इन्होंने अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी जैसे बड़े सितारों के साथ बेहतरीन काम किया। फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिर इन्होंने कुरुक्षेत्र, खिलाड़ी 420, लज्जा, बागवान, एलओसी, कारगिल जैसी शानदार फिल्मों में भी काम किया। महिमा चौधरी ने इन फिल्मों में अपनी एक्टिंग के कई रंग दिखाए, लेकिन दोस्तों, पर्दे पर मुस्कुराती महिमा की असली जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनका आत्मविश्वास तक हिला दिया। क्या था वो हादसा, बताएंगे आपको, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म धड़कन का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सदाबहार एक्ट्रेस महिमा चौधरी की। इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही एक मुश्किल दौर तब आया जब वो फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान जाते हुए बेंगलुरु में एक गंभीर रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार के शीशे के छोटे छोटे टुकड़े इनके चेहरे में जा लगे, पर महिमा ने हिम्मत नहीं हारी और जल्दी ही रिकवर करके अपने रुके प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इस बीच 2006 में इन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी के साथ शादी की और अगले ही साल बेटी अरीना मुखर्जी इनकी ज़िंदगी में आई, पर महिमा की मुश्किलें कम नहीं हुई। 2013 में ये पति बॉबी मुखर्जी से अलग हो गई। फिल्मों में भी इनकी मौजूदगी पहले की तुलना में कम होती गई और 2022 में दुनिया को महिमा की ज़िंदगी से जुड़ी एक ऐसी खबर पता चली जिसने इनके फैंस को भावुक कर दिया। महिमा को कैंसर डायग्नोस हुआ। इस मुश्किल वक्त में महिमा ने कैसे कमबैक किया ये बताएंगे, पर अभी आपको हम सुनवाते हैं इनकी फिल्म दिल क्या करे का ये गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, आज बात हो रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की। 2022 में महिमा चौधरी को कैंसर का पता चला और इस जानलेवा जंग में इन्होंने खुद को संभाला और उसके बाद फिर वो खूबसूरत मोड़ आया जब बीमारी से उबरने के लिए बाद में वो दोबारा कैमरे के सामने लौटी। 2024 में अनुपम खेर के साथ महिमा चौधरी ने फिल्म द सिग्नेचर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इमरजेंसी, नादानिया और दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी जैसी फिल्मों में भी काम किया। इतना ही नहीं दोस्तों, महिमा चौधरी ने बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के लिए कैंपेनिंग भी की। अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए और अपनी पहचान कायम रखते हुए महिमा चौधरी ने कभी हार नहीं मानी। श्रोताओं, आप श्रोताओं के कुछ मेल भी आ गए हैं और समय भी बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कुछ श्रोताओं के मेल हम पढ़ लेते हैं। ये हैं अमरावती महाराष्ट्र से योगिता कुमारी प्रियाली पार्थ और उनके परिवार के सभी सदस्य, स्वर्णजीत गिल, दर्जीत, राजदीप, गुन्नौर, गुरलाल, ये हैं ठाकुरावाला से, और ये हैं दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन जी, और ये हैं वीरमगांव गुजरात से अजीत और प्रमिला, और छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल और यशस्वी जी हैं, और आगे चलते हैं सुदर्शी मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हैं संदीप पकड़, ज्योति मन्नत भारत और कमल शनि पिंगावाला चौक जालंधर से हैं, और आगे चलते हैं बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार जी, गांव फरासी, जिला हिसार।

से राजकुमार ढूंढी, प्रमोद कुमार जी, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, और आगे है मेरठ कैंट, दिग्दर्शन कविता गौड़ जी, और हीरामणि वर्मा दंतरेगी इस भाटा पारा से। श्रोताओं, हम पहुंच चुके हैं शो के अंतिम पड़ाव पर, और महिमा चौधरी की स्टोरी की सबसे खास बात ये रही कि इनकी पहचान केवल इनकी सुपरहिट फिल्म से नहीं बनी। इनकी कहानी कहती है कि जिंदगी में सफलता हमेशा एक सीधी सड़क की तरह नहीं चलती, बल्कि आपको मुश्किल वक्त का डटकर सामना करना पड़ता है। मौजूदा दौर में महिमा चौधरी फिल्म अवार्ड फंक्शन और रियलिटी शो में अपना जलवा बिखेर रही हैं।

हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से, मुंगेली से मोहम्मद खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य।

तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का शो पसंद आया होगा। अगले शो में आपके साथ ऐसे ही किसी बेहतरीन कलाकार के जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर करेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम 3 बजे करेंगे मैटिनी मेलोडीज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। और आज मैटनी मेलोडीज में मैं आपके साथ हूँ राखी बैनर्जी,
1: और मैं हूँ आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार
0: मोर
1: भरा।
0: भरा नमस्कार।
1: जी राखी, सबसे पहले हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म राजकुमार का ये गीत।

0: राखी, जानती हो कभी कभी ना प्यार के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है ना, और एक
1: बिल्कुल
0: नजर, एक मुस्कान और कुछ खामोशी भी बहुत जरूरी होती है दिल की बात कहने के लिए, है ना। ऐसा ही एक खूबसूरत गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है।
1: फिल्म कश्मीर की गली से इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीत है OP नैयर का। और पर्दे पर इस खूबसूरत गीत को अपनी अदाओं से सजाया है शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर ने। तो आइए सुनते हैं ये
0: ये
1: प्यारा
0: खूबसूरत
1: सा गीत।
0: गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटरनी मेलोडीज, और मैं आपके साथ हूँ राखी बैनर्जी।
1: और
0: और
1: मैं मीना चौहान।
0: मीना, किसी के प्यार में दिल जब पूरी तरह डूब जाए तो फिर दिल की एक ही आवाज होती है, दिल तेरा दीवाना है सनम।
1: बिल्कुल
0: 1962 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना का ये बेहद खूबसूरत सा गीत प्यार की उस बेफिक्र और शरारती फीलिंग को बयां करता है। गीत में मोहब्बत है, थोड़ी सी नटखट अदाएं हैं और अपने महबूब के लिए दिल की बेकरारी भी है।
1: जी, और इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: जानते हैं, जब हम प्यार छुपाने की कोशिश करती है ना, तो शायद प्यार और भी ज्यादा दिखाई देने लगता है ना। कुछ ऐसा ही इस गीत का अंदाज है, जहां दो दिलों की मोहब्बत अब सिर्फ उनके बीच नहीं रही, बल्कि आजकल उनके प्यार के चर्चे हर जुबान पर है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, फिल्म ब्रह्मचारी का ये बेहद चुलबुला और रोमांटिक गीत 1968 में रिलीज हुआ था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ने इससे एक ऐसी शरारती मिठास दी जो आज भी सुनने में चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इस खूबसूरत गीत को गीतकार शैलेंद्र जी ने गीत लिखा था, इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। दोस्तों, कभी कभी दिल को किसी एक जगह, किसी एक इंसान के पास, किसी एक इंसान के पास ठहर जाने का मन करता है, और तब दिल में बस यही दिल बस यही कहता है कि ऐ दिल अब कहीं ना जा। फिल्म लव मास्टर का ये खूबसूरत गीत मोहब्बत की उस मासूमियत को बयां करती है जहां दिल को बस अपने महबूब के पास रहना है, कहीं और नहीं जाना। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज़ दी है हेमंत कुमार ने, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने। फिल्म के इस गीत को सम्मी कपूर और शायरा बानो ने फिल्माया है। तो आइए हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ में महसूस करते हैं वो प्यारा सा गीत जिसमें दिल से सिर्फ एक ही गुजारिश है।

0: जानते हैं दोस्तों, मोहब्बत जब सच्ची होती है ना, तो दिल में अपने प्यार को बसाने के लिए किसी के वादे या बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, है ना राखी? तो
1: बिल्कुल
0: इसी तरह का गीत सुनाते हैं फिल्म फकीरा से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।
1: और गीतकार हैं रविंद्र जैन और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

0: दोस्तों, मैटिनी मेलोडीज के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आखिरी गीत के लिए कुछ शब्द हमारे पास हैं जो कि हैं कि कभी कभी किसी का साथ इतना अच्छा लगने लगता है कि वक्त से बस एक ही शिकायत होती है कि इतनी जल्दी क्यों बीत रहा है ये पल। और तब दिल कह उठता है, अभी ना जाओ छोड़कर,
1: बिल्कुल
0: कि
1: राखी
0: दिल
1: जैसे
0: अभी
1: श्रोताओं
0: भरा
1: को
0: नहीं।
1: छोड़कर जाने का हमारा भी मन नहीं
0: बिल्कुल
1: करता है
0: नहीं
1: ना,
0: मन करता है,
1: और
0: लेकिन क्या
1: लेकिन
0: करें कि वक्त जो
1: समय
0: है कि
1: नहीं
0: वो किसी का नहीं होता है।
1: हाँ
0: और अभी हमारा भी वक्त हो चला है, लेकिन जाते

0: जाते हम एक आपको खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं। फिल्म हम दोनों का ये सदाबहार गीत है, मोहब्बत की उस खूबसूरत कोशिश को बयां करता है जहां साथ बिताया हुआ हर पल थोड़ा और ठहर जाए, बस यही दिल की ख्वाहिश होती है। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीत दिया है जयदेव ने। तो फिल्म में, इस फिल्म में खूबसूरत गीत को देवानंद और साधना ने फिल्माया है। तो
1: साधना पर फिल्माया गया है ना,
0: साधना पर फिल्माया गया है। तो चलिए आज की इस खूबसूरत संगीत यात्रा को यही विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं वो गीत जो शायद हमारी इस महफिल के लिए भी बिल्कुल सही है।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ मैटनी मेलोडीज यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी राखी बैनर्जी को
1: और मीना चौहान को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

कव्वाली एक ऐसी अदबी और मौसीकी की सिंफ है जिसमें अल्लाह की हमदो सना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, सूफियों और औले अल्लाह की मनकबत बयान की जाती है। आइए सामाइन सुनते हैं एक ऐसी ही पुरसोज कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री देनिस मंतोरोव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने

0: आर्थिक सहयोग को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के उपायों पर चर्चा की। इस बीच प्रधानमंत्री आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी

0: शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये आयोजन कारोबारी संपर्क, प्रौद्योगिकी साझेदारी, निवेश संबंधी चर्चाओं, व्यापारिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के अवसर प्रदान करेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन इसके सभी रूपों के खिलाफ भारत का संकल्प और विरोध अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने देश और विदेशों में करीब 12,000 तमिल वाद विवाद कार्यक्रमों का संचालन किया। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। अमरीकी ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन आरेना सबालिंका से होगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला रूस के कारेन खाचानोफ से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Bilateral talks are underway between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin at Bharat Mandapam in New Delhi. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest, the Russia-Ukraine conflict, the situation in West Asia, trade relations and energy cooperation are expected to come up for discussions between the two leaders. President Putin arrived in the national capital in the early hours today to attend the BRICS summit, which begins tomorrow. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Regional developments are expected to be among the key issues discussed by the two leaders. Prime Minister Modi is also scheduled to meet the UN Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. Prime Minister Narendra Modi has expressed confidence that the BRICS conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. Our correspondent reports the two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE.
2: The theme of India Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iranian President Masoud Pezeshkian and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. The summit will get underway tomorrow with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. With Suparna Saikia, this is Ankit Kumar for Akashvani News, Delhi.
1: BRICS member countries have expressed serious concern over the unilateral imposition of trade and finance-related measures, including tariffs and non-tariff barriers. They said that such actions distort trade and are inconsistent with the World Trade Organization rules. They reaffirmed support for an open, transparent, and rules-based multilateral trading system with the WTO at its core. The member countries of the grouping stated this in a joint statement issued following the conclusion of the final meeting of BRICS finance ministers and central bank governors in Mumbai yesterday under India's 2026 BRICS chairship. Highlighting the challenges confronting the global economy, the ministers and central bank governors

0: Nas said, risks remain elevated amid geopolitical tensions, trade fragmentation, protectionism, policy uncertainty, fiscal and inflationary pressures, rising debt and financial vulnerabilities. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today welcomed his Brazilian counterpart Mauro Vieira in New Delhi ahead of the BRICS Summit 2026. In a social media post, Dr. Jayashankar said the two leaders discussed bilateral relations, including ways to enhance cooperation in trade and investment, defense, energy, agriculture and space. The two ministers also exchanged views on the current geopolitical situation. Dr. Jayashankar also met his Uruguayan counterpart Mario Lubetkin. India has reiterated its unwavering resolve to combat terrorism on the 25th anniversary of the horrific 9/11 attacks in the US. Prime Minister Narendra Modi has said that while the threat of terrorism continues to evolve, India's resolve and opposition to terrorism in all its forms and manifestations remain unwavering. On the 25th anniversary of the horrific attacks, Mr. Modi said in a social media post today that terrorism has claimed countless lives around the world. In Junior Asia Cup hockey, the first semi-final match is underway between Indian men's team and Malaysia at Mochi in China. Five-time champions India entered the last four in dominant fashion, defeating Chinese Taipei 15-0 in their final Pool A match. Malaysia booked their place in the semi-finals after edging past China 1-0 in Pool B. In the other last four, South Korea will face Pakistan this evening. Indian junior women's team will face South Korea in the semi-final tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए खोए पाए व्यक्तियों संबंधी सूचनाएं। एक मृत व्यक्ति जिनकी उम्र है 25 वर्ष के आसपास, इन्हें 23 अगस्त 2026 को देखा गया था। इनका शरीर पतला है, कद 5 फुट है, इनका नाम पता मालूम नहीं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर स्टेशन हाउस ऑफिस पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली से सूचना प्राप्त करें। एक मृत व्यक्ति जिनकी उम्र तकरीबन 50 से 51 वर्ष के बीच में है, शरीर पतला है, कद 5 फुट 5 इंच, इनका भी नाम पता मालूम नहीं। कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिस पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली से संपर्क करें। नेहा सुपुत्री राम बहादुर निवासी ग्राम गंग गहलोती थाना दादो जिला अलीगढ़, इनकी उम्र है 15 वर्ष, आंख कान नाक कद औसत है, कद 5 फुट 3 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। मसूदा पत्नी अब्दुल खालिक 27 जुलाई 2026 से लापता है, इनकी उम्र है 27 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 157 सेंटीमीटर। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 24 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। मनीषा को अंतिम बार घर पर देखा गया था, इनकी उम्र है 13 वर्ष, नाक कान औसत है, मजबूत जिस्म, रंग सांवला है, कद 4.5 फुट। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और ये बोलने में असमर्थ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। सोनिया सपुत्री श्री मेहरुद्दीन ग्राम खगोड़ा थाना चारचा गौतम बुद्ध नगर, इनकी उम्र है 22 वर्ष, शरीर इकहरा है, कद 5 फुट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना जारचा गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। स्नेहलता सपुत्री

0: राकेश कुमार, दिनांक 6 अगस्त 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 21 वर्ष, आंख कान नाक औसत है, कद 6 फुट 2 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना इकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। सुजीत कुमार, सुपुत्र नवल किशोर, निवासी चरनी विहार, भारत धर्मकांटा, पंचकुला कॉलोनी, रेलवे लाइन, ये 31 जुलाई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 50 वर्ष, शरीर सामान्य है, कद 5 फुट 4 इंच, ये दिमागी रूप से कमजोर है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। ये थी खोए पाए व्यक्तियों संबंधी सूचनाएं।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार युवा साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर युवानी प्रोग्राम। मैं अनंता,
1: और मैं विद्वान।
0: आज के हमारे सफर में आप सभी का स्वागत करते हैं।
1: वेलकम एवरीवन। अनंता, क्या तुम्हें पता है मेरे कुछ फेवरेट शो जिन्हें मैं रीवॉच कर चुका हूँ, उन्हें दोबारा देख कर अलग ही एक्सपीरियंस आता है।
0: ऐसा करने वाले तुम अकेले नहीं, मैं खुद ना जाने अपने कंफर्ट शोज ना जाने कितनी बार देख चुकी हूँ। मूवीज, टीवी शोज और गाने भी ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं और एक मैग्नेट की तरह हमें अपनी ओर खींच लेते हैं।
1: एग्जैक्टली। और सच कहूँ तो रोज़ लाइफ में पहले ही इतनी चॉइसेस के बीच डिसाइड करना पड़ता है, क्यों ना इस बारे में आगे बातचीत की जाए। दो दोस्तों, चलिए आज का जो टॉपिक एंटरटेनमेंट है उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हुए पहले सुनते हैं ये गीत, किसी की मुस्कुराहट, फिल्म अनाड़ी।

0: टॉक में आज हम बात कर रहे हैं उन शोज और मूवीज की जो हमें बार बार अपनी तरफ खींचते हैं। एक बार देखने पर जो वो जादू हम पर चलाते हैं वो मानो कभी उतरता ही नहीं। लेकिन विद्वान, आई हैव नोटिस समथिंग दीज डेज। आजकल हमारी जनरेशन के कई पुराने प्रोग्राम्स और मूवीज अब फिर वापस आ रहे हैं। स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर, द ऑफिस और याद है क्रिश और वेलकम। ऐसा लगता है जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी पुरानी यादों को एक बार फिर दोहराने में काफी इंटरेस्ट है।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे भी काफी समय से ऐसा लग रहा है। बचपन में जो हम मूवीज और शो देखा करते थे उनके तरह तरह के प्रीक्वल्स, सीक्वल्स, स्पिन ऑफ और न जाने क्या अब देखने को मिलता है।
0: एक कहानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू, जिसके बारे में हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ऑडियंस भी क्या करे, टू बी ऑनेस्ट, जब कोई ऐसी चीज जो हम दिल से पसंद करते हैं वो एक नए रूप में हमारे सामने फिर वापस आए तो हम उसे क्यों ना देखें।
1: बिल्कुल अनंता, इसका एक रीजन है फेमिलैरिटी और नॉस्टैल्जिया। आज के बदलते दौर में जब ऑडियंस के पास देखने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं जिनके बीच मन बनाना इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, तब जाना पहचाना कैरेक्टर या कहानी हम तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है।
0: हाँ, और इसके पीछे सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही नहीं, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। जिस कहानी को ऑडियंस पहले से जानती है, उनकी कैरेक्टर्स उनको अच्छे से पता है, तो उसके बारे में उनको कन्विंस करना कंपैरेटिवली आसान है। कैरेक्टर्स फेमिलियर हैं, दुनिया फेमिलियर है, और ऑडियंस को पहले से ही उस कहानी से एक इमोशनल कनेक्शन होता है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया एक बहुत पावरफुल चीज़ है। लेकिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया के भरोसे एक नई कहानी अच्छी नहीं बन जाती।
1: बिल्कुल, इन दी एंड ऑल वी वॉन्ट इज अ प्योर गुड स्टोरी। तो इसी नॉस्टैल्जिया को बरकरार रखते हुए सुनते हैं गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम फिल्म कभी ना अलविदा कहना।

0: क्या बात है, इस गाने से तो मुझे एसआरकी की याद आ गई। मेरी उनकी फेवरेट फिल्म है ओम शांति ओम। और विद्वान, क्या तुम जानते हो, ये फिल्म खुद ही पुरानी हिंदी सिनेमा की यादों और उसके आइकॉनिक एलिमेंट से काफ़ी कुछ लेती है। क्या तुम जानते हो, ये फिल्म 1958 में आई मधुमती और सुभाष घई की 1980 में आई फिल्म कर से इंस्पायर्ड है। सिर्फ इंस्पिरेशन ही नहीं, ये फिल्म उन्हें ट्रिब्यूट भी देती है।
1: हाँ, और शायद इसी वजह से ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि कैसे पुरानी कहानियों को बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब अपना वीकली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अनंता, आज तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज ही अक्षय कुमार की नई फिल्म हैवान थिएटर्स में रिलीज हो रही है।
0: अरे वाह, जरूर इस बार भी कुछ अलग रूप देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार की हर फिल्म एंटरटेनमेंट और यूनिक कैरेक्टर्स वाली जो होती है।
1: बिल्कुल, इस बार अक्षय कुमार हीरो नहीं बल्कि एक डार्क और नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। जिस एक्टर को ऑडियंस ने सालों तक हीरो के रोल में देखा हो, उन्हें विलन के अंदाज में देखना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा।
0: और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रियदर्शन, राइट? अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ऑडियंस के लिए नहीं नई है, लेकिन इस बार दोनों कॉमेडी से हटकर डार्क थ्रिलर लेकर आए हैं।
1: अक्षय कुमार की जर्नी को देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। एज एन एक्टर, ही हैज़ ऑलवेज बीन अप टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल, और हर रोल को उन्होंने बखूबी निभाया है। अपनी लाइफ में भी, चाहे हम कोई भी करियर पिक करें, हमें क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन के साथ अपने काम को 100 नहीं बल्कि 200% देकर आगे बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी फील्ड में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है।
1: और शायद हैवान भी अक्षय कुमार के करियर का एक और एक्सपेरिमेंट है। अपनी एस्टेब्लिश्ड इमेज से बाहर निकलकर एक चैलेंजिंग नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना ट्रूली कमेंडेबल। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट से बढ़ने से पहले एक अक्षय कुमार का गीत तो बनता ही है। आइए सुनते हैं मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी, जिसके सिंगर हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट यूथ प्रोग्राम युवानी। इस मजेदार गाने के बाद अब वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक का। तो विद्वान, क्या है आज हमारे लिसनर्स के लिए इस खास सेगमेंट में?
1: अनंता, आज हम सुनेंगे फिल्म निर्माता और निर्देशक अतुल गंगवार जी को, जिनसे बातचीत की है संतोष द्विवेदी जी ने। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार। राष्ट्र के निर्माण में साहित्य, संगीत, सारी चीजों का अपना एक योगदान होता है, जो कि युवाओं को गढ़ते हैं, उनके सपनों को एक आकार देते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज हम जुड़ने वाले हैं नेशनल अवार्ड विनर अतुल गंगवार जी के साथ, जो कि फिल्म निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं और एक सजग पत्रकार के तौर पर भी आप समाज में अपना योगदान देते हैं। अतुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद, आभार।
2: अतुल जी, आपने एक लंबी यात्रा तय की है, नेशनल अवार्ड तक आप पहुंचे हैं। तो जब आपने शून्य से जो यात्रा शुरू की थी, जो आज शिखर तक पहुंची है, तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? उस युवा अतुल को कैसे एक बार याद करके हमारे युवा श्रोताओं को बताएंगे कि जब उन्होंने फिल्म डॉक्यूमेंट्री इस विधा में कदम रखा था और आज आप नेशनल अवार्ड विनर हैं, आपको राष्ट्रपति महोदया से पुरस्कार मिलने वाला है, कैसे फील कर पा रहे हैं एक युवा अतुल और एक फिल्म मेकर अतुल गंगवार?
3: एक बहुत लंबी यात्रा है सच में ये, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग कुछ सोचते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, मैं अगर अपनी कल्पना करूं जब मैं युवा था, तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि कुछ ऐसा करूं जो देश के लिए, समाज के लिए, मेरी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करूं कि लोगों को लगे कि हाँ। क्योंकि युवाओं के बारे में लोगों को मानना है कि उनके पास कई बार अपनी सोच नहीं होती, या तो बहुत स्टूडियस होते हैं तो पढ़ाई में लगते हैं तो पढ़ते रहते हैं, या फिर राजनीति अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, या फिर अलग अलग तरीके से, मतलब युवाओं के बारे में। और जैसे आज हमें लगता है कि आज हम देखते हैं आज के माहौल में, तो लोग कुछ जैन जी को बड़ा अच्छा पॉजिटिव मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं भ्रमित है, दिशाहीन है। तो हर युग में ऐसा ही हुआ है, मेरे समय में भी ऐसा ही था। हमारे जो वरिष्ठ होते थे, हमारे माता पिता या हमारे बड़े रिश्तेदार, उनको लगता था कि भाई लड़का क्या करेगा, सरकारी नौकरी ना मिले तो क्या जीवन है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, जीवन बहुत है। मेरे पिताजी पत्रकार थे, तो मुझे लगता था कि रास्ते और भी हैं। तो उस समय टेलीविजन क्योंकि नया नया आया था, तो टेलीविजन नया आया था तो उसमें स्कोप था, प्रिंट में नहीं था उतना, क्योंकि भाई वहाँ धुरंधर लोग थे और बड़ी सारी और चुनौतियां थी। और मेरे पिताजी का कहना था कि मैं खुद पत्रकार हूँ, तो मेरे को तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि मैं कह सकूं तुम मेरे बेटे हो। तो ये चैलेंज था। तो हमने अपनी दिशा बदल ली, क्योंकि हर युग में युवा बागी होता है। तो हमने कहा चलो छोड़िए, अब प्रिंट में आएंगे ही नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए। तो हमारी मुलाकात हुई, हमारे एक मित्र ने हमें रिकमेंड किया, तो हमने बैक फिल्म ज्वाइन किया। तो वहां से हमने अपना सफर शुरू किया, उन्होंने हम पे भरोसा किया, तो धीरे धीरे एक सफर यहाँ से शुरू हुआ। और मुझे लगता है कि जिस

0: फील्ड में हम हैं और मुझे लगता है अगर युवाओं को भी अगर सिनेमा के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, फिल्म निर्माता के क्षेत्र में अगर इसमें कुछ भी करना है तो एक खुला दिमाग और एक खुली सोच रखकर चलना चाहिए। अपने मन में बड़ी इच्छा थी और ये पैशन भी था सिनेमा के बारे में, बचपन से बड़ा शौक था। तो हमने जब टेलीविजन मिला तो हमने उसको खूब एंजॉय किया। लोग कहते थे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, हम 16 घंटे 24 घंटे हम वहीं रहते थे। जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक हमने कभी घंटे काउंट ही नहीं किए कि इतने घंटे नौकरी करने तो इतने घंटे में करना चाहिए। लोगों से बहुत सीखने को मिला क्योंकि इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज आपको बहुत लोग मिलते हैं और अगर आप सीखने की इच्छा करें तो ऐसे से व्यक्तित्व मिले, ऐसे से लोग मिले जो मेरे लिए एक समय में आप समझिए सपना थे। मैं जब अपना पहला प्रोग्राम एज ए प्रोड्यूसर अदवी कॉकटेल प्रोड्यूस कर रहा था तो निदा फाजदी साहब से मेरा परिचय हुआ, निदा फाजदी साहब के साथ टॉम वॉल्टर साहब के साथ परिचय हुआ। ये लोग वो थे जिन्होंने जीवन को बहुत जीवंतता के साथ जिया हुआ था। उनके पास इतने अनुभव, इतने किस्से थे जीवन के बारे में जो मुझे हमेशा एनर्जाइज करते थे। जब मेरा मॉरल डाउन भी होता था, मुझे लगता था यार क्या कर रहा हूँ, थक गया हूँ, सफलता नहीं मिल रही, तो मैं सोचता था यार निदा साहब कैसे सोचते हैं, टॉम वॉल्टर साहब कैसे सोचते हैं। फिर मैं कई सारे एक्टर्स, क्योंकि उस शो में बड़े लोग आते थे, जॉनी वॉकर साहब, पता नहीं आज की पीढ़ी परिचित है कि नहीं, मुकरी साहब, जगदीप, हसन कमाल साहब, बड़े शायर, बशीर बद्र साहब, ऐसे लोग आते थे, तो बड़ा सीखने को और बड़ा जानने को मिलता था। तो वो एक एनर्जी जो मिलती गई, जब मैंने ये निदा साहब वाली डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि जो 26 साल का सफर सन 2000 से लेकर आज 2026 तक, ये जो निदा साहब के साथ एक रिश्ता बना, जो एक सफर तय किया, मुझे लगता है कि 26 साल बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतने बड़े आसमान में एक छोटा सा तारे की तरह अपना भी एक मुकाम हमें मिला है, हमारी टीम को मिला है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जैसे आपने शुरुआत की पत्रकारिता से, मीडिया की शक्ति तो है ही, जिन लोगों को हम टीवी पर देखते हैं उनके साथ आप रूबरू हो सकते हैं। तो जैसे कल आपके रोल मॉडल निदा फाजली साहब या टॉम वॉल्टर साहब, या जैसे आपने और नाम गिनाए वो रहे, वैसे आज आप पे अब जिम्मेदारी है आज की युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाने का। जैसे आपने कहा भी कि रास्ते और भी हैं, तो ये रास्ते और भी हैं, अगर कोई युवा आपसे जानना चाहे तो कौन कौन से रास्ते बताएंगे आप उसको?
0: मतलब एक चीज और भी बताता हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन डूसू का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा 92 में। मैं अगर अपने जीवन को कभी विविधता में भी देखता हूँ तो राजनीति, फिर टेलीविजन, फिर डॉक्यूमेंट्री, फिर प्रोग्राम एंटरटेनमेंट, सहारा में लंबे समय रहना, कुछ शोज को एंकर भी करना, बतौर एक्टर भी काम करना, तो मुझे लगता है कि जब मैं ये सारी चीजें देखता हूँ और मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट्स जब शिकायत करते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, मेरा हमेशा से मानना ही है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। सबसे पहले तो यूथ को, जो युवा है, जो व्यक्ति किसी प्रोफेशन में आना चाहता है, उसको ये तय करना चाहिए कि उसके मन में क्या है। उसके परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक लड़ाई सबसे पहली ना अपने घर में शुरू होती है। मैं जब पॉलिटिक्स में था तो मेरे पिताजी को लगता था यार तुम जीवन में कुछ कर पाओगे क्या, कहीं कुछ मिलेगा क्या, डिग्री तुम्हारी तुम्हें कुछ दे पाएगी क्या, है ना। मैंने लिटरेचर में एमए भी किया लेकिन नहीं उसका इस्तेमाल हुआ। तो आज का जो दौर है उतना चिंता वाला नहीं है क्योंकि आज ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जब हम आए थे तब टेलीविजन क्योंकि नया था तो उस मीडियम में हमें काम मिल गया, करते करते सीखते सीखते हम आगे भी बढ़े, लेकिन एक्सपेंसिव चीजें थी उस समय। अगर हम सिनेमा के क्षेत्र में आते तो फिल्म पे काम करना होता था, तो फिल्म पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 400 फीट का रोल है तो 10-12 हजार रुपए का आएगा, तो आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो पैसा लगता था। फिर बाद में टेप्स पर आ गया, फिर अब डिजिटल हो गया, आपके और मेरे हाथ का जो मोबाइल है वही आपको एक्सप्रेस करने के लिए काफी है, आपके व्यक्तित्व को, आपकी बातों को।
1: यही मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने जब 92 की बात की तो आप नेता भी रहे, अभिनेता भी रहे, निर्देशक भी हैं और निर्माता भी हैं। इन सारे रोल्स में रहते हुए आपने एक ट्रांजिशन भी देखा है, जो हमारे टेक्नोलॉजी का हो या फिर लोगों के काम करने का ढंग का अंतर हो। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज जब ये बात कर रहे हैं, आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि जो हमारा फिल्म मेकिंग है या जो फिल्मों का जो संदेश रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे नेशन मेकिंग में भी, नेशनल बिल्डिंग का भी काम करती है। कैसे करती है?
0: देखिए, अगर मैं बहुत पुरानी चीज याद करूं, आजादी की लड़ाई में भी सिनेमा का और बाकी सारी चीजों का बड़ा योगदान था। ऐसे कई गीत बने जिन्होंने देश में, नौजवानों में, लोगों में जोश भरा। मैं याद करता हूँ किस्मत फिल्म का जो गीत है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, है ना। तो आज भी अगर हम इस मीडियम की बात करें तो ये अपने आप में बहुत सशक्त मीडियम है, देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश में आपके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, तो सिनेमा का हमेशा से योगदान रहा है समाज में। आप अगर याद करें तो कई ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने सामाजिक जो आंदोलन है उनको हवा दी, उनको

0: सशक्त बनाया है ना। अगर आजादी की लड़ाई की बात करें, समाज में बड़े सारे परिवर्तन भी किए, और आज भी हम देखते हैं कि कई फिल्में इस तरीके की आती हैं जो छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी चीजों के बारे में, क्योंकि सिनेमा कहें, रंगमंच कहें, ये एंटरटेनमेंट है और ये मैसेज एंटरटेनमेंट के साथ ही देता है। हमेशा से सिनेमा का योगदान रहा है। अब इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच होती है, अपनी अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है। तो मेरा हमेशा से मानना ये है कि भाई युवाओं को इस माध्यम का सशक्त इस्तेमाल करना चाहिए। आज अपॉर्चुनिटी भी है उसके पास, क्योंकि उसके पास अपनी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए उसके हाथ में एक मोबाइल है। अगर आप वहां से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपने को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना काम दिखा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं और लोगों को अपने बात से, अपने विचार से प्रभावित कर सकते हैं। मेरी लेकिन हमेशा से युवाओं से एक ही चीज रहती है कि आप सोचें, समझें और चिंतन करें। आज क्या है उससे ज्यादा आप ये सोचें भविष्य कैसा होगा। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मिलेगा। अगर हमारे से पहले वाले लोग अगर ऐसा नहीं सोचते कि आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा, तो फिर हम हर बार नई शुरुआत करते। तो आज हमारी युवा पीढ़ी के पास भी ये जवाबदारी और ये दायित्व है कि वो कुछ ऐसा करे जो आने वाले समय में देश के हित में, समाज के हित में हो, तो इस तरीके से उसको इस्तेमाल करे तो अच्छा रहेगा देश के लिए भी और उसके लिए भी।
1: बिल्कुल अतुल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और सिनेमा भी समाज का एक तरीके से आईना ही होते हैं। तो मैं आपसे एक चीज और आगे बढ़ के जानना चाहूंगा, जो युवा हमें भी सुन रहे हैं और उनमें से कोई व्यक्ति अभिनेता बनना चाहता है, फिल्म मेकिंग से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा?
0: सबसे पहली बात तो बहुत सारे ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर आप अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली के अंदर, वहां पर आप आ सकते हैं, वहां पर आप काम कर सकते हैं, अभिनय कैसे करें वो सीख सकते हैं। पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, FTIA करके फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको अभिनय और सिनेमा की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। दिल्ली NCR के आसपास के लोगों के लिए रोहतक में एक बड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी है, सुपुवा करके, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जहां पे आपको सिनेमा, टेलीविजन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, काफी सारी विधाएं आपको वहां सिखाई जाती हैं। एक तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट है, आप वहां जाकर सीख सकते हैं। दूसरा, आप अपने आप से भी सीख सकते हैं, देश में, समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें, उस चीज को देखें और किस तरीके का सिनेमा देश में, विश्व में बन रहा है उसको देखें। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ें, क्या लिखा गया है, साहित्य पढ़ें, क्योंकि उसी में से आपको चीजें मिलती हैं, उसी में से आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, किरदार मिलते हैं, और उसमें कुछ चीजों में आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, राजनीति से शुरू हुआ मैं, मेरे पास कोई, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी टेलीविजन में आने की भी, मेरे पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि मैं कभी अभिनय भी कर पाऊंगा या कभी मैं प्रोडक्शन करूंगा या कभी मैं डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट करूंगा, ये कभी नहीं था। मैं काम करता गया, ऑब्जर्व करता गया, सीखता गया। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि सर पर बोझ ना ले, क्या है ये, मतलब इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, आपके अंदर अगर कुछ भी है, कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। मतलब मेरी कहानी पे फिल्म भी बनी है, एक और कहानी दी रखी है, तो उम्मीद है कि अगले 2-4 महीने में उस पर भी फिल्म शुरू होगी। तो ये कहीं सीखा नहीं है मैंने, लेकिन आज की जनरेशन फॉर्चुनेट है कि उसके पास ये बड़े सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं कि जहां पर वो सीख सकती है। लेकिन सीखने के बाद भी दिल और दिमाग आपका ही काम आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल, जैसे दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इस सूरत को अगर आपको बदलना है तो जैसे अतुल गंगवार साहब ने कहा, पढ़ें और उसके बाद फिर एक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वाओ, दैट वाज सो इंस्पायरिंग। सच में रास्ता कोई भी हो, कड़ी मेहनत से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं गाना GRA फ्रॉम फिल्म जब तक है जान।

0: दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री में। आज हम याद करते हैं आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा जी को, जिनका 1987 में निधन हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य के छायावाद युग के चार स्तंभों में से एक थीं। विद्वान, मुझे उनकी एक पंक्ति बहुत प्रेरित करती है, स्नेह ही मनुष्यता के मंदिर का एकमात्र देवता है।
1: आज 1911 में द फादर फिगर ऑफ इंडियन क्रिकेट लाला अमरनाथ जी का जन्म हुआ था। वह आज़ादी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन बने और 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर ही सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज। लाला अमरनाथ जी का नाम आज भी इंडियन क्रिकेट के उन पायनियर्स में लिया जाता है जिन्होंने देश के इस खेल की बुनियाद को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई।
0: आज ही के दिन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपनी ऐतिहासिक स्पीच दी थी। अपनी स्पीच में उन्होंने दुनिया भर से आए डेलीगेट्स को हिंदू फिलॉसफी के बारे में संबोधित किया था। हमारे लिसनर्स ये जानकर हैरान होंगे कि विवेकानंद जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि अपनी स्पीच की ओपनिंग लाइन के लिए ही उन्हें हजारों लोगों ने खड़े होकर अपलॉड

0: किया।
1: और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विवेकानंद जी ने सिर्फ हिंदू फिलॉसफी के बारे में ही बात नहीं की, बल्कि अलग-अलग रिलीजन्स के बीच एकता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भी बात की। उनका मानना था कि अलग होने के बावजूद सभी रिलीजन्स का अल्टीमेट गोल इंसान को सिर्फ एक बेटर और पीसफुल लाइफ की तरफ ले जाना है।
0: और उनकी यही बात आज के टाइम में भी काफी अच्छी लगती है। आज जब हमारे आसपास इतने डिफरेंट कल्चर्स, बिलीव्स और पर्सपेक्टिव्स हैं, तब एक दूसरे को समझना और इज्जत करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
1: आज ही के दिन से जुड़ा एक और बहुत सिग्निफिकेंट और ट्रेजिक इवेंट है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमलों की एक सीरीज हुई जिसने पूरी दुनिया को गहरे तौर पर प्रभावित किया। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन पर हाईजैक प्लेन से हुए हमलों में हज़ारों लोगों ने अपने जान गंवा दी। उन सभी की याद में 11 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स में पेट्रियॉट डे मनाया जाता है। दोस्तों, अब सुनते हैं हमारा एक और गाना, कुछ तो बता जिंदगी, फ्रॉम मूवी फिल्म बजरंगी भाईजान।

0: हमारे अगले कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट क्विक बस का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ ताज़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट्स।
1: कल यानी 12 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर का सम्मेलन आगाज होगा। इस वर्ष भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस साल की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 12-13 सितंबर तक होने वाले इस सम्मेलन के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड और टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इंडिया इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में यानी 3 बार ब्रिक्स समिट होस्ट कर चुका है।

0: अगर आप वीगन को म्यूजिकल बनाना चाहते हैं तो 13 सितंबर को द पियानो मैन एल डेको सेंटर में उत्सव लाल्स रागास टू रील्स का परफॉर्मेंस होने वाला है। इस इंडो आयरिश म्यूजिकल प्रोजेक्ट में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को पियानो और वेस्टर्न ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा। परफॉर्मेंस 7:30 बजे से शुरू होगी। टिकट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन।
1: क्रिकेट फैंस के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़, 13 सितंबर संडे को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, सो डोंट मिस आउट।
0: इस संडे न्यू दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में फ्लीबैक का एक स्पेशल नेशनल थिएटर लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है। ये वही ओरिजिनल वन वुमन स्टेज प्ले है जिससे बाद में फीबी वॉलर ब्रिज की आइकॉनिक टीवी सीरीज फ्लीबैक बनी।
1: कला और रंगमंच से जुड़ी एक खास खबर, आज से नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में कृष्णा कथा स्पेक्टेकुलर ब्रॉडवे का मंच शुरू होने जा रहा है। ये प्रस्तुति 11 से 13 सितंबर तक चलेगी, जिसमें हर दिन दोपहर 2 बजे, शाम 4:30 बजे और शाम 7:30 बजे शो रखे गए। टिकट्स ऑनलाइन बुक की जा सकती हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, कल हो ना हो, फ्रॉम फिल्म कल हो ना हो।

0: आपको आज का युवानी कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें हमेशा आपके फीडबैक्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव और फीडबैक्स हमें ईमेल कर सकते हैं yuvanifeedback@gmail.com पर। जी हाँ, yuvanifeedback@gmail.com पर। कल फिर मुलाकात होगी एक नए जोश और नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए युवानी।
0: मैं हूँ अनंता।
1: मैं हूँ विद्वान।
0: नमस्कार।

0: युववाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इनोप्रोम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। श्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन की सभी तैयारियां जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। ब्रिक्स देशों के नेता सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। रिंका बहन, देखिए, लोकगीत हमारी संस्कृति और मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए गीत हैं। ये किसी एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे समाज की रचना होते हैं, और इन्हें गाने के लिए किसी विशेष शास्त्रीय संगीत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये सीधे दिल से निकलते हैं और सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए, तीज के बाद तो त्योहार ही त्योहार आ जाते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी के बीच सही तालमेल हो तो हर दिन त्योहार जैसा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: ऐसा ही एक लोकगीत हम आज अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा की आवाज़ में।

प्रियंका बहन, ये तो लोकगीत सुना क्रम पल शर्मा और मंजू शर्मा से। और देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों में, यानी हमारे देश के अलग अलग राज्यों में लोकगीतों के अनगिनत रूप हैं। चाहे राजस्थान के घूमर की बात करें, पंजाब का भंगड़ा या यूपी बिहार का सोहर, सबकी अपनी अलग अलग मिठास है। और इन्हें गाने के लिए भी साधारण यंत्रों की आवश्यकता होती है। साथ ही देखिए भाई, जितने भी हमारे रागनी हैं, उपदेश हैं, भजन हैं, लोकगीत हैं, इनसे कोई

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर और पूनम चौधरी की आवाज़ में ये रागनी।
1: और देखिए भाई, जितने भी हमारे ये लोकगीत हैं, रागनी हैं, आज के इस आधुनिक दौर में कहें तो हमें इन्हें बचा के रखना है और उन्हें बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारी पहचान है, हमारी अनमोल धरोहर है। तो हम सबको इनको मिलके बचाना है और आने वाले पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना है।
0: बिल्कुल, अब सुनवाते हैं पुष्पा गुसाई और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: बहन, ये तो लोकगीत सुना पुष्पा गोसाई और सखियों से, और पुष्पा गोसाई के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल,
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
0: राम
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शिवांश रक्षित।
2: नमस्कार।
1: खेल जगत की हलचल और आने वाले एशियाई खेलों की चुनौतियों के साथ आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। शेफाली वर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी और दीप्ति शर्मा की धारदार गेंदबाजी ने सेमीफाइनल में भारतीय जीत की इमारत बुलंद की। जापान के आइची नागायो में 19 सितंबर से होने वाले 20वें एशियाई खेलों की स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज चर्चा होगी टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेबल टेनिस और तलवारबाजी में हमारे पिछले प्रदर्शन और आगामी संभावनाओं के बारे में। बात जूनियर एशिया कप हॉकी की होगी, जहां भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में चल रहे यूएस ओपन टेनिस पर भी बात करेंगे। साथ ही खास चर्चा होगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे इंडियन एथलेटिक सीरीज की, जहां हम जो आज का प्रदर्शन है उसमें खिलाड़ियों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर खास बाइट्स भेजी है हमें अतुल कुमार गुप्ता ने और पूरी रिपोर्ट भी हम आपको देंगे। बहरहाल सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो कल सेमीफाइनल खेला गया।
2: एशिया कप में टीम इंडिया ने एक बार फिर अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया और अब खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। लेकिन भारत के लिए ये जीत आसान नहीं थी। दुबई के पिच पर रन बनाना आसान नहीं था और भारत को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा। स्मृति मंदाना सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गई। ऐसे वक्त में टीम को एक ऐसी पारी की जरूरत थी जो पारी को संभाले भी और रन भी बनाए। ये काम किया शेफाली वर्मा ने। शेफाली ने 40 गेंदों पर 64 रन बनाए। उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और भारत को अच्छी पोजीशन में पहुंचाया। शेफाली को इस पारी के दौरान कुछ मौके भी मिले। बांग्लादेश ने उनके कैच छोड़े लेकिन शेफाली ने इन मौकों का पूरा फायदा उठाया। उनके बाद प्रतिका रावल ने 20 रन बनाए। आखिर में ऋचा घोष ने 21 रन की तेज पारी खेली और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी नाबाद 24 रन बनाए। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। अब बांग्लादेश के सामने 150 रन का टारगेट था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखा। दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी। भारत ने मैच 40 रन से जीत लिया और इस जीत के साथ भारत ने महिला T20 एशियाई कप के फाइनल में 10वीं बार जगह बनाई है। यानी अब टीम इंडिया को सिर्फ एक और जीत चाहिए और एशिया कप की ट्रॉफी एक बार फिर भारत की हो सकती है। लेकिन फाइनल में भारत के सामने कौन होगा, इसका फैसला आज रात होगा। शेफाली के 64 रन की पारी भारत की इस जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक रही। लेकिन इस जीत में सिर्फ बल्लेबाजी की बात नहीं है। 149 रनों का स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी भारतीय गेंदबाजों ने इसे बखूबी डिफेंड किया। और अब बात उस मुकाबले की जो तय करेगा कि फाइनल में भारत के सामने कौन होगा। आइए बात करते हैं आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की। आज रात दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मुकाबला दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। श्रीलंका इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार फॉर्म में है और ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीतकर

0: यहाँ तक पहुंची है। टीम के सबसे बड़ी ताकतों में एक है कप्तान चमारी अठापटु। उनके अलावा हर्षिता और कविशा भी श्रीलंका के लिए अहम खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अच्छी फॉर्म में है। पाकिस्तान ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में हांगकांग को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाज नशरा ने कमाल कर दिया था। उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर 6 विकेट लिए। पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी में मुनीबा और शवाल जैसे खिलाड़ियों पर भी नजर रहेगी। कप्तान फातिमा सना बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम है, लेकिन सामने श्रीलंका है जो पिछले एशिया कप की चैंपियन भी है। यानी दोनों टीमों के पास अपनी अपनी वजह है फाइनल में पहुंचने की। पाकिस्तान चाहेगा कि उसकी गेंदबाजी एक बार फिर कमाल करे, वही श्रीलंका की कोशिश होगी कि उसकी बल्लेबाजी और अनुभव उसे फाइनल तक पहुंचाए। और इस मैच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल देखने को मिलेगा, या फिर श्रीलंका एक बार फिर भारत के सामने खिताब के लिए उतरेगा। इसका जवाब आज रात पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल से मिलेगा। फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा। भारत तो फाइनल में पहुंच चुका है, अब बस इंतजार है उसके सामने आने वाली टीम का।
1: जी हाँ बिल्कुल, सामने कौन प्रतिद्वंदी होगी ये तय करेगा आज का मुकाबला। और भारतीय मुकाबलों की, भारत के सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो शेफाली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा ऑलराउंडर दीप्त शर्मा जो कि सदाबहार खिलाड़ी हैं, भारतीय प्रदर्शन में उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा 6 गेंदों पर नाबाद 13 रन की पारी खेली। श्री चन्नी ने 4 ओवर में भी 14 रन देकर 1 विकेट लिया। बहरहाल शेफाली वर्मा ने क्या कहा सेमीफाइनल मुकाबले के बाद, आइए जानते हैं। उसके बाद शेफाली की, दीप्ति की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाएंगे।
2: As a opening batter, sometimes I get 6 fours and sometimes I didn't. So I'm just trying to, you know, just be calm and just take singles on that time because there is a Smriti there as well. She will also hit that 6 and 4. So I'm just trying to, you know, just be there for the team and just try to take long innings. Dipti is a legend for our spinning attack. As she doing her things, always she did that. And talking about the Shri, the way she is bowling, touch wood, she is doing well for our team. And we're just trying to, you know, just try to bowl in the partnership. And that's what our spinner is doing. And even our pacer also doing well. So with the Gorillas, we all are doing well in the batting and in the bowling. So we're just trying to win every game. Going to the finals is always exciting.
1: भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
3: माई क्रिकेट जर्नी आई स्टार्ट एज एन ऑलराउंडर, सो इट्स ऑलवेज हेल्प फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। एंड यू नो, व्हेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इन बैटिंग, एंड आई ऑलवेज ट्रस्ट दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन बैटिंग ऑल्सो। सो आई एम ग्लैड लाइक फ्यू बॉल्स आई गॉट टू हिट टूडे। सो इट्स ऑलवेज गिव मी कॉन्फिडेंस, either bowling first or batting first doesn't matter to me, but I always contribute as an all-rounder for the team. देखिए, as a team in fielding unit हम लोग अच्छा कर रहे हैं। like जितने भी हम लोगों ने practice sessions करे हैं उसमें हम जितने ज़्यादा हो सकता है, you know, number of catches ले रहे हैं as well as fielding also. तो मुझे लगता है कि एक आध दिन हो जाता है इधर उधर, but वो इतना बॉदर नहीं करते फाइनल्स के लिए कि हम एज अ टीम इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स हम अच्छा करेंगे।
1: जी हाँ, भारतीय टीम सभी क्षेत्रों में अच्छा करेगी और न केवल अब फाइनल जीतेगी बल्कि अपने जो एशिया कप का शानदार इतिहास रहा है उसको एक बार, उस परंपरा को जारी रखेगी। दोस्तों बात अब 19 सितंबर से होने वाले एशियाई खेलों की। आइची नगोया जापान में होने वाले इस एशियाई खेलों में भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी बहुत ही तैयारी, कड़ी तैयारी कर रहे हैं और इस बार नया इतिहास रचने के लिए पूरा एक मंच उनके पास मौजूद है। तो भारतीय खिलाड़ी खासकर आज चर्चा करेंगे इस विशेष सीरीज में 4 खेलों की, जिनमें टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेबल टेनिस और तलवारबाजी शामिल है। तो पेश है ये रिपोर्ट।
4: जापान के आइची नगोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों का बिगुल बस बजने ही वाला है। आकाशवाणी की इस खास प्रस्तुति में आज हम चर्चा करेंगे टेबल टेनिस, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस और फेंसिंग यानी तलवारबाजी की। किट की रफ्तार हो या तलवार की धार, चुनौती नेट के उस पार हो या सामने खड़े प्रतिद्वंदी के रूप में, भारतीय खिलाड़ियों का इरादा एक है, आइची नगोया एशियाड में दम दिखाना और देश का नाम रोशन करना। भारतीय खिलाड़ियों के साथ है बड़ा हौसला, भरपूर ऊर्जा और जीत के लिए जरूरी जुनून। कहीं हमने अपने पदक जीतने की परंपरा जारी रखनी है तो कहीं पदक जीतकर नया इतिहास रचने का लक्ष्य है। इन खेलों

0: में भारत की पदक यात्रा सिर्फ अपने परंपरागत मजबूत खेलों तक सीमित नहीं रहने वाली, कुछ ऐसे खेल भी हैं जहां चुनौती बेहद कड़ी है। टेबल टेनिस में चीन, जापान और कोरिया जैसी एशियाई महाशक्तियों के बीच भारत की चुनौती, टेनिस में अनुभव और नई पीढ़ी के जोश का इम्तिहान, सॉफ्ट टेनिस में संभावनाओं को प्रदर्शन में बदलने की कोशिश और तलवारबाजी में एशिया के स्थापित दिग्गजों के सामने भारतीय फेंसर्स की भर्ती महत्वाकांक्षा, आईची नागोया में ये चार खेल भारत के लिए चार अलग अलग कहानियां लिख सकते हैं। भारतीय टेनिस का एशियाई खेलों में इतिहास संघर्ष, निरंतरता और कई महान खिलाड़ियों की चमकदार उपलब्धियों से भरा है। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में टेनिस में 10 स्वर्ण, 7 रजत और 17 कांस्य पदक सहित कुल 34 पदक अपनी झोली में डाले हैं। एशियाई खेलों में भारतीय टेनिस की कहानी केवल पदकों की गिनती नहीं बल्कि उन सितारों की गौरव गाथा है जिन्होंने रैकेट के दम पर एशिया के सबसे बड़े मंच पर तिरंगा लहराया है। इस सफर की शुरुआत 1966 बैंकॉक खेलों में शिवप्रकाश मिश्र और विनय धवन के पुरुष युगल कांस्य पदक से हुई। फिर 1978 में श्याम मल्होत्रा और चिरदीप मुखर्जी ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय टेनिस की मौजूदगी को और मजबूत किया। 1982 नई दिल्ली एशियाड में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता और 1990 बीजिंग में लिएंडर पेस, जिशान अली, रोहित राजपाल और श्रीनिवासन वासुदेवन की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। लेकिन भारतीय टेनिस का असली स्वर्णिम दौर 1994 हिरोशिमा से शुरू हुआ। लिएंडर पेस और गौरव नाटेकर ने पुरुष युगल का स्वर्ण पदक जीता, जबकि पेस, नाटेकर, जिशान अली और आसिफ इस्माइल की टीम ने भी स्वर्णिम सफलता हासिल की। पेस ने पुरुष एकल में कांस्य पदक जोड़कर अपनी महान एशियाई खेल यात्रा का शानदार आगाज किया। फिर आए भारतीय टेनिस के वे महानायक जिन्होंने एशियाड को अपनी प्रतिभा का मंच बना दिया। लिएंडर पेस एशियाई खेलों के इतिहास में भारतीय टेनिस से सबसे बड़े नाम रहे, उनके खाते में 5 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक यानी कुल 8 पदक दर्ज हैं। महेश भूपति के साथ उनकी जोड़ी ने पुरुष युगल में स्वर्णिम सफलताएं दिलाई और दोनों ने भारतीय युगल टेनिस की ताकत को एशियाई मंच पर स्थापित किया। महिला टेनिस में सानिया मिर्जा ने भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। उन्होंने मिश्रित युगल में लिएंडर पेस और बाद में अन्य साथियों के साथ सफलता हासिल की, जबकि महिला युगल में भी पदक जीतकर भारतीय महिला टेनिस को एशियाई मंच पर मजबूत पहचान दिलाई। सोमदेव देवबर्मन ने 2010 ग्वांगजू में पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय टेनिस के इतिहास में एक और सुनहरा वर्ग जोड़ दिया। बाद के वर्षों में यूकी भांबरी, प्रजनेश गुणेश्वरन, रोहन बोपन्ना और जैसे खिलाड़ियों ने भी पदक जीतकर इस विरासत को आगे बढ़ाया। भारतीय टेनिस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 एशियाई खेलों में भारत ने 5 पदक जीते हैं। रोहन बोपन्ना ने 2018 जकार्ता पोलिंगबांग में दिविज शरण के साथ पुरुष युगल में और हांगजोंग 2023 में ऋतुजा भोंसले के साथ मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीते थे। रोहन बोपन्ना अब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में यूकी भांबरी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। युगल में यूकी के अलावा दक्षिणेश्वर सुरेश, एन श्रीराम बालाजी, अनिरुद्ध चंद्रशेखर होंगे। एकल में सुमित नागल को पदक के लिए पूरा जोर लगाना होगा। महिला युगल में अंकिता रैना और ऋतुजा भोंसले की अनुभवी जोड़ी भारतीय टीम में शामिल है। 1990 के बीजिंग एशियाई खेलों में भारत को पदक दिला चुके रोहित राजपाल कहते हैं,
1: देखिए अभी जो टीम है हमारी, अगर वो अपने पोटेंशियल पे अच्छे से खेल जाए और इंजरी फ्री रहे तो आज की डेट में हम लोग किसी भी टीम उनको हरा सकते हैं। खेलों में हम लोग टेनिस हमेशा ही मेडल्स आपको देती आई है देश को। मेरे टाइम से मैं भी खुद एशियन गेम्स मेडलिस्ट हूँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि टेनिस ने कंट्रीब्यूट ना किया हो, तो मुझे आशा है कि इस बार भी हम लोग देश को निराश नहीं करेंगे। देखिए डबल्स और मिक्स डबल्स तो खैर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा ही है, लास्ट टाइम भी गोल्ड मेडल था, लेकिन इस बार सिंगल्स में भी हमारा अच्छा चैलेंज है। सुमित नागल और सुरेश दक्षिणेश्वर दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं और अगर उनको सही कंडीशंस मिली और सही ड्रॉज मिले तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम सिंगल्स में भी मेडल ले आएंगे आपके लिए।
0: एशियाई खेलों में टेबल टेनिस की शुरुआत 1958 में जापान के ही टोक्यो शहर में हुई थी। टेबल टेनिस वो खेल है जहां पूरे विश्व में एशियाई देशों चीन, जापान, कोरिया, ताइपाई और हांगकांग का दबदबा है। ऐसे में भारत को एशियाड में अपना पहला पदक जीतने में लंबा इंतजार करना पड़ा और यह इंतजार खत्म हुआ 2018 में जब जकार्ता पोलिंगबांग एशियाई खेलों में भारत की पुरुष टीम अचंत शरद कमल, जी सात्यान, हरमीत देसाई, एंटोनी अमलराज और मानव ठक्कर की टीम ने कांस्य पदक जीतकर एशियाई खेलों में भारत को नई पहचान दी। भारत यही नहीं रुका, मिश्रित युगल में शरद कमल और मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीतकर टेबल टेनिस में दूसरा पदक भी दिला दिया। अगले हांगजोंग होशियाई खेलों में अहिका मुखर्जी और सुदिता मुखर्जी की महिला युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय टेबल टेनिस की निरंतरता कायम रख। अब तक भारत के खाते में कुल 3 कांस्य पदक हैं। इस बार न केवल पदक जीतने की चुनौती है बल्कि पदक का रंग भी बेहतर करने का लक्ष्य होगा। भारतीय पुरुष टीम में जी सात्यान, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, मनुष शाह और पायस जैन शामिल हैं। महिला टीम में श्रीजा अकुला, यशस्वनी घोरपड़े, दिया चिताले, सुतीर्था मुखर्जी और सिंड्रेला दास हैं। अनुभव और युवा जोश के संतुलन के साथ भारत की पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीमें एशियाई दिग्गजों को चुनौती देने और देश के खाते में एक और उपलब्धि जोड़ने उतरेंगी। टेबल टेनिस में भारतीय संभावनाओं के बारे में

0: रिद्वा ने कहा।
1: हमारी पूरी तैयारी है, हम खिलाड़ी फुल फॉर्म में हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल में कॉमनवेल्थ चैंपियन भी भारत से ही बना है। हमारा पास्ट रिकॉर्ड एशियन गेम्स में काफी अच्छा रहा, हमारे कई मेडल्स भी आए हैं। इसी तरह से अगर इनका प्रदर्शन रहा और ड्रॉ फेवरेबल रहा तो पूरी सफलता मिलेगी और पुराना रिकॉर्ड देखें, जब शरद कमल भी टीम में था, जब कॉमनवेल्थ चैंपियन बना, एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी रहा, उसके साथ ही इन लोगों को बहुत अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा इनकी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सपर्टीज के साथ काफी टाइम से खेल रहे हैं, वो इनके साथ अटैच्ड है। जो हम कहते हैं कि राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम मेक्स ऑल द डिफरेंस, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग उसके साथ फुल स्पोर्ट में तैयारी करके गए हैं और अनुभव का फायदा उठाएंगे। विमेन की बात की जाए, रिसेंट पास्ट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हमारी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो दिल्ली में समाप्त हुई है, उसमें भी काफी मेडल्स आए हैं। इस समय काफी फॉर्म में है, काफी कॉन्फिडेंस है इनको। हमारे पांचों के पांचों खिलाड़ी बहुत यंग है और टेक्निकली साउंड है कि आपस में बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, और इनको भी फॉरेन एक्सपर्ट्स के साथ खेलने हैं, उसके अंडर ट्रेनिंग के अभी बहुत अनुभव है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ड्रॉ इनके भी अच्छे फेवर में रहा तो एक और विमेन का मेडल भी आ सकता है।
0: सॉफ्ट टेनिस ऐसा खेल है जहाँ एशियाई स्तर पर जापान, दक्षिण कोरिया और ताइपाई की मजबूत परंपरा है। भारत ने पहली बार इस खेल में 2018 जकार्ता पॉलिंगबॉन्ग में हिस्सा लिया था, लेकिन अभी तक पदक की तलाश जारी है। पिछले एशियाई खेलों में भारत के अनुभवी खिलाड़ी जयमीना क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। महिला एकल में रागाश्री अंतिम आठ तक अपना अभियान ले जाने में सफल रही। पुरुष टीम ने कंबोडिया को और महिला टीम ने मंगोलिया को हराया था। भारतीय टीम मौसम के अनुकूल होने के लिए 20 दिन पहले ही जापान पहुंच गई है। टीम में जयमीना, आर्यन ठाकुर, अनिकेत चिराग पटेल और आद्या तिवारी हैं, जो एकल और मिश्रित युगल में उतरेंगी। टीम के कोच सुदेश ने जापान में चल रहे भारतीय टीम के शिविर से आकाशवाणी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा,
2: इस बार हमारी बहुत अच्छी तैयारी आए हैं। इस बार हमको मिनिस्ट्री ने हमको चार कैंप दिए हैं, जिसमें एक कैंप हमने उधर मार्च में लगाया था अहमदाबाद में। उसके बाद हमने एक कैंप, हमको इंटरनेशनल कैंप मिला था हमको कोरिया के लिए। एक महीने हमने उधर लोकल टूर्नामेंट खेल के भी उधर हमने पदक जीते हैं। उसके बाद एक महीने अभी हमारा श्रीनगर में कैंप था, वहाँ हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की एशियन गेम के लिए। देन लास्ट कैंप हमारा अभी 20 दिन का, अभी हम जापान में ही हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल हम पहला पदक इंडिया को सॉफ्ट टेनिस में ही देने की हमारी उम्मीद है। हम लोग फुकुशिमा में है अभी, करके एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, अलग एक राज्य में, तो हम लोग वहाँ पे है, वहाँ एक एकेडमी है, वहाँ पे करीब सिंथेटिक कोर्ट है, पानी वानी भी आता है, तो हम लोगों के लिए इंडोर कोर्ट बने हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग क्लब के बच्चे हमारे पास में पर डे आते हैं, वो हमारे बच्चों के साथ मैचेस खेलते हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उन बच्चों के साथ, उनके मैचेस कराते हैं।
0: वहीं हमने टीम के खिलाड़ी जयमीना से भी उनकी संभावनाओं के बारे में जाना।
3: जी, मैं कहना चाहूंगा तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि जैसे पिछले प्रीवियस टूर्नामेंट जो एशियन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने मेडल जीते, तो उसमें केंद्र सरकार का, साथ ही साथ हमारी इंडियन सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन का और मेरे कोचेस का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, और इसी के चलते हमने हिस्ट्री क्रिएट करी है। पहला मेडल भारत को हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी दिलाया, फिर एशियन चैंपियनशिप में दिलाया, अब हम एशियन गेम्स के दरवाजे पे खड़े हुए हैं और जल्द ही हम ये दरवाजा भी खोलकर भारत के लिए नए इतिहास बनाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, इंडिया तैयार है, उसकी मेहनत रेडी है और चैलेंजेस हम फेस करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो, हम अपना बेस्ट देंगे।
0: तलवारबाजी में भारत की टीम काफी संतुलित है। भारत का फेंसिंग में अभी तक एशियाई खेलों में कोई पदक नहीं है। भारत दोनों वर्गों में फाइल साबर एपी की व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। सबसे बड़ी उम्मीद ओलंपियन सीए भवानी देवी हैं, जो कि साबर की व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा में उतरेंगी। इसके अलावा श्रेया गुप्ता, जेफरलिन और श्रुति जोशी हैं। महिला एपी में तनीक्षा खत्री, प्राची लोहान, मितवा और यश कीरत शामिल हैं। पुरुष साबर में करण सिंह, विश्वनिधि, लक्ष्य और विशाल थापर हैं। पुरुष फाइल में सचिन, हेमाज सिंह, आदित्य और तेजस मनोज पाटिल हैं। अनुकूल ड्रा रहा तो भारत के पदक की वास्तविक उम्मीद की जा सकती है। भारतीय एपी टीम के कोच मोहित मानते हैं कि भारत का दावा दमदार है।
4: तैयारी हमारी, जैसे कि आपको पता है कि एशियन गेम्स है और गवर्नमेंट और जो एसोसिएशन है पूरी लगी हुई है कि बच्चे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, एथलीट्स का अकोमोडेशन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इक्विपमेंट, फैसिलिटीज पूरी मिले। हम जो है इस टाइम में अपनी तरफ से ऑल आउट जा रहे हैं।

0: हम ये सोच के नहीं जा रहे कि हम वहां पार्टिसिपेट करें, हम ये सोच के जा रहे हैं कि वी हैव टू विन मेडल दिस टाइम। जहां तक एपी का सवाल है, अभी पिछले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप थी होंग में और वहां पर राउंड ऑफ 64 में, फाइनल राउंड ऑफ 64 में हमारे दो फेंसर्स ने जो है क्वालिफाई किया था, प्राची और तनिक्षा खत्री। इसके अलावा रही बात भवानी देवी की, उसने सैटेलाइट कप में गोल्ड मेडल जीता है और ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। बॉयज अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
1: हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्राची लोहान भी भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर काफी आशावान हैं।
2: अभी हम नेशनल कैंप में पटियाला है और हमारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि देश को अच्छे से अच्छा पदक दिला सकता। सर, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं टेबल ऑफ 64 मेन 64 में पहुंची थी। मेरे डे वन के जो क्वालिफाइंग बाउट थी उसमें मेरी रैंक 64 थी और जो फर्स्ट रैंकर थी उस कॉम्पिटिशन में उसके साथ मेरा मैच था। बहुत मुश्किल मैच था, वो वर्ल्ड रैंक 25 चाइनीज फेंसर थी। वो बाउट जीत के मैं डे टू क्वालिफाई किया था और वहां पे मैं उस कॉम्पिटिशन की सिल्वर मेडलिस्ट से एक पॉइंट से हारी 15-14। तो मनोबल बहुत बढ़ा है उस कंपटीशन के बाद और सच में उम्मीदें हैं कि इस कंपटीशन में मैं बहुत बेहतर प्रदर्शन करूंगा।
1: रैकेट की रफ्तार से लेकर पिंग पोंग की फुर्ती और तलवार की धार तक आईजी नगोया में भारत की उम्मीदें कई रंगों में नजर आएंगी। सवाल सिर्फ पदक जीतने का नहीं बल्कि एशिया की सबसे चुनौतीपूर्ण खेल मंच पर अपनी बढ़ती ताकत और नई पहचान दर्ज कराने का भी है। तो बढ़ाइए भारतीय खिलाड़ियों का हौसला और कीजिए चीयर फॉर इंडिया। और शिवांश, अब क्यों ना बात एथलेटिक्स की करें। तो पेश है ये रिपोर्ट जो कल नेहरू स्टेडियम में इंडियन ओपन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज हुई उसके बारे में।
3: नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज का समापन भारतीय एथलेटिक्स के लिए कई यादगार प्रदर्शनों के साथ हुआ। एशियाई खेलों से ठीक पहले आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के शीर्ष एथलीटों ने अपनी तैयारियों को परखा और दो स्पर्धाओं में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बने। दिन की शुरुआत महिला पोल वॉल्ट से हुई। मध्य प्रदेश की नितिका अनूप अकारे ने 4 मीटर 10 सेंटीमीटर की छलांग के साथ पहला स्थान हासिल किया। तमिलनाडु की बारानिका और कार्तिका ने भी 4 मीटर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन प्रयासों के आधार पर नितिका शीर्ष पर रही। इसके बाद ट्रैक पर रफ्तार का रोमांच देखने को मिला। महिला 100 मीटर में महाराष्ट्र की हरिता ने 11.22 सेकंड का समय निकालकर बाजी मारी। पुरुष 100 मीटर में उड़ीसा के अनिमेश ने 10.21 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह दूसरे स्थान पर रहे। जीत के बाद गुरिंदर वीर सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: प्रेशर नहीं था, हर कंपटीशन लाइक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है, हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। मेरा थोड़ा ब्लॉक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, मैं थोड़ा ब्लॉक्स पे डिले कर गया, नहीं तो अच्छा टाइमिंग आता। बट हाँ, एशियन गेम्स के लिए और अच्छा प्रिपेयर करेंगे जो लास्ट बचे दिन है, तो होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
3: खास बात यह रही कि अनिमेश ने इसके बाद 200 मीटर में भी अपना दबदबा कायम रखा। 200 मीटर में अनिमेश ने 20.59 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। केरल के जिष्णु ने दूसरे और मध्य प्रदेश के अभय सिंह तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह स्प्रिंट में अनिमेश का दिन 2 स्वर्ण पदकों के साथ शानदार रहा। पुरुष 800 मीटर में केरल के मोहम्मद अफसल ने 1:46.40 सेकंड में दौड़ पूरी कर शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र के प्रकाश दूसरे और हरियाणा के कृष्ण कुमार तीसरे स्थान पर रहे। 1500 मीटर में राजस्थान के राहुल ने 3:39.89 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, लेकिन लंबी दूरी के दौड़ में सबसे अधिक नजरें थी अविनाश पर। लंबे अंतराल के बाद प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स में लौटे महाराष्ट्र के इस स्टार ने पुरुष 3000 मीटर स्टिपल चेज में 8:32.39 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के ही शुभम दूसरे और हरियाणा के विकास तीसरे स्थान पर रहे। एशियाई खेलों में पहले अविनाश की यह वापसी भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात उन दो प्रदर्शनों की जिन्होंने इस प्रतियोगिता को रिकॉर्ड बुक में भी जगह दिलाई। पुरुष हैमर थ्रो में दिल्ली के निर्भय चौधरी ने 71.02 मीटर का थ्रो किया। उनका यह प्रदर्शन परिणाम सूची में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। महिला हैमर थ्रो में भी नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। उत्तर प्रदेश की तान्या चौधरी ने 68.35 मीटर का शानदार प्रयास किया और शीर्ष स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश के ही अनुष्का यादव 66.34 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि राजस्थान की कुलविंदर तीसरे स्थान पर रही। फील्ड इवेंट्स में पुरुष जेवलिन थ्रो का मुकाबला भी

0: आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश के रोहित यादव ने 81 मीटर 10 सेंटीमीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में 3000 मीटर स्टिपल चेज में पारुल चौधरी ने 9 मिनट 22.49 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। महिला 400 मीटर में महाराष्ट्र की ऐश्वर्या ने 52.51 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश की प्राची दूसरे और कर्नाटक की पूवम्मा राजू तीसरे स्थान पर रही। लॉन्ग जंप में केरल की एनसी सोजन ने 6 मीटर 76 सेंटीमीटर की छलांग के साथ पहला स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश की शैली सिंह 6 मीटर 65 सेंटीमीटर के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि आंध्र प्रदेश की भवानी यादव भगवती ने तीसरा स्थान हासिल किया। एशियाई खेलों की तैयारी को लेकर एनसी सोजन और शैली ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: सो सैटिस्फाइड टुडेज परफॉर्मेंस, इट इज जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन, नथिंग टू मच। ऑफ कोर्स दैट इज द मेन टारगेट, बोथ इन द पोडियम। ऑफ कोर्स आई मीन एमिंग फॉर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया।
2: मैं खुश हूँ कि मैंने 665 किया है, क्योंकि आज का जो सेशन था वो मतलब एक्चुअली सर और मैंने डिसाइड किया था कि ये वाला जंप सेशन हम ट्रेनिंग जैसे करेंगे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा किया। और मैं खुश हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है जंप में, उस गेम्स में इससे बहुत अच्छा होने वाला है। एंड आज के उससे भी मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मतलब धीरे धीरे मैं बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ, उससे मैं और मेरी कोच बहुत खुश हूँ।
0: हाई जंप में हरियाणा की पूजा सिंह और उत्तर प्रदेश की रीत राठौर ने 1 मीटर 81 सेंटीमीटर की समान ऊंचाई पार की। प्रयासों के आधार पर पूजा सिंह ने पहला और रीत राठौर ने दूसरा स्थान हासिल किया। महिला जेवलिन में अनुभवी अन्नू रानी ने 57 मीटर 50 सेंटीमीटर के प्रयास के साथ पहला स्थान हासिल किया। महिला 800 मीटर में उत्तराखंड की लिली दास ने अंतिम क्षणों में शानदार दौड़ लगाते हुए रेस जीती। लिली ने जीत के बाद क्या कहा, आइए जानते हैं।
3: कैटा जी उतना नहीं था एक्चुअली, क्या है मेरा ट्रेनिंग भी इस टाइम अच्छी थी और 2:02-2:03 के अंदर ही मेरा जो ट्रेनिंग था उसके अंदर ही मेरा ट्रेनिंग थी, तो इसलिए मुझे पता है कि इतने का ही रेस जाएगी 2:02-2:03। मेरा कोच ने भी पहले ही मुझे बोल दिया था और मैं इसीलिए फॉलो किया रेस को, क्योंकि फास्ट लैप बहुत फास्ट चली जाती मुझे पता है, क्योंकि कोई भी लेके जाता है तो 59-60 का लैप लेके जाता है, तो इसलिए मैं पीछे गई थी, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग भी एकदम स्पीड वर्क नहीं था, मीडियम था, क्योंकि 800-1500 दोनों देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा पीछे छोड़ के चल रही थी। मुझे पता है कि लास्ट स्पीड में मैं मारूंगी सबको, तो इसलिए मैं अपना रिजर्व में रख दिया था कि मुझे लास्ट में 80 मीटर पुल करना है। पूजा मेरे से टाइमिंग से अच्छा है मुझे पता है, क्योंकि मेरा भी उतना खराब नहीं है, 2:02 मैंने भी कर रखी हूँ, बट उस हिसाब का ट्रेनिंग नहीं है इस टाइम, क्योंकि अभी थोड़ा फिलहाल पीछे इंजरी हुआ था, तो उसको रिहैब करके मैं अभी कमबैक किया, तो उस हिसाब से मुझे इतना परेशान नहीं था यहाँ पे, वहाँ पे भी नहीं था, बट उस टाइम ट्रेनिंग नहीं थी जून में भुवनेश्वर में, बट इस टाइम क्या है थोड़ा सा एकदम खुल के, मतलब ऐसा था कि खुल के भागना है, किसी से डरना नहीं कुछ नहीं, बस फॉलो रेस करना है, लास्ट में मुझे जहाँ से लगेगा मैं वहाँ से उठाऊंगी।
0: महिला ट्रिपल जंप में तमिलनाडु की लाशा ने 13.76 मीटर के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं पंजाब की निहारिका ने दूसरा स्थान हासिल किया। निहारिका जीत के बाद क्या कहती हैं, आइए जानते हैं।
4: एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी। गोल्ड ऑफ कोर्स गोल्ड में।
0: दिन के अन्य स्पर्धाओं में भी शानदार मुकाबले देखने को मिले। इस तरह नई दिल्ली में हुई इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के लिए एशियाई खेलों से पहले एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। अनिमेश के दोहरे स्वर्ण से लेकर अविनाश की वापसी, रोहित यादव के 81 मीटर से अधिक के प्रदर्शन और दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड तक प्रतियोगिता ने भारतीय एथलेटिक्स में मौजूद अनुभव और नई प्रतिभा दोनों की झलक दिखाई। अब इन खिलाड़ियों की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जहां इन प्रदर्शनों को पदक में बदलने की चुनौती होगी।
5: अब बात यूएस ओपन टेनिस की करें तो एक लाइव अपडेट दें कि आपको एलिना राइबकीना ने कोको गोफ को सेमीफाइनल में 3-6, 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब उनका सामना बेलारूस की आरिना सबालेंका से होगा, जिन्होंने अन्य सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से पराजित किया। यूएस ओपन के महिला एकल के फाइनल में 20 साल में पहली बार है जब कोई भी अमेरिकी खिलाड़ी इस खिताबी मुकाबले में दस्तक नहीं दे रहा है। और दोस्तों अभी यूएस ओपन मेंस का सेमीफाइनल स्टेज भी आ गया है, वहां अलेक्जेंडर ज़वेरेव का मुकाबला खाचलोव से होगा। इसके अलावा बेन शेल्टन का सामना फ्रांसीसी टियाफोई से होगा। चीन में चल रहे जूनियर एशिया कप हॉकी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से पराजित कर चौथी बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय कप्तान ड्रैग फिल्कर अनमोल इक्का ने 16वें और 54वें मिनट में 2 गोल दागे, 1 गोल सुखविंदर ने 51वें मिनट में किया। इसके अलावा जो 1 गोल मलेशिया का था वो एम राहुल।

0: नहीं, पेनल्टी कॉर्नर पर किया था और भारत ने पूल चरण में शानदार प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे को एक तरफा अंदाज में हराया था, जबकि जापान से मैच उसका ड्रॉ रहा था। अब पाकिस्तान और साउथ कोरिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल से तय होगा कि भारत के सामने फाइनल में कौन होगा। टीम क्वार्टर फाइनल में एवीसी कॉन्टिनेंटल के जापान से 17-25, 15-25, 19-25 से पराजित हो गई है। बात ट्रैक एंड फील्ड की करें तो पिछले एशियाई खेलों में हांगजोंग में 100 मीटर बाधा दौड़ में रजत जीतने वाली ज्योति यराजी के अलावा ऊंची कूद के एथलीट अनिल कुशारे और टेरी कूद खिलाड़ी प्रणीव चित्रावल को फिटनेस प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें ज्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा और मेरे सहयोगी शिवांश को अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।
1: नमस्कार। खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता

एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एशिया चषक हॉकी क्रीडायां भारतीय कनिष्ठ पुरुष दलम् अद्य प्रथमायां उपांत्य स्पर्धायां मलेशिया देशम् एकस्योत्तरे त्रिभिः अंकैः पराजित्य चीन देशस्य मोकवी नगरे अंतिम स्पर्धायां स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: प्रियंका बहन देखिए, आज 11 सितंबर है और आज है महान स्वतंत्रता सैनिक, समाज सुधारक आचार्य विनोबा भावे की जयंती। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गोगेड़ा गांव में हुआ था और भूदान आंदोलन में उन्होंने 1951 में ऐतिहासिक शुरुआत की थी, जिसके तहत भूमिहीनों को दान में मिली भूमि बांटी जाती थी। साथ ही विनोबा भावे को 1958 में पहला रमन पुरस्कार मिला था। वर्ष 1983 में उन्हें मरण उपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था।
1: बिल्कुल, और उन्हें कहा जाता है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी उन्हें माना जाता है। और ऐसे महान जो स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी विचारक रहे, उन्हें हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं।
0: और उनके देखिए जीवन दर्शन के मुख्य स्तंभों की बात करें तो अध्यात्म का और विज्ञान का समन्वय और सर्वोदय यानी सभी का उदय। सर्वोदय का मतलब है समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास और न्याय तक पहुंचाना। साथ ही देखिए भाई, जो वैचारिक अंतर साम्यवाद की जगह उसमें साम्यवाद जहाँ जबरदस्ती का कानून से समानता लाना चाहता था, वहीं साम्य योग प्रेम करुणा और हृदय परिवर्तन के जरिए समानता की बात की। इसी तरह से श्रम की प्रतिष्ठा की अगर बात करें, श्रमदान की, तो उनके दर्शन के सारंभिक जो श्रम में बहुत ऊंचा स्थान दिया था। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समाज के लिए कुछ ना कुछ शारीरिक श्रमदान अवश्य करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और देखिए कार्यक्रम में हम कुछ विशेष बातचीत भी लेकर आते हैं जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं वो लाभ ले सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए भाई, आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में सामान्य जो हड्डी रोग और जोड़ों के रोग आम बात हो रही है, इसमें गठिया, सर्वाइकल, कंधे में गंभीर जकड़न होना और इसके जो मुख्य लक्षण हैं, और जोड़ों के दर्द व सूजन, सुबह के समय जकड़न और चलने बैठने में परेशानी, इस तरह के जो इसके जो लक्षण हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए महिलाओं में भी 40 के बाद अक्सर ये समस्याएं देखी जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बातचीत लेकर आए हैं जिसका विषय है सामान्य हड्डी एवं जोड़ों के रोग। इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, और इनसे बातचीत कर रहे हैं नीलम मलकानी।
0: तो आइए
1: सुनते हैं
0: सुनते
1: ये।
0: हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार, मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
3: जी शुक्रिया।
2: हड्डी के सामान्य रोग, हम ये अक्सर सुनते हैं फ्रेज, हड्डी के सामान्य रोग क्या होते हैं?
3: इसमें हड्डी और जोड़ों के जो रोग होते हैं,
2: जी,
3: सबसे कॉमनली जो जोड़ों का दर्द, सूजन, ये बहुत कॉमन रहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कॉमनली है, जो किसी को भी हो सकता है, बट कॉमनली ज्यादा एज या लेडीज को अर्ली आजकल होने लगा है।
2: अगर हम जोड़ों के दर्द की बात करें तो हम सीधा इसे एक उम्र के ब्रैकेट से जोड़ते थे कि जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था जो है आप उसकी तरफ बढ़ते हैं या बुजुर्गों में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन आजकल हम बच्चों में भी पाते हैं और महिलाओं को भी बहुत कम उम्र से जोड़ों के दर्द जो है वो शुरू हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है?
3: बच्चों में हम ऑस्टियोपोरोसिस नहीं बोल सकते, कैल्शियम की कमी हो सकती है बच्चों में, बट जब हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं या लेडीज में खास तौर से जब उनका पीरियड्स बंद होने का टाइम, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं, उसके नजदीक पहुंचती हैं, तब ये चीज ज्यादा तेज हो जाती है।

0: उस दोनों में फर्क ये रहता है कि बच्चों में अगर हम उनको अच्छे से कैल्शियम, विटामिन डी और कुछ अच्छी डाइट दें और
1: जी
0: कुछ उनके एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें तो वो रिकवर कर जाता है, पर वृद्धावस्था में या जो मैंने अभी चीजें बताई उनकी मासिक जो बंद होने का टाइम आता है तो उस टाइम पे वो इतना रिकवर नहीं कर पाते हैं उससे। तो
1: जी
0: उसके लिए भी रहेगा तो वही कि कुछ मेडिसिन हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ आपका जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करना है हमारे, उससे काफी कुछ चेंज हो जाता है।
1: तो डॉक्टर मोहम्मद, अभी आपने लाइफस्टाइल की बात की, तो हमारी लाइफस्टाइल अभी आजकल ऐसी हो गई है कि बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है, चाहे वो काम के दौरान हो या फिर हम सफर कर रहे हैं, बहुत दूर कई बार ऑफिसेज होते हैं, वहां जाना होता है, तो बहुत लंबे समय तक बैठने से भी क्या हमारी हड्डियों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ता है। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हम बैठ सकते हैं, मना नहीं है, पर उससे पहले हम जिंदगी में अपने जो चेंजेस लाने हैं हम एक्सरसाइजेज अच्छे से करें, पोस्चर्स को ठीक रखें। एक तो सोफे पे बैठना हो गया और एक बैठना चेयर पे बैठना हो गया, तो दोनों के में जो पोस्चर्स बिगड़ते हैं उससे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हों में दर्द, ये बहुत कॉमन हो जाता है। अगर हम उन्हीं को पोस्चर्स के साथ ठीक कर रखें कि जैसे आपने कुर्सी पे बैठ गए, पीछे कुशन कुछ सपोर्ट लेकर के बैठेंगे
1: जी,
0: तो, और जल्दी अपना पोस्चर बदल लें, तो उन सब चीजों से हम बच सकते हैं।
1: ये भी मैं जानना चाहूंगी कि हम लंबे समय तक कई बार मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे काम के लिए हो या फिर काम से फ्री होकर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हो, तो ऐसे में हम देखते हैं कि गर्दन में अक्सर दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन जिसे लोग कहते हैं, या स्पाइन भी जो है वो उसकी पोजिशन तो ठीक नहीं रहती पोस्चर की, तो इस बारे में आप क्या सलाह देंगे?
0: देखिए भागदौड़ वाली लाइफ में और आज नेट की इतना ज्यादा योगदान है, तो उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हम चीज उसको नहीं छोड़ सकते,
1: जी
0: तो सभी के ऊपर इसका इफेक्ट है बहुत ज्यादा। खासतौर से बच्चे आजकल मेरी ओपीडीज में बहुत आते हैं जिनको ये सारी गर्दन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक पोस्चर में बहुत देर तक, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि वो पोस्चर सही नहीं होता, बैठ के पढ़ते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, बहुत
1: जी
0: देर तक एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं और सारे दिन फिर वो उसी एक जगह अपनी नजर को लगा के बैठे रहते हैं, चाहे वो कोई भी स्क्रीन है, चाहे वो आपका फोन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, तो उससे क्या होता है कि मसल्स धीरे धीरे धीरे वीक होती रहती हैं और उनके अंदर में सूजन या स्पैज्म आना शुरू हो जाता है, और फिर जब ये सब चीजें एक हद तक बढ़ जाती हैं तो फिर पेन आ जाता है। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि अगर हमको इंटरनेट का फायदा भी है तो उसका दूसरा ये नुकसान भी हम ले रहे हैं जिंदगी में, कि फिर मैं एक बार से कहना चाहूंगा कि इसमें अच्छे पोस्चर्स, अच्छी एक्सरसाइजेस और अच्छी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें फॉलो की जाएगी तो हमारे लिए इंटरनेट भी या हमारा कामकाज भी, जिसपे हम लैपटॉप पे बैठना है या कंप्यूटर पे बैठना है, तो हमें कोई नुकसान नहीं है।
1: अभी शुरुआत में आपने ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया था। आमतौर पर समझा जाता है कि हड्डी जो है वो अगर शरीर के अंदर ही घिसनी शुरू हो गई है, कैल्शियम कम हो रहा है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हम इस अवस्था को ही ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं या इसके अलावा भी कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं जिनका होना जरूरी है, और किस तरह से ये हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करता है?
0: इसमें समझने वाली बात यह है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो एक वृद्धावस्था की तकलीफ कह सकते हैं उसे,
1: जी
0: तो हर व्यक्ति को जिसके थ्रू निकलना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारी हड्डी है वो जवानी में बहुत अच्छे से मजबूत होती है, उसके अंदर बहुत कैल्शियम होता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो उम्र बढ़ने का हम ये कह सकते हैं कि वो बीमारी नहीं है, उम्र के हिसाब से उस चीज में चेंजेस जो आते हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसको बढ़ना और कम होना हम हमारे हाथ में है, पर रोक नहीं सकते उस ऑस्टियोपोरोसिस को। हाँ, किसी हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। तो जैसे जो वृद्धावस्था में है और खास तौर से लेडीज हैं, जब उनका पीरियड्स बंद हो जाता है तो ये चीज हार्मोनल कमी के वजह से और फास्ट हो जाता है, तो उसमें बेसिकली होता वही है कि हड्डियां भुरभुराने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, कैल्शियम निकलने लगता है, जो अभी तक हम कैल्शियम खाते थे वो वापस कैल्शियम में हमारी हड्डियों में जाता है, पर उस अवस्था में वो वापस निकलना शुरू हो जाता है। आज बहुत सारी क्लिनिक्स में इनका इलाज होता है और रोजमर्रा की ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स में ऐसे पेशेंट्स की, ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा तादाद है, पर उनको एक ही चीज बताई जाती है कि आप कैल्शियम लें, आप विटामिन डी खाएं, एक्सरसाइज करें, पर बहुत कॉमनली लोग जो हैं जो इस चीज को अभी भी इवन तक की बड़ी बड़ी क्लिनिक्स में नहीं बताया जाता कि प्रोटीन का इंटेक होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोटीन में नहीं लेंगे मात्रा में जितनी हमारा शरीर को चाहिए, तो वो हम कितना भी हम कुछ खाते रहेंगे विटामिन डी और कैल्शियम, तब तक हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी बोन का जो स्ट्रक्चर होता है अगर देखा जाए तो उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और खासतौर से हमारे इंडियन कल्चर में जो है प्रोटीन बहुत कम खाया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, पर जो वेजिटेरियन होने के वजह से तो वो वैसे भी उनके डाइट में जो है प्रोटीन नहीं होता
1: जी।
0: तो इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि जितना आपका वजन है उतना ही ग्राम प्रोटीन आपका रिक्वायरमेंट है डेली का, और साथ साथ में अपना विटामिन डी और कैल्शियम रखें तो ये चीजों पर हम लोग काबू पा सकते हैं
1: जी। ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो आमतौर पर विटामिन डी, कैल्शियम, इस

0: तरह के ही नाम हम सुनते हैं। प्रोटीन कैसे जुड़ता है? प्रोटीन ज्यादातर टिश्यूज के लिए माना जाता है, तो कैसे ये हमारी हड्डियों को सुरक्षित रखता है?
1: इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम अपना घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कॉलम खड़ा करते हैं, तो कॉलम जब खड़ा होता है उसमें सबसे जरूरी चीज होती है, पहले होते हैं सरिया होता है जिसे स्टील कहते हैं, उसको बांध करके उसको सीधा खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर हम उसमें सीमेंट, गिट्टी या उसको हम कहें कि गारा जो होता है उसके अंदर भरते हैं। तो जो सरिया है वो हमारा प्रोटीन पार्ट है, और जो उसके अंदर हम गारा भर रहे हैं, जो उसके अंदर सीमेंट डाल रहे हैं, वो हमारा कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब चीजें होती हैं। तो जब हमारा जब सरिया ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम उसमें कितनी भी उसमें डालते रहेंगे तो वो हड्डी में वो बात नहीं आएगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो इसलिए हमको इस चीज पे भी जोर देना चाहिए कि हमारी अच्छी प्रोटीन डाइट जाए तो वो जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है बोन का वो स्ट्रेंथ पकड़े।
0: और ऐसे में जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं वो कितने कारगर होते हैं?
1: सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा, बट जरूरी चीज है क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि उनकी डाइट में उतना प्रोटीन नहीं हो पाता, तो वो अपना सप्लीमेंट्स के रूप में बहुत सारे आजकल मार्केट में प्रोटीन्स मिलते हैं, तो अपने जिन भी डॉक्टर्स से मिलते हैं उनके परामर्श से वो अपना प्रोटीन को चूज करके और वो अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा सकते हैं।
0: तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बुजुर्ग जितने सक्रिय रहेंगे उनकी हड्डियां उतनी मजबूत रहेंगी, लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस की अवस्था है तो हड्डियां भुरभुरी हैं, तो ये भी डर रहता है कि एक्टिविटीज की वजह से कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, तो बहुत ही डिलेमा वाली ये सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में किस तरह से बुजुर्ग एक्टिव भी रहें और चोट से भी बचे रहें?
1: देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि जितना ज्यादा बोन्स को यूज करते हैं, अपने जॉइंट्स को यूज करते हैं, तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली हमारी हड्डी के अंदर जाता है। जब हम जो भी कैल्शियम खाएंगे वो हमारी हड्डियों में पहुंचता है। हम जितना हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगी, मतलब कि जितना ज्यादा हमारी कम चलना फिरना, जितनी कम एक्टिविटी होगी, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों में से बाहर आ जाता है। तो ये तो बहुत जरूरी बात है कि हम जितने भी बुजुर्ग हैं या उस स्थिति में पहुंच गए हैं तो उनका कम से कम इतना तो मूवमेंट होना चाहिए कि बैठे बैठे कुछ व्यायाम है या फिर उनको चलना है, जिसे वॉक करना कहते हैं हम, कि भाई सुबह शाम थोड़ा थोड़ा वॉक करें, तो वो जरूरी है जो उनकी उम्र के हिसाब से जो उनको सूट करते हैं, वो भी अपने वो डॉक्टर के परामर्श से पूछ सकते हैं उनसे कि उनको क्या क्या व्यायाम वो आराम से कर सकते हैं, जिसमें वो बैठ के भी कर सकते हैं, जिसमें वो चल के भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो हमारे घुटने होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, तो क्योंकि वो चलेंगे तो एक दूसरी बात हो जाती है कि इधर तो हम उनको चलने के लिए कहते हैं, इधर उनके घुटने दुखते हैं। तो कुछ इस तरह के व्यायाम होते हैं जो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें वो अपने जोड़ों को, जैसे साइकिल चलाना, तो उसमें क्या होता है कि घुटने के ऊपर वजन नहीं आता पर उनकी एक्सरसाइज हो रही है, कि मसल्स जो है वो ताकत पकड़ती है। या फिर कुछ इस तरह से व्यायाम होते हैं जैसे अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको बैठ करके सिखा सकते हैं, तो उनके परामर्श से भी वो बैठ करके अपने व्यायाम कर सकते हैं।
0: यहाँ घुटनों का जिक्र आया है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आर्थराइटिस अक्सर हम सुनते हैं, गठिया का रोग, ये कितनी तरह का होता है, आमतौर पर किस एज ग्रुप में होता है?
1: गठिया जो है बहुत कॉमनली हमारे देश में बहुत कॉमन है, और ज्यादा कॉमनली ये लेडीज में होता है, लड़कों में या मेल्स में बहुत कम मिलेगा। और इसकी जो उम्र है वो किसी की कोई फिक्स नहीं है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है और लेडीज में एल्डर स्टेजेस में भी काफी कॉमन है। तो इसका कॉमन सिम्टम्स रहते हैं वो होता है हमारे जोड़ों का दुखना, उनमें सूजन आना और उनके अंदर में जकड़न रहना, और खास तौर से वो भी जब सुबह सोकर के उठते हैं या आराम कर लेते हैं तो शरीर में सूजन आ जाना, सारे जोड़ों का दुखना। बट ये है कि अब इनको भी हम अपने डॉक्टर के परामर्श से और कुछ टेस्ट से इसका हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और इससे हम इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि भाई ये गठिया ही है या कुछ और तकलीफ तो नहीं है।
0: और ये दवाइयों से ठीक हो जाता है गठिया?
1: गठिया जो है वो दो तरीके से होती है, उसमें कुछ हम लोग सीरो पॉजिटिव बोलते हैं, यानी आपने खून का टेस्ट कराया और उसके अंदर में वो गठिया पॉजिटिव आ जाता है, और एक होता है सीरो नेगेटिव, जिसमें हम खून को टेस्ट करते हैं पर उसमें आपके लक्षण आपके शरीर में गठिया वाले होते हैं पर वो उसमें आपके खून में पॉजिटिव नहीं आता है। पर उन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि जिनको पॉजिटिव आता है उन लोगों को जिंदगी भर दवा खानी होती है, उसी तरीके से उन लोगों को ध्यान रखना होता है कि हम अपनी दवा टाइम से खाएं और अपने डॉक्टर से परामर्श करके खाएं और रेगुलरली खाते रहें तो उनका जीवन स्वस्थ रहता है। बट जो अपनी मर्जी से खाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है बीच में, क्योंकि इस तरह की बीमारियां जो होती हैं उन लोग परेशान हो जाते हैं कि हम दवा कब तक खाएंगे, तो उससे क्या होता है कि वो बीच में दवा छोड़ देते हैं, जब थोड़े दिन वो ठीक हो जाते हैं तो पर वो बीमारी फिर बढ़ के आती है।
0: घुटने से ही जुड़ा हुआ अगला मेरा प्रश्न है, नी रिप्लेसमेंट की कई बार जो है वो हालत हो जाती है पेशेंट्स की, तो अगर घुटने बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं पेशेंट, बहुत दर्द में है और या किसी चोट की वजह से, तो क्या नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र विकल्प है या ये स्थिति भी दवाइयों से और एक्सरसाइज से सुधर सकती है?
1: देखिए, जब हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम एक टर्म यूज करते हैं, जो बेसिकली जो यूज होता है वो वृद्धावस्था में जब हमारे घुटने घिस जाते हैं अंदर, हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ग्रीस खत्म हो जाती है इसे बोलते हैं लोग बोलते हैं।

0: तो उसमें क्या हड्डी के कोने निकल जाते हैं, दोनों के बीच में मेनिस्कस होता है, एक वॉशर होता है जो हम दोनों हड्डियों के बीच में घिसाव ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है, वो फट जाता है, तो उसकी वजह से उनको दर्द बढ़ने लगता है। अब वो इसके चार ग्रेड होते हैं, तो शुरू के जो ग्रेड्स होते हैं उनमें इतना आपको दर्द नहीं होता और छोटे मोटे आप इलाज कर लेते हैं तो उससे आपको आराम मिल जाता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और घिसाव बढ़ता चला जाता है तो वो दर्द नहीं जाता। तो सर्जिकल पार्ट या हम इसको नी रिप्लेसमेंट का पार्ट जब आता है, जब आपके सारे, जब मरीज को इतना दर्द हो कि वो किसी व्यायाम से, आपके आराम करने से, कुछ पेन की दवा खाने से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, तब हम उनको कहते हैं कि भाई आप रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं।
1: स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी जब होती है तो उसमें लिगामेंट टियर, हम अक्सर ये नाम सुनते हैं और बहुत लोग जो है वो बताते भी हैं, तो इसकी रिकवरी क्या दवाइयों से और खान पान से संभव है, या लिगामेंट अगर एक बार टियर हो चुके हैं तब उसके बाद जिंदगी भर वो दर्द जो है उसको सहना पड़ेगा पेशेंट को?
0: देखिए, लिगामेंट इंजरीज कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है, जिसमें हमारे आजकल तो आप सब देखते हैं कि स्पोर्ट्स काफी बढ़ गया है, हर बच्चा आजकल काफी ज्यादा एक्टिव है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स को ले लें, चाहे हमारा क्रिकेट है, चाहे हमारा फुटबॉल है, बैडमिंटन है, तो ये बहुत स्ट्रेनुअस स्पोर्ट्स हैं जिनमें आपको चोट लगने के संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, और जब एक बार इंजरी हो जाती है तो अब वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की इंजरी हुई, जिसको हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके खास तौर से MRI में क्लियर कर लेते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा उसके अंदर में लिगामेंट ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल टूट गया है तो उसको हम संभव नहीं कि हम उसको दवा से ठीक कर सकें या व्यायाम से ठीक कर सकें, तो उसके लिए तो हमको उसको ऑपरेट करके उसको नया बनाना पड़ता है या उसको जोड़ना पड़ता है। और अगर छोटी मोटी कोई इंजरी होती है जिसमें डॉक्टर ही अपने परामर्श से उसको देख के बता सकता है या गाइड कर सकता है कि उसको किस तरह की इंजरी है, तो हाँ, बहुत सारी छोटी मोटी चोट हम दवा से, कुछ व्यायाम से और कुछ आराम से उसको ठीक कर सकते हैं।
1: मैं जानना चाहूंगी, कुछ बच्चों को हमने देखा है जो जन्मजात ही थोड़ा टेढ़े होते हैं पांव उनके, और बच्चों को बहुत स्ट्रगल इस दौरान करना पड़ता है, सीधे खड़े नहीं हो पाते और आगे पूरा लाइफस्टाइल जो है वो उसी से जुड़ा होता है उनकी जिंदगी भी, ऐसा कैसे होता है कि कुछ बच्चे जो है पैदाइशी वो इस बीमारी के साथ आ रहे हैं, और कितने हमारे भारत में ऐसे चांसेस हैं कि ये ठीक हो जाता है?
0: इसमें दो बीमारियां आती हैं खासतौर से, एक तो होती है रिकेट्स, जिसमें हमारे माँ के पेट से ही कैल्शियम और विटामिन डी की कमी लेकर के बच्चा पैदा होता है, तो जब वो पैदा हो जाता है तब तक तो नहीं पता चलता, जैसे जैसे वो अपनी और उम्र लेता है तब वो उसके पैरों में गोलाई आनी शुरू होती है, पैर टेढ़े दिखने शुरू होते हैं, तब उसका उपचार भी बहुत आसान सी है, उसमें कुछ हमको उसके कुछ खून की जांच करनी होती है ये देखने के लिए कि उसको कितना विटामिन डी कमी है या उसका कैल्शियम कितना कम है, कुछ एक्सरेज हैं उनसे देख करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बीमारी रिकेट्स है, और इसको हम डॉक्टर के परामर्श से, इनके साथ में कुछ एक्सरसाइजेज हैं और कुछ अच्छी डाइट है और कैल्शियम विटामिन डी खाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं और इनको कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आती। दूसरी तकलीफ होती है जिसे हम क्लब फुट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारे पैर की जो हड्डियां होती हैं या जोड़ होते हैं वो माँ के पेट से ही इस तरह से बनावट होती है उनकी कि उनको हम बहुत अच्छे से जो ट्रीटमेंट करेंगे तो ही उसका आगे जिंदगी में आराम मिलता है, नहीं तो ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज उनको आने वाले स्टेजेस में शुरू के टाइम जब वो पैदा होते हैं तो उनको पैदाइशी 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसको प्लास्टर देना शुरू करते हैं, उसका जो कोर्स रहता है वो अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो वो प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं, नहीं तो उनको अलग अलग पड़ाव पे अपनी उम्र में कई सर्जरीज करनी होती है तो वो भी रिकवर कर जाते हैं।
1: यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि जब शरीर में विटामिन्स की कमी है, कैल्शियम नहीं है, तो हड्डी के रोग होना शुरू हो जाते हैं, इससे बचने के लिए कई बार सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, विटामिन डी सैशे हो या फिर कैल्शियम हो, क्या ऐसा भी होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा हमने इनटेक किया है तो ये भी नुकसान करता है?
0: इसमें कैल्शियम और विटामिन डी को हमको ऐसे देखना है कि जब तक विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं है या उसकी कमी है तो हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जो हम कोई भी कैल्शियम खाएंगे खाने में जा रहा है, चाहे वो हम उसको डाइट्री सप्लीमेंट यानी गोली के रूप में ले रहे हैं कैल्शियम को, तो जो हमारे पेट में जाएगा वो वहां से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जो हमारे खून में चला जाए, उसको हेल्प करता है विटामिन डी, और विटामिन डी जो है जब भी स्टार्ट करें अपने डॉक्टर के परामर्श से और उसको टेस्ट करवा करके कि उसकी कितनी वैल्यूज आती हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाएंगे तो उसके नुकसान आते हैं शरीर में, तो वो आपके डॉक्टर बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उसको कितने डोज में खाना है। और कैल्शियम जो है वो कैल्शियम के जो फॉर्मुलेशंस हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे बच्चों के लिए अलग है, जवान लोगों के लिए अलग है, वृद्धावस्था के लिए अलग रहता है, या मेनोपॉजल वुमेन है उनके लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस रहती हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, पर कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसी भी होती हैं जिनको अगर हम बिना उसके डॉक्टर के परामर्श से खाते हैं तो उसमें कभी कभार किडनी के स्टोन्स बन जाते हैं, तो इसलिए उन लोगों को जिनको पहले से किडनी स्टोन्स रहते हैं तो वो अपने डॉक्टर के परामर्श से वो सारी फॉर्मुलेशंस खरीदें या वो लें जिनसे किडनी स्टोन्स नहीं बनते, अगर वो बिना परामर्श के भी 2-4 महीने एक्स्ट्रा खाते रहते हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होता।
1: यहाँ मैं आपसे आहार के बारे में भी जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं जिन्हें हम अपने खाने में

0: शामिल करें तो कैल्शियम और विटामिन डी हमें मिलता रहेगा।
1: देखिए, कोई भी फ्रूट्स कहते हैं या सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, वो हमारे सब शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए खास तौर पे मैं किसी एक सब्जी का या फल का नाम नहीं लूंगा कि यही ज्यादा खाना चाहिए। सब सब्जियों को और सब फलों को अपनी डाइट में अच्छे से उनको इंक्लूड करना चाहिए। और फिर से मैं एक बार इस महत्व को डालूंगा कि इसमें प्रोटीन की बहुत जरूरत है, तो अपने प्रोटीन को भी अपने इस खान पान में बढ़ाएं।
0: कैल्शियम से स्टोन बन सकता है, ये हमने सुना है बहुत बार, इसलिए अक्सर ये भी सुना है कि सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम लेना चाहिए, रात में सोते समय नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कितना सही है।
1: देखिए, इसमें वो नहीं है कि आजकल, फिर मैं आपसे ये बात कहूंगा कि फॉर्मुलेशंस बहुत सारे आ गए हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खाने के साथ खा रहे हैं या कि खाने के बाद खा रहे हैं, पर हम ज्यादातर यही कहते हैं कि या तो दोपहर खाना खाने के बाद खाएं या रात के खाना खाने के बाद खाएं।
0: जी,
1: इससे नहीं फर्क पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या फॉर्मुलेशन खा रहे हैं। तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर आपके डॉक्टर बता पाएंगे कि आपको कौन सा आपके शरीर के लिए सूट करता है।
0: जैसा कि कार्यक्रम में आपने जिक्र किया कि अगर हम किसी घर की बात करें तो उसकी जो फाउंडेशंस होती हैं उनका सही होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही हमारा पूरा शरीर हमारे हड्डियों के ढांचे पर टिका है और ये ढांचा सही रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा। आज आपने हमें सही पोस्चर्स के बारे में बताया और साथ ही बहुत सारे ऐसे सवाल जो कई बार मन में होते हैं उनके जवाब हमें आपसे मिले। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत जरूरी बातें हमसे की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया प्रियंका बहन, ये तो जानकारी रही सामान्य हड्डी एवं जोड़ों के रोग, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, और उनसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी नीलम मलकानिया। और भाई, अब बात मनोरंजन की है, क्योंकि देखिए बातचीत हो गई तो अब मनोरंजन की बारी है, तो जगदीश नागर से सुन लेते हैं ये रागनी किस्सा रहेगा चंद्रहास का। और ये उस मौके की रागनी है जब चंद्रहास अल्प आयु में यानी कम आयु में युद्ध में मैदान में संघर्ष के लिए उतरता है और उसके बाद महलों में कदम रखता है। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: रिंका बहन, ये तो रागनी सुनी जगदीश नागर से, किस्सा चंद्र हास का। और जगदीश नागर की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम राम।
0: राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है समाचारों का, तो आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और

0: इसी जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: प्रियंका बहन, देखिए विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफी परिवर्तन आया।
1: बिल्कुल
0: अब वो समय नहीं रहा जब किसान भाई वही गिनी चुनी खाद्य फसलें लगाते थे। आजकल किसान भाई अदल बदल कर नई नई फसलें लगा रहे हैं और वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं, और साथ
1: बिल्कुल
0: ही देखे भाई अधिक लाभ कमाने के लिए फल आधारित बहुस्तरीय खेती भी किसान भाई कर रहे हैं। इस तकनीक में एक ही जमीन पर एक ही समय में अलग अलग ऊंचाई और गहराई वाले पौधों को एक साथ उगाया जाता है। इससे धूप, पानी और जमीन के पोषक तत्वों का 100% सही उपयोग होता है।
1: वही। इसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं, इस तकनीक को अपनाकर वर्ष भर उनकी आमदनी होती रहती है, क्योंकि जब अलग अलग तरीके की फसलें लगाई जाती हैं, उनके पकने का समय अलग अलग होता है, और इस तरीके से लगातार आमदनी बनी रहती है।
0: बिल्कुल। और इस देखिए इस जो बहुस्तरीय खेती को चार मॉडलों में यानी चार स्तरों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। शीर्ष स्तर पर बात करें बड़े फलदार पेड़, इसमें सबसे बड़े ऊंचे जो पेड़ जैसे आम, नारियल, कटहल, सफ़ेद मूसले आदि। और उसके बाद द्वितीय स्तर की बात करें तो ये बड़े पेड़ों की छाँव में आसानी से बढ़ सकते हैं। इसमें जैसे अमरूद, अनार, नींबू, पपीता, इस तरह के जो वृक्ष लगाए जा सकते हैं। तीसरे स्तर की बात करें तो इसमें झाड़ीदार जो पौधे हैं इनमें बहुत कम धूप, आंशिक छाया की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए केला, कॉफ़ी, करौंदा, अनानास। और भूस्तरीय यानी भूमिगत स्तर की अगर बात करें तो मसाले और कंद ये जमीन के स्तर पर या उसके नीचे उगते हैं और इन्हें सीधी धूप की जरूरत नहीं होती। इसके लिए जैसे अदरक है, हल्दी है, शकरकंद है, औषधीय पौधे हैं और हरी जो पत्तीदार सब्जियां हैं इस तरह की लगा सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि देखिए प्रियंका बहन, पपीता, केला और सब्जियां आपको पहले साल से ही कमाई देना शुरू कर देती हैं, जिससे आम और आंवला जैसे मुख्य फसलें 4-5 साल बाद बम्पर मुनाफा देती हैं। साथ ही
1: बिल्कुल
0: लागत में कमी, एक बार खाद, सिंचाई और जुताई करने से सभी फसलों को पोषण मिल जाता है। इससे पानी और मजदूरी का जो खर्च है वो 40% तक कम होता है।
1: बिल्कुल। इसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि लगातार जो मिट्टी का कटाव होता है वो कम होता है, और इसमें प्राकृतिक कीट का जो नियंत्रण होता है उसमें भी लाभ होता है, क्योंकि परागणकर्ता जो कीट होते हैं वो आकर्षित होते हैं, जिससे हमारी रासायनिक खाद का हमें उपयोग कम करना पड़ता है।
0: साथ ही देखिए भाई इसमें जोखिम से भी सुरक्षा रहती है, क्योंकि अगर देखिए किसी कारण से मौसम की मार अगर फसल एक खराब हो जाती है तो बाकी तीन फसलों में उसकी भरपाई हो जाती है। साथ ही खरपतवार नियंत्रण पर भी इसका फायदा है। देखिए जमीन पूरी तरह से पौधों से ढकी होने के कारण घास फूस यानी खरपतवार उगने का मौका कम मिलता है। लेकिन देखिए कुछ बातों का भाई इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो दूरी का ध्यान रखें, पेड़ों को इतनी दूरी पर लगाएं कि ट्रैक्टर या कृषि उपकरण बीच में आसानी से चल सकें।
1: बिल्कुल
0: दूसरा, टपक सिंचाई।
1: हाँ
0: प्रियंका बहन, इस तकनीक के लिए जो टपक सिंचाई है सबसे उत्तम है। इससे हर पौधे की जड़ तक सही मात्रा में पानी
1: पानी
0: जाता है,
1: जाता है। बिल्कुल
0: और साथ ही जैविक खाद का उपयोग फसलों के अवशेष, पत्ते आदि जमीन पर गिरकर ही सड़ते हैं, जो प्राकृतिक मल्चिंग और खाद्य का काम करते हैं।
1: बिल्कुल। तो
0: तो
1: इस मतलब ये है कि इस विधि का अगर हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं, तो छोटी कम जमीन पर भी वो इतनी अलग अलग फसलें ले सकते हैं, और साथ साथ पेड़ भी उनके बढ़ रहे हैं, तो उनसे भी फल मिल रहा है और फसल भी मिल रही है, तो लगातार उन्हें लाभ मिलता रहता है। और इसके साथ साथ जो कृषि जगत कार्यक्रम है, उसमें हम समय समय पर होने वाले कृषि कार्य और या कृषि आयोजनों के बारे में भी चर्चा करते रहते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए हमने अभी बातचीत की कि भाई देखिए किसानों को इससे आमदनी होगी, चार चार फसलें लगाएंगे। और देखिए सरकार किसानों के जो आमदनी बढ़ाने के लिए और विकास के लिए अनेक जो कार्य कर रही है, और सरकार के साथ साथ अनेक
1: बिल्कुल
0: सहकारी संस्थाएं भी इस तरफ कार्य कर रही हैं। ऐसी एक सरकारी संस्थान है इफको, किसानों की सहकारी संस्था है, जो किसानों के लिए खाद, उर्वरक, बीज आदि का निर्माण कर किसानों को वितरित करती रहती है। इफको की ही एक सह संस्था इफको एमसी है, जिसने किसानों की सेवा में सफल 11 वर्ष पूरे किए हैं।
1: और पिछले दिनों 1 सितंबर 2026 को इफ्को एमसी की 12वां स्थापना दिवस उन्होंने मनाया। इस अवसर पर इफ्को के अध्यक्ष श्री दिलीप संघवी ने अपने कार्यक्रम में

0: संबोधित किया तो उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं।
1: इक्को एमसी का 12वां फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं। इस संस्था का स्थापना दिन, फाउंडेशन दिन, सजीव का जन्मदिन। पुराने समय में मुझे याद है, तब तक व्यापारी कोई भी हो, वर्ष पूरा दिवाली के दिन होता था। दिवाली को चोपड़ा पूजन जो उनकी विधि होती थी, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, दूसरे दिन खुशियाल उनका हिसाब होता था पूरे साल का, जो भी कर्तव्य किया हो इनका लाभ पूरा, और दूसरे दिन जो भूल चुक हो तो भी इच अदर एक दूसरे को माफ करके स्नेह पूर्वक मिलते थे। वो दिन एक संस्कृति थी, यहाँ भारत और जापान की मिलीजुली संस्कृति से शुरू हुआ। अपने व्यापार को बढ़ाते हुए, नई प्रोडक्ट को लाते हुए, किसानों की बात करते हुए, किसानों के पास जाना, ये तो व्यवसाय किसानों के साथ है तो उनकी बात करेंगे। आजादी के समय से किसानों को प्रोत्साहन देने के गीत भी गाए जाते थे, किसान गाए जा प्यारे हल चलाए जा, एक दिन तेरा राज आएगा। देश की आजादी के 75 साल पूरा हुआ, आज किसानों की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, सुरक्षित, समृद्धि की बात करते हैं, उनकी समृद्धि दिखाई देती है क्या? जो किसान का बेटा पढ़ने के बाद कहीं बाहर चला गया खेती से और इनकम हुई, तो किसानों की समृद्धि नहीं है। जो किसानी से दूर रहते हैं वो मानते हैं वो किसान दोस्तों ये बीज बोते हैं कितना ज्यादा होता है। किसान की स्थिति जिस तरह से सरकार में भी गिनती नहीं होती, सिर्फ भाषण में होती है। अपनी सरकार का GDP का जब आंकड़ा बार बजट में आता है तो किसानी की आवक का, इनके इनकम का कोई सोर्स की सराहना नहीं होती। कोई उद्योगपति हो, कुछ और बाकी हो, उनका उल्लेख अच्छी तरह से होता है। इसी स्थिति में किसानों के प्रति सद्भावना के साथ सोचना चाहिए। आज हम 12वां फाउंडेशन दिन मना रहे हैं। मेरा मानना है जिसके साथ हम व्यवसाय कर रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि 12 साल में हमने कितने किसानों को कितनी सेवा की, किस तरह की सेवा की और कितने किसान अपलोड हम कर पाए। सही दिशा तो वही होती है कि हमने पिछले साल हमने क्या किया, इनका हिसाब किताब होना चाहिए। इसी दिशा से नया साल अगले दिन हम क्या करके आए जिसे किसान सुरक्षित हो। खास के नारे पे नहीं, किसानों के लिए नारा आज तक जितने हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो बनाए है, गाए है, बताए है, ये नारे से समृद्धि नहीं आती, नारे से सलामती नहीं आती, नारों से सुरक्षा नहीं आती। किसानों का खेत तो खुला है, कोई भी पशु वहां के उनको नुकसान कर सकता है, पूरी रात वो जाग नहीं सकते। इसी स्थिति में किसानों को स्पेशल उनकी योजना बना के मेरे ख्याल से उनको मदद करनी चाहिए। किसान समृद्ध क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्या इतनी योजनाओं, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं? बाहर से तो लगता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कमेटी प्रधानमंत्री की थी, इन्हें मैं भी था, मैं हर बार मुद्दा उठाता था, आप समृद्धि लाने के लिए क्या करेंगे? किसानों को उनकी खेती में जो चीज जरूरत है, जो संसाधन की जरूरत है, तो ट्रैक्टर के संसाधन होगा, क्रूड होगा, ऑयल होगा, वो जहां बाहर से आता है तो देश में तो डॉलर के प्राइस से आता है। किसान को हम जो प्राइस दे रहे हैं वो तो अपने रुपये में दे रहे हैं। जब तक वैश्विक करार के बाद पूरी दुनिया का व्यापारीकरण जिस तरह से हुआ है, इनके बाद उनकी प्राइस और हमारे किसानों की प्राइस, जब तक विश्व में डॉलर का प्राइस माना जाता है, किसानों की उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉलर की दृष्टि से जब तक उनको प्राइस नहीं मिलेगा, तब तक किसान कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा। इसी दिशा में नीति घड़नी चाहिए, क्योंकि विश्व के साथ लड़ाई है आज, और उनके लिए एक कोऑपरेटिव है जो समूह को इकट्ठा करके उनका उत्पादकता संग्रह कर सके। किसान का स्वास्थ्य, बुजुर्ग किसान की स्थिति क्या है, आप कभी सोचिए? उन पर सहानुभूति पूर्वक सोचना जरूरी है। किसान जैसे कोर्ट में 1 महीने की रजा चलेगी, स्कूल में 1 महीने की रजा चलेगी, उसकी सैलरी नहीं काटती। और यहाँ तो किसानों को समयबद्धता के साथ, जिस दिन बारिश आई दूसरे दिन बीज नहीं बोए है तो पूरी साल फेल, तर्क के साथ काम करना पड़ता है। आज कल ये काम कर पाएंगे ऐसा नहीं होता। इसी स्थिति में उनको न छुट्टी मिले, ऊपर आकाश नीचे धरती, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, लेकिन उनको तो आकाश के नीचे काम करना है। इसी स्थिति में जो देश में किसानों और किसानों के साथ जुड़े मजदूरों में महिला, युवा, महिलाओं के लिए बातें होती है, उनके उत्थान की बातें होती है, आज उनकी स्थिति भी बेहतर है उनके साथ जुड़े हुए। चंद लोगों को सर्विस मिली होगी, देश की पॉलिसी आर्थिक रीति काफी चेंज मांग रहा है। इसी दिशा में सबको मिलकर सोचना होगा। भारत में किसान का बेटा हो, गांव का बेटा हो, उनको विदेश स्टडी करने के लिए जाना है तो लोन लेंगे कि सोसाइटी के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट बैंक से, और विदेश पढ़ने जाएंगे तो उनको सब्सिडी

0: मिलेगी। एक देश में सही हेतु से बाहर जाना है पढ़ने के लिए और विदेश से जो सिटी की बैंक है वहां से लोन लेंगे तो उनको सब्सिडी मिलेगी, तो कोऑपरेटिव की स्थिति क्या होगी? गांव में तो कोऑपरेटिव बैंक है, ऐसे कई सवाल है लेकिन सार्वजनिक रूप से सब जानते हो फिर भी उठा नहीं सकते। यहाँ मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, इफको एमसी व्यापार किसानों के साथ कर रहे हैं लेकिन हमारा व्यापार, हमारा हेतु, हमारा लक्ष्य छेड़छेड़ संशोधन करके देश के हित में किसानों के मार्फत देश की जीडीपी और किसानों की सुविधा के साथ उनकी समृद्धि हो, इस दिशा में काम करने का था। मैं मानता हूँ हमारे फाउंडेशन के दिनों में जब हुआ तब क्या क्या लेक्चर हुआ था, क्या क्या विचार व्यक्त हुआ था, क्या हमारे बायोलॉज में क्या व्यवस्था थी, हमारे स्थापना के दिन जो व्यवस्था की क्या अपेक्षा उन्होंने रखी थी, उनको एक दफा स्टडी कर लेंगे तो अगले दिनों में हम सही दिशा में देश के उत्थान में हमारा सहयोग पूरा दे पाएंगे। मैं मानता हूँ ऐसी संस्था किसानों के हित में, देश के हित में काफी काम कर सकती है और इफको एमसी इसी दिशा में काम करने के लिए आगे आए। हमारा दायित्व जो है इनमें हम किसी के साथ प्यार, किसी के साथ द्वेष ऐसा है नहीं, सभी जगह पे समय पड़ता है लेकिन हमें पता नहीं समय के साथ छोड़ना पड़ता है। छोड़ने की बात आती है अपनी जगह, अपनी व्यवस्था, तब हमें लगता है हमें अन्याय हुआ, खुद अपनी जात को हम रोज छोड़ रहे हैं। किसी भी स्थिति में आप अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ेंगे तभी तो सब कुछ आगे बढ़ेंगे, वहीं बैठे रहेंगे तो वहीं पे रहेंगे, लेकिन अब हम कोशिश जरूर करेंगे कि सही दिशा में जिसका हक जो है इसका हक उनको मिलना चाहिए, इसी दिशा में ही चलना चाहिए। पूर्व कोई गलती हुई है या द्वेष या प्रेम से किसी के साथ ज्यादा या कम बांटने में जो समानता नहीं हुई होगी तो मैं जरूर ये देखूंगा और न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा।
1: अभी आप सुन रहे थे इफको एमसी के 12वें स्थापना दिवस पर इफको के अध्यक्ष श्री दलीप संघानी द्वारा दी गई जानकारी। और देखिए, बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण की वजह से जोत की जमीन अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसे में खेती के साथ, खेती से जुड़े दूसरे काम, चाहे वो मधुमक्खी पालन है, चाहे मछली पालन है, चाहे भाई पशुपालन है, वो भी किसानों के आमदनी का दूसरा साधन है। और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन की अगर बात करें तो मधुमक्खी पालन किसानों के आमदनी का अच्छा साधन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत किसानों, युवाओं और महिलाओं को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए भारी अनुदान और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
2: बिल्कुल, इसके साथ साथ मधुमक्खी बॉक्स आदि उपकरणों के लिए भारी सब्सिडी भी दी जाती है और इसके साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग से संबंधित अगर आप आगे कोई रोजगार करते हैं तो उसके लिए भी आपको पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है, जिससे कि आप अपने रोजगार के साथ साथ दूसरों को भी उससे जोड़ सकते हैं।
1: प्रियंका बहन, आपने देखे मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण की बात की, तो मधुमक्खी जो पालन शुरू करने से पहले वैज्ञानिक तरीकों को सीखने के लिए सरकार मुफ्त ट्रेनिंग देती है और इसकी अवधि 5 से 7 दिनों की जो प्रशिक्षण होता है और इसका खर्च ट्रेनिंग पूरी तरह मुफ्त होती है। कई सरकारी संस्थाओं द्वारा ट्रेनिंग के दौरान 250 रुपये तक का वजीफा भी दिया जाता है और ट्रेनिंग में जो वैज्ञानिक ढंग से बक्सों की देख रेख, रानी मधुमक्खी का संवर्धन, बीमारियों से बचाव और शहद निकालने के तरीके आदि मुख्य रूप से बताए जाते हैं। साथ ही यह ट्रेनिंग आपको नज़दीकी जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं या राज्य के उद्यान विभाग हैं उनसे आप जाकर वहाँ ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। और भाई, ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने के लिए देखिए, जो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जिला उद्यान कार्यालय में जाकर ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलने से लोन और सब्सिडी मिलना आसान हो जाता है।
2: बिल्कुल। और अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं उपदेश और कलाकार रहेंगे राकेश त्यागी।

0: अभी आप सुन रहे थे उपदेश, और कलाकार थे राकेश त्यागी।
1: और देखिए प्रियंका बहन, अगर मौसम की बात करें तो आने वाले समय में अधिकतम तापक्रम जो 33 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 27 से 25 डिग्री रहने की उम्मीद बताई जा रही है। और देखिए, सितंबर अक्टूबर का महीने में भारत में जो खरीफ फसलों की कटाई और रबी फसलों की बुआई की तैयारी का मुख्य कृषि कार्य किया जाता है, और सितंबर महीने के में देखिए साथ साथ मौसम जो मानसून विदा होने का भी समय होता है। खरीफ फसलों की देखभाल की अगर बात करें तो भाई जो अगेती जल्दी पकने वाली धान, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग और तिल जैसी फसलों की कटाई और मड़ाई का कार्य शुरू हो जाता है। और साथ ही देखिए भाई, देर से पकने वाली धान की फसल में इस समय जो गांधी बग यानी धान का बांका कीट और तना छेदक का प्रकोप हो जाता है, तो भाई सही कीटनाशक का छिड़काव करना अगर इस तरह का प्रकोप आपको दिखाई देता है। और साथ ही कपास की फसल में यदि जल भराव हो तो पानी निकालने का प्रबंधन अवश्य है। रबी फसलों की तैयारी की अगर बात करें सर्दियों के लिए, तो देखिए खेत की जुताई जो खरीफ फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहराई जुताई की जाती है ताकि मिट्टी को धूप लग सके और हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। साथ ही गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसे सर्दकालीन सब्जियों की पौध नर्सरी तैयार की जाती है। और सरसों, तोरिया, आलू, मटर और चने की बुआई के लिए अगर अगेती बुआई की बात करें तो भाई खेतों में खाद गोबर डालकर उन्हें तैयार किया जाता है।
0: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपको याद दिला दे कि कल शनिवार है, और शनिवार को 6:30 पर आपका पसंदीदा फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसमें कि हमारे श्रोता फ़ोन के माध्यम से अपनी पसंद को हम तक पहुंचाते हैं। तो 6:30 पर कार्यक्रम सुनना ना भूले। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं उपदेश, और कलाकार रहेंगे राजेंद्र जाटव।

0: प्रियंका बहन, ये तो उपदेश सुना राजेंद्र जाटव से। और भाई, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। इसके लिए हमारा पता है, कृषि एवं गृह एकांश द्वारा, केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली, 1100001।
1: के साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस भी है, feedback@nsh@gmail.com। इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
0: राम
1: राम राम।
0: राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजलों पर आधारित।

हिंदुस्तान की दो मुमताज आवाजें लता मंगेशकर और आशा भोसले, एक ही कॉइन की दो साइड्स कहने के बजाय उन्हें एक रिकॉर्ड के दो रुख के लिए गायकी के दो खूबसूरत मुमताज चेहरे। 80s में आशा जी ने दिल पड़ोसी है के नाम से एक एल्बम आर डी बर्मन की म्यूजिक डायरेक्शन में तैयार की थी। गजल पेश है

0: अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर आधारित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार अब समय हुआ है हमारे प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा, ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से भारत मंडपम में 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जन भागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं के सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स की आर्थिक ताकत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों में नवाचार की नई संभावनाएं बढ़ रही हैं।
1: ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना। इसलिए हमारी अध्यक्षता में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्किल्स और स्मार्ट ग्रिड्स जैसे क्षेत्रों में नए कोऑपरेशन नेटवर्क का गठन किया है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का ध्यान सदस्य देशों के बीच अधिक संतुलित व्यापार और सेवाओं पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस सहयोग का लाभ ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के रीढ़ माने जाने वाले किसानों, महिला उद्यमियों, युवा उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तक पहुंचे। श्री गोयल ने कहा कि सदस्य और साझेदार देशों के 2000 से अधिक कारोबारी नेताओं और प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है।
2: Merchandise exports from BRICS countries to the world.
3: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित विश्व के नेताओं की मेजबानी करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। एक रिपोर्ट।
4: शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों की बैठक से होगा, जिसका विषय है वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज होगा। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर दबाव से जटिलताएं और बढ़ रही हैं। इन परस्पर जुड़ी चुनौतियों के लिए समावेशी, व्यावहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सहयोग की आवश्यकता है। भारत की अध्यक्षता विभिन्न सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने के

0: साथ साथ मौजूदा तंत्रों की प्रभावशीलता को मजबूत करने का प्रयास करती है। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
1: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस ने लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, मेट्रो का इस्तेमाल करने, डायवर्जन वाले रास्तों और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आपातकालीन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को निकलने में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान 11 से 13 सितंबर तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि कल राष्ट्रपति भवन प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आ रहे सभी नेताओं, प्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना राष्ट्रीय राजधानी के लिए सम्मान और गर्व का विषय है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
1: शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं, जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण विषय से जुड़े हैं। ये आयोजन भाग लेने वाले नवोन्मेषकों को ब्रिक्स सदस्य देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, निवेशकों, व्यापारिक नेताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मेलजोल का अवसर प्रदान कर रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज बताया कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। ये फैसला परीक्षा देने वाले छात्रों और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने और समय पर पहुंचने के लिए लिया गया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखें। उत्तर रेलवे ने आज से रविवार तक रेलगाड़ियों के संचालन में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है। इनमें उपनगरीय कॉरिडोर और लंबी दूरी के रूट पर चलने वाली कई सेवाओं पर पड़ेगा। इन बदलावों में रेलगाड़ियों का रद्द होना, रूट बदलना, कम दूरी से शुरू होना, कम दूरी पर यात्रा खत्म होना, सेवाओं का नियमन, टर्मिनल बदलना और समय बदलना शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली, गाजियाबाद, पलवल, शकुरबस्ती और दिल्ली जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने वाली कई EMU और मेमू सेवाओं पर इन बदलावों का असर पड़ेगा। यात्री नवीनतम जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियमों में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज बताया कि सरकार इस महीने की 17 तारीख से 100 दिनों का सेवा इंक्यूबेशन चैलेंज शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें 100 बड़ी नागरिक केंद्रित समस्याओं के समाधान पर काम किया जाएगा।
3: इंक्यूबेशन पॉलिसी में 400 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स को ग्रूम करने के लिए दिए हैं। अगले आने वाले 4 साल में हम 1,000 स्टार्टअप्स को मेंटर करके दिल्ली में आप जैसे युवाओं के लिए 4 लाख नए रोजगार दिल्ली में खड़े कर सके।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। ABVP ने अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए ईशु मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोनों में खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माणों और मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली MPD और भवन उपनियमों के उल्लंघन के

0: खिलाफ अपनी प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि एमपीडी और भवन उपनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत और खतरनाक निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सभी जोनों में ये जांच अभियान चलाया जा रहा है। निगम ने बताया कि आज चलाए गए गहन जांच अभियान के अंतर्गत निगम द्वारा सभी 12 जोनों में 25 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं एमसीडी ने कल भी व्यापक कार्रवाई की थी, जिसके दौरान 41 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया और 61 अन्य संपत्तियों को मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली और भवन उपनियमों के उल्लंघन के कारण सील किया गया था। इस बीच दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जन भागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में इच्छुक गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और निवासी कल्याण संघ को जोड़ा जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर बच्चों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयोग को राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाली रसोइयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर कार्य योजना तय की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालयों में दुष्कर्म से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो जागरूकता अभियान को और व्यापक किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 से 14 वर्ष की बेटियों, विशेषकर वंचित वर्गों की बालिकाओं तक निःशुल्क HPV टीकाकरण की जानकारी और पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए साइबर अपराध जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और दुष्कर्म से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आयोग शिकायतों का समाधान देने के साथ महिलाओं तक सक्रिय रूप से पहुंचे और नारी सशक्तिकरण के मिशन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने वाली मजबूत व्यवस्था बने। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली पुलिस ने आज अवैध शराब तस्करी मामले में खजूरीखास क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 1050 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाले 1 चार पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज बारिश होने के से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा, ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से भारत मंडपम में 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जन भागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम गीत मालिका का। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आरजे रैना तवर का प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारे गीत बहार, जो कि आपके दिल को कर देंगे खुश और आप घर बैठे बैठे सोचेंगे कि वाह क्या गीत हैं। वो ऐसे गीत जो आपके दिलों को, आपकी ज़िंदगी के तारों को एक साथ जोड़ देते हैं। वैसे संगीत एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपके तारों को, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी रहती है, हर सिचुएशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो, लेकिन हमारी ये जो गीत है ना, वो हमें हर स्थिति को, हमारे हर सिचुएशन को, हमारी हर जगह को याद दिला देते हैं। चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, या कोई भी स्थिति हो, गम हो, खुशियाँ हो, या कोई त्योहार हो, हर सिचुएशन में बने ये गीत हमारे जीवन को जोड़ देते हैं। क्यों, सही कहा ना? और कहते हैं अक्सर कि हम हमेशा दोस्तों से कोशिश करते हैं कि मिलें, बातचीत करें, लेकिन कर नहीं पाते, समय ही नहीं है हमारे पास, किसी के पास। आजकल इतने भागदौड़ वाली ज़िंदगी है कि हम उस समय से भाग रहे हैं, अपनों से भाग रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि समय निकालना पड़ता है, तो निकालिए और मिलने की कोशिश कीजिए जिनसे आप मिलना चाहते हैं, कुछ इस तरह।

जी हाँ, वादे टूट जाते हैं, इसलिए वादे करने से पहले आप सोचिएगा कि वादा पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी हमने सुना खूबसूरत सा नगमा आशा भोसले जी और कुमार सानू की आवाज का। खैर, आवाजें खूबसूरत हैं और गाने दिल तक छू जाते हैं, है ना। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतनी अच्छे अच्छे खूबसूरत चीजों की, तो अब अगला गाना हम सुनेंगे, अगला जो है लता मंगेशकर और उदित नारायण का। कभी कभी हम किसी को बुलाते हैं और नहीं आ पाते, लेकिन आ जाएंगे जी, आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने अपनों को बुलाओ, देखना आवाज दोगे तो वो लौट कर वापस जरूर आएंगे। और कुछ ऐसे हैं जो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें पुकारें, वो शायद इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि आप उन्हें बुलाएं और वो आपकी आवाज सुनते ही दौड़े चले आएं, कुछ इस तरह।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गीत मालिका आरजे जैना तवर के साथ, और हम बात कर रहे हैं जिंदगी हो या कुछ भी हो, लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो उतार चढ़ाव आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे ज़िंदगी में ऐसी यादें बन जाती हैं जो हमें दिल करता है कि काश काश वो पल वापस दोबारा आ जाए, है ना। और वो पल जब वापस नहीं आते तो दुख भी होता है, लेकिन वो यादें इतनी खूबसूरत होती हैं कि हमें लगता है कि ये यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहें, और कुछ ऐसा काम करें कि वो याद सिर्फ आपके दिलों में ना रहे बल्कि दूसरों के दिलों में रहे, आपको याद करें, वो आपके कर्मा से, आपने जो कर्म किए उनके लिए अच्छा किया तो वो याद करें आपसे कि यार वो थे इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाया। तो कोशिश कीजिएगा कि दूसरों की ज़िंदगी को खुशनुमा बना पाए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम कौन होते हैं, लेकिन हम खुशियाँ तो बांट सकते हैं, है ना। तो ऐसी खुशियाँ बांटें जो एक यादें बन जाए, हम रहें या ना रहें, पर वो यादें सबके दिलों में बस जाए, कुछ इस तरह।

शिकवे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

यस जीवन में ना बहुत सी चीज़ें हैं जो यादें बन जाती हैं, और इन यादों के साथ ही कई लोग तो ना अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। कोई अपने अब हमसे इतने दूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो यादें हैं, वो हमेशा बनी रहती हैं। और आजकल की जो जनरेशन है, यानी कि हम इतने भाग दौड़ में चले गए हैं और अपने समय को अपनों के साथ नहीं बिताते, बहुत दुख की बात है। मैं अपने श्रोताओं को यही कहूंगी कि कुछ बच्चे हैं जो विदेश चले गए अपने माँ बाप से दूर, चाहे वो पढ़ने गए हैं या नौकरी करने गए हैं। माँ बाप ने हमारा इतना अच्छा पालन पोषण किया कि आज हम इस योग्य बने कि हम इतने अच्छे ओहदे पर बैठ कर काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने हमें इस कदमों को चलना सिखाया, जिन्होंने हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया, हम उन्हीं को भूलते चले जा रहे हैं। मैं उनसे यही कहूंगी कि बाहर आप कहीं भी जाएं, आजकल इतनी सुविधाएं हैं

कि आप अपने अपनों से जुड़ सकते हैं, कितने भी बिजी रहें लेकिन शाम को एक वक्त निकालें अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बुजुर्गों माँ बाप के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी आप पर न्यौछावर कर दी, तो उनके लिए थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि वो आपकी छोटी सी चिट्ठी, छोटे से संदेश, छोटी सी बात के लिए तरसते हैं, मिलने के लिए तरसते हैं। तो कितना दुख है ना कि हम ये नहीं कर पाते। छोटा सा काम है, क्यों ना कर पाए, कर सकते हैं तो कीजिएगा। दूर हैं, कहीं भी हैं, लेकिन अपने माँ बाप से कभी दूर ना बनाएं, दूरी ना बनाएं, उनसे प्रेम रखें। और प्रेम क्या, उन्हें सिर्फ एक छोटी सी आस चाहिए कि आप उनसे मिलें। नहीं मिल सकते कैसे, वीडियो कॉल करके भी मिल सकते हैं, तो उनसे मिलिए, चाहे चिट्ठी भेजें, चाहे संदेश भेजें, उनसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। उनके कर्ज को कभी ना भूलें। कुछ ये मीठी से गीत के साथ मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ।

जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि कहीं भी हो, आस हो, पास हो, दूर हो, दराज हो, मगर अपनों के साथ रहो, कैसे भी जुड़ो लेकिन जुड़ जाओ। और हम बात कर रहे हैं आपकी गीत मालिका के कार्यक्रम में, बहुत सी ढेर सारी खुशियों और गम की बातें तो नहीं करेंगे, खुशियों की बातें करेंगे। तो हाँ जी, हम जीवन बहुत प्यारा सा है, खूबसूरत सा है, छोटा सा है, गम सभी के पास आते हैं। और देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप हमें नहीं समझ रहे, और माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे हमें नहीं समझ रहे, लेकिन दोनों का तालमेल समझना बेहद ज़रूरी है। ये जो रिश्ता है, ये ऊपर से विधाता ने बना के भेजा है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं। जी हाँ, दोस्ती का वो ऐसा रिश्ता होता है जो इतना खूबसूरत होता है कि हम उसमें नोक झोंक भी करते हैं, प्यार से भी बोलते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और बुरा भी मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, एक दूसरे की हर चीज को समझते हैं। एक अजीब सा रिश्ता है ना ये दोस्ती। तो ये दोस्ती इतनी खूबसूरत होती है कि हम उससे कुछ भी, अपने मन की सारी बात कह पाते हैं, चाहे हम अपने माँ बाप से ना कह पाए लेकिन अपने दोस्त से कह पाएंगे। एक दोस्त ऐसे बनाएं जिन्हें, जो आपको सही सलाह दें, सही राह पर लेकर जाएं, और आपको हमेशा गलत पर गलती का एहसास भी दिलाएं। देखिए, ऐसा ना हो कि हमेशा हम ऐसे ही दोस्त बनाएं कि जो आपको सिर्फ अच्छा अच्छा बोले। और आजकल की दुनिया भी ऐसी है कि हमें लगता है कि अरे यही अच्छा दोस्त है जो मेरी सारी बातें अच्छा ही बोल रहा है मेरा। लेकिन याद रखिएगा, दोस्त वही होता है जो आपके गमियों, आपके कमियों को आपके सामने रखे। क्योंकि हर कोई इस दुनिया में दूसरों की तारीफ ही करता है, लेकिन अगर कोई कमी आपको बता रहा है, कोई आपको ढूंढ कर बता रहा है कि यहाँ पर तुम गलत हो या इस चीज को तुम्हें सुधारना है, तो उसकी बात को बिल्कुल भी गलत ना समझें, उसको दिल पर ना लें, बल्कि उसकी बात को समझें कि शायद वो मेरा अपना है, तभी वो मुझे ये सलाह दे रहा है। क्योंकि आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपके लिए, आपके अच्छे के लिए आपको कुछ बोले। तो दोस्ती खूबसूरत है, अच्छी है, बना कर रखें, सजो कर रखें। और जो आपके आसपास हैं, जरूरी नहीं कि सभी अच्छे दोस्त हैं, आपको अपनी आंखें खोल कर, कान खोल कर, दिल को खोल कर रखना होगा, और सही समय पर सही चीजों को उठाना, समझना होगा, रिश्तों को आगे बढ़ाना होगा। कुछ इस तरह।

जी हाँ, दोस्ती का मौसम ये तो हमेशा ही बना रहेगा। दोस्ती का मौसम रहता ही है। देखिए, हमेशा ना हमें लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने आप से बातें करनी होती है। कई बार हम होते हैं, हमें लगता है कि हम अपने आप से क्यों बातें करें भाई। अरे, बातें करनी चाहिए। अपने आप से जब बातें करोगे ना, तो बहुत सारे समाधान हैं जो आपको मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन सच बताओ, कभी कभी ना आँखें बंद कीजिए और अपने सवालों के जो जवाब है ना, आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि देखिए, अगर कोई आपसे अपनी बात मन की बात करता है ना, और शेयर करता है, और आपको लगता है कि वो आपसे बातें शेयर कर रहा है, तो ये जानिएगा कि जब इंसान अपने गम को शेयर करता है ना किसी के साथ, तो वो इसलिए तभी करता है तब वो आप पर थोड़ा सा नहीं, बहुत भरोसा होता है। कहते हैं ना, हमारे आंखों के आंसू जो है ना, सिर्फ ईश्वर के सामने बहते हैं, लेकिन अगर आपके सामने बह रहे हैं, यानी किसी और के सामने हम किसी के आंसू बह रहे हैं, तो समझ लीजिएगा भगवान के बाद दूसरा जो दर्जा दिया गया है, वो आपको दिया गया है। तो उसकी उसकी बात को ध्यान से सुनिए, उसे समझिए, और उसकी खिल्ली कभी मत उड़ाइएगा। और सुनते हैं प्यारा सा ये अगला नगमा।

जी हाँ, कब ऐसा रिश्ता बनाए ना कि ऐसा लगे कि तेरे बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है ना। ऐसा करेंगे तो मुझे भी मुझे ना ऐसा लगता है कई बार कि लाइफ ना बहुत छोटी है। हमें लगता है कि अरे हम ये कर लेते वो कर लेते, हमेशा सोचते रह जाते हैं। सोचिए नहीं, बस कर दिखाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि हम अगर सोचेंगे और फिर हम सोचेंगे अरे यार ये तो मैं कर लेती, उस समय ऐसा हो जाता, तो आप सोचते ही रह जाओगे अपनी जिंदगी में ना। हमेशा ये एक एक ना बचपना हमेशा रखेगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, उसको एक उत्साह होता है कुछ भी करने का। उसको लगता है कि यार ये मैं करता हूँ, ये करके देखती हूँ कैसा होता है। बचपन में ऐसा ही होता था ना। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम ऐसा क्यों सोचने लग जाते हैं कि अरे मैं करूंगी या नहीं करूंगी, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपकी सोच अपने ऊपर एकदम विश्वास वाली होनी चाहिए। और दूसरा क्या सोचता है ये सोचना बंद कर दीजिए। कल हो ना हो किसको पता, है ना। तो आप अपने जीवन को सिर्फ ऐसा सोचें, देखिए जीवन सबका बहुत खूबसूरत है और उस खूबसूरत बनाने में सिर्फ आपका अपना योगदान होना बेहद जरूरी है। दूसरा आकर आपको नहीं बताएगा कि आप में ये टैलेंट है। आपका अपना टैलेंट आपको खुद को पता होता है। बस आंखें बंद कीजिए और पहचानिए कि आपके अंदर क्या कला छिपी है। उसको बाहर लेकर आइए, चाहे वो हंसाने की हो, बात करने की हो, किसी को खुशी देने की हो। क्योंकि किसी से हम कुछ नहीं कर सकते, तो किसी को खुशी बातों से तो दे सकते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। वो करिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी कीजिए, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पता नहीं कल हम हो या ना हो।

और अब मुझे यानी कि राना तबर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, और फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, और इस खूबसूरत नगमे के साथ मैं छोड़े चली जा रही हूँ आपको अगले कार्यक्रम में। फिर मिलेंगे बहुत सारी ढेर सारी बातों के साथ। सुनते रहिए अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल, बिकॉज मैं हर आवाज़, मैं क्या, हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका। ये AIR लाइव न्यूज 24x7 है और अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी

0: द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships.

0: Tips. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
3: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जो आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को

0: आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General.

0: दिल्ली के भारत मंडपम में दोतरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, माशी, दिफाई, तवानाई, खलाई, हुनरमंदी, मोबिलिटी और अवाम से अवाम के बीच राबतों के शोबों में दोतरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के दौरान भारत और रूस के दरमियान खसूसी और मराआत याफ्ता स्ट्रेटजिक साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ अमल रहने से इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात को फिर दोहराया कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता है और भारत अमन की कोशिशों में तआवुन के लिए हर तरह से तैयार है। इस दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म को 24वें भारत रूस सालाना छोटी मीटिंग के लिए रूस दौरे की दावत दी, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया। सरबराह मीटिंग की तारीखें बाहमी रजामंदी से तय होंगी। जनाब मोदी ने मीटिंग के दौरान जनाब पुतिन को कदीम तमिल क्लासिकी शायर और फलसफी तिरुवल्लुवर की तसनीफ करदा किताब थिरुकुलर का रूसी तर्जमा तोहफे में पेश किया। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पुराने मौक़िफ़ को दोहराया है कि तमाम मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के मौके पर ईरान के सदर मसूद पजिशकियान के साथ दो तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालिया वाकयात पर अपने ख्याल का तबादला किया। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम, बहरी आमद व रफ्त का तहफ्फुज़ और जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने की मुस्तकिल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात के बावजूद ब्रिक्स से मुतालिक आला सतही मीटिंग में शिरकत के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के मौके पर अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ दो तरफा मीटिंग भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक आलमी जिद्दत तराजी और हल के अहम मराकिस के तौर पर उभर रहे हैं। ब्रिक्स कारोबारी फोरम के दौरान आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की इक्तिसादी कुव्वत बाकी दुनिया की कुव्वत से दुगनी रफ्तार से बढ़ी है।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
0: वज़ीर आज़म ने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड की बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी तिजारत तभी मुमकिन हो सकती है जब समंदरी रास्ते महफूज हों, समंदरी रास्ते खुले हों और जहाजरानों का तहफ्फुज़ हो सके।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की आबादी में आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं और इसीलिए इन ममालिक में बड़े पैमाने पर दरख्शां और मुतहर्रिक घरेलू बाजार दस्तियाब हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कहा कि आलमी खित्ते जनूब को मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और कदर की तख्लीक की क्यादत करनी होगी। जनाब रामाफोसा ने एकतरफा पाबंदियों पर तशवीश का भी इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पजिशकियान ने मशवरा दिया कि रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत के लिए कौमी करेंसियों का इस्तेमाल अहम इकदामात में से एक होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम करेंसी जोखिम के इंतजाम और बाहमी तस्वीर के लिए जरूरी निजाम के कयाम के साथ उठाया जाना चाहिए। ब्राजील के वजीर खारजा मौरो वेरा ने कहा है कि अपनी हालिया तोसी के साथ ही ब्रिक्स ने खुद को दुनिया की दरख्शां और खुशहाल मईशतों को यकजा करने वाले प्लेटफार्म के तौर पर पेश किया है। इस दौरान कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने अपने खिताब में कहा कि ब्रिक्स की भारतीय सदारत के तहत ये फोरम पूरे ब्लाक के रुकन ममालिक के दरमियान मुतवाजन तिजारत और तजारती इम्कान की तलाश के हसूल की खातिर वाज मकसद से तहरीक पा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं बशमूल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनफिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेदिशकियान और अबू जहबी के वलीहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मेजबानी करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 का मौजू है मजबूत इख्तरा तआवुन और पायदार तरक्की का क्याम। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए नई दिल्ली सभी की तवज्जो का मरकज है क्योंकि कौमी राजधानी आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए तैयार है। इस दौरान कल होने वाली सरबराह मीटिंग के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमा शमूलियाती आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। ब्रिक्स रुकन ममालिक भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स नुमाइश का भी मुशाहिदा करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमा मुश्तरका तौर पर शजरकारी करेंगे जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उनके इशाइये की मेजबानी करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के तनाजुर में ब्रिक्स रहनुमाओं के साथ सिलसिलेवार दो तरफा मुलाकातें करेंगे। ब्रिक्स की भारतीय सदारत के तहत भारत मुख्तलिफ अराकीन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगा, साथ ही मौजूदा मैकेनिज्म की असर पजीरी को भी मुस्तहकम बनाने की कोशिश करेगा। वहीं भारत का मकसद ब्रिक्स को ज्यादा शमूलियाती आलमी ऑर्डर तरतीब देने में तामीरी कुव्वत बनाना भी है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पेश नजर कल कौमी राजधानी दिल्ली की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की पाबंदियां, रास्तों की तब्दीली और आमदो रफ्त को मुनज्जम करने के इकदाम किए जाएंगे। ये पाबंदियां रात 8:15 से 11:00 तक बरकरार रहेंगी। इस दौरान इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, जनपथ, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, मथुरा रोड और प्रगति मैदान समेत करीबी रास्तों पर ट्रैफिक के खसूसी जवाबित नाफिज होंगे। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि अपने सफर की पेशगी मनसूबाबंदी कर लें, जहां मुमकिन हो मेट्रो का इस्तेमाल करें और मुतल्लिका इलाकों से गुजरते या वहां जाते वक्त घर से इजाफी वक्त लेकर निकलें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम ने ब्रिक्स को आलमी इश्तराक और खित्ते जनूब की मजबूत आवाज के प्लेटफार्म के तौर पर तकवियत देने की खातिर ब्रिक्स को मजबूत करने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन की सताइश की है। एसोचैम के सदर निर्मल के मिंडा ने कहा कि ब्रिक्स इश्तराक को ठोस कारोबारी नतायज में तब्दील करने का वज़ीर-ए-आज़म का विजन बेहद अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मईशतों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और कारोबारी शराकतदारी को वसत देने से बेपनाह मौके खुल सकते हैं और शमूलियाती और पायदार तरक्की के नए इम्कान पैदा हो सकते हैं। यूरोपीय कमीशन ने आज भारत के साथ आजाद तजारती माहदे एफटीए पर दस्तखत करने और इसे नाफिज करने के लिए यूरोपीय काउंसिल के सामने एक बाजाबता तजवीज पेश की है। इस माहदे को मदर्स ऑफ ऑल डील्स यानी अब तक का सबसे बड़ा तजारती माहदा बताया जा रहा है। यूरोपीय काउंसिल की मंजूरी मिलने के बाद यह भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तजारती माहदा होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने रवां साल जनवरी में एफटीए को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया था। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक माहदे के नाफिज होने के बाद बाजारों तक रसाई आसान होगी, महसूलात में कमी आएगी और गैर जरूरी तिजारती रुकावटें दूर हो जाएंगी। इससे भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के लिए वाज़ह और काबिल एतमाद जवाबी दस्तियाब होंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को बड़े पैमाने पर तकनीकी जिद्दत तराजी को अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी वाजह किया कि इसके लिए इंसानी जिम्मेदारी, तहफ्फुज और अवामी एतमाद पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026 से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि भारत की नौजवान नस्ल मौके का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि खुद प्लेटफार्म, कारोबारी इदारे और नए हल तख्लीक कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में आबादी के तनासुब से हासिल होने वाला माशी फायदा मुल्क के तेजी से तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी और फिनटेक इकोनिज़ाम में नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दादरा और नगर हवेली को मिनी इंडिया करार देते हुए मरकजी खित्ते के समाजी तनवो सकाफती विरसे और हमाहंगी के जज्बे की सताइश की। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के अपने पहले दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकजी खित्ता इस बात की एक शानदार मिसाल है कि किस तरह जिद्दत तराजी पर मबनी हुक्मरानी और अवामी शिरकत तरक्की में तब्दील हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोग खित्ते की तरक्की में तआवुन कर रहे हैं और मिलजुल कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने बहिरे अहमर के दहाने पर वाक़े आबनाए बाबुल मंदब में मौजूद कलीदी एतबार से अहम जजीरे मायून पर कब्जा कर लिया है। इसकी तस्दीक यमन की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय

0: बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबाओ सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसके अंतर्गत आपने आज सुने कुछ भोजपुरी गीत। कलाकार रहे देवेंद्र कुमार गुप्ता। आप सुन रहे हैं AIR न्यूज 24/7 पर हमारा प्रसारण। श्रोताओं, आइए कार्यक्रमों को आगे ले चलते हैं। इस क्रम में अब सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, और कार्यक्रम है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत राग रंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनते हैं पंडित मधु मुदगल का गायन राग भोपाली।

श्रोताओं, अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी राग रंजन के अंतर्गत सुन रहे थे पंडित मधु मुद्गल का गायन राग भोपाली। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण।

0: श्रोताओं, आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड

0: करीब 4.5 गुना हुई, यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: doing everything from grassroots initiatives to frontier technologies are taking shape within the BRICS countries.
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
0: Addressing the forum, Russian President Vladimir Putin said, over the last 5 years, more than 40% of the world's GDP has been produced by the BRICS countries. He said BRICS countries account for more than half of the world's population, and that is why they have a great dynamic, vibrant domestic market. Iranian President Masoud Pezeshkian suggested that one of the most important steps is to expand the use of national currencies in trade among the members. He said, This step must be accompanied by the establishment of the necessary instruments for managing currency risks and reciprocal settlements. The stage is all set for the 18th BRICS summit to be held at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. During the summit, Prime Minister Narendra Modi will play host to world leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iranian President Masoud Pezeshkian and Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim arrived in New Delhi to attend the BRICS summit. Deputy Prime Minister of Russia, Alexei Overshuk, President of Egypt, Abdel Fattah Sisi, and Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali are among several dignitaries who have arrived for the summit. And in the Junior Asia Cup hockey, Indian junior men's team defeated Malaysia 3-1 in the first semi-final today to book a place in the final at Mochi in China. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण और स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 11:10 और ये लीजिए पूरे हुए 10 सेकंड और समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का यानी कि आपकी फरमाइश का और आज ये कार्यक्रम लेकर आप सभी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वंदना। तो मेरे साथ आज मेरा साथ निभाने के लिए स्टूडियो में चली आई हैं आपकी एक और परिचय जी हाँ मैं हूँ रैना तंवर आपके साथ। और रैना आज की अगर हम बात करें ना तो भाई एक शय जिसे सबने अपनी उंगलियों पर नचाया वो है इश्क
3: yes.
2: है ना और वो कहते भी है ना कि ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ऐसे ही इस सफर में हम आज निकलेंगे और लेकर चलेंगे आपको सुरीले सफर से होते हुए कुछ ऐसे ही प्यार की डगर पर जो कुछ कच्ची है कुछ पक्की है कुछ कहें अगर दुखों या परेशानियों से गिली है तो कहीं उम्मीद से उजली भी है।
3: क्यों बंधु कई बार होता है ना कि हमें कुछ कहना होता है लेकिन हम कह नहीं पाते
2: बिल्कुल
3: है ना लेकिन किसी को देख कर ना एहसास जाग जाते हैं
2: जाग जाते हैं। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप भी आपके एहसास इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या रहेंगे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गाने के पीछे की कहानी भी अगर आप हमें लिख कर भेजेंगे तो ये आपकी इनायत आपका कर्म होगा। और आइए आप सभी श्रोताओं को हम शामिल करते हुए जो कहते हैं ना कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस खूबसूरत से गीत
3: हम बता तो दें वंदना जी हम बताते हैं पहले लोग अपने श्रोताओं को कुछ जो नए हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं उन्हें भी हम बता दें कि आप हमें अपनी फरमाइश लिख कर भेज सकते हैं। वो कैसे वो हमारे ईमेल आईडी पे हमारा ईमेल आईडी है ip@gmail.com। तो जल्दी से अपनी फरमाइशें हमें यहाँ भेजिए और अपने मैसेज हमें भेजिए ताकि हम इस मैसेज को आपके यहाँ अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें इस मीठे से गीत के साथ।

0: तुम आ गए हो, नूर आ गया है। ये गीत जो
1: हम्म,
0: है डेडिकेट किया मैंने सबसे पहले तो अपने प्यारे से लिसनर्स को, और साथ ही आज चूंकि हमारे साथ रहना भी बैठी है तो
1: मेरे नूर देख करना
0: तुम्हारा नूर देख के मैंने कहा ये गाना तो तुम डिजर्व करती हो।
1: बहुत बहुत
0: अच्छा हम
1: शुक्रिया।
0: बात करें, अगर जैसा कि रहना हमने बोला इश्क के सफर की, तो जो पुराना एक दौर था, एक ठहरा हुआ दौर था, बेशक कहते ना कि लोग आज के लोग कहते हैं बड़ी धीमी गति का दौर था, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उस दौर में बहुत सच्चाई और बहुत सुकून था।
1: बिल्कुल। और पता है अभी के दौर में जो है हम भाग रहे हैं, और हमारे इश्क की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो पुराने समय की बात करें ना, तो वहां पे इश्क भी बड़ा प्यारा सा, जो आंखों ही आंखों में बयां हो जाता था, हम
0: एक एहसास
1: एहसास
0: था।
1: के साथ था। और वो इश्क ऐसा होता था कि वो कभी भूले ना भुलाए, वो ऐसा इश्क था उसको, चाहे वो किसी भी तरह का इश्क हो, किसी से भी इश्क हो। लेकिन वो कहते ना कि वो मर्म और दर्द, वो हर चीज उसमें इतनी खूबसूरती से पिरोई जाती थी, और गानों के जरिए जो पिरोई जाती है ना, उसकी तो बात ही अलग है।
0: या फिर यूं भी कह सकते हैं कि वो एक समय था जब ढलती हुई शाम में, जैसे कि हम कहें कि नौका में है और हाथ में
1: किसी का थाम
0: पतवार
1: लिया है।
0: है।

0: और साथ में बिल्कुल, और आज का इश्क यूं कहेंगे कि सुपर एक्सप्रेस रेल हो गई, और अब उससे भी आगे की
1: आगे के
0: कवायद
1: हो
0: में लोग
1: बिल्कुल,
0: जो
1: और
0: है
1: कब बह
0: बिल्कुल
1: जाए कब ढह जाए ये भी नहीं पता।
0: बिल्कुल। अब बहुत सारे संदेशे भी इसी बीच रहना हमारे साथ आ रहे हैं। रश्मि पांड्या इस समय हमें, देखो हमने बात की रेल की, तो रश्मि भी कह रही है कि वो जो ट्रेन यात्रा में है, और लिखती है, ओ वंदना
1: हाँ
0: सखी दोनों का मस्त गुलाब से स्वागत करती हूँ, आप दोनों को इस समय ट्रेन के सफर में सुन रही हूँ, वाराणसी से अयोध्या जा रही हूँ। भाई क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है, हमारी
1: है,
0: तरफ से भी दंडवत
1: बहुत
0: कर
1: बहुत
0: देना, है ना।
1: शुक्रिया।
0: रश्मि झरना राजकोट गुजरात से, और कह रही है काफी मजे जो है मैं इस कार्यक्रम के दौरान ले रही हूँ। और इसी बीच हमारे परिचित साथी हैं, और है ना सतीश अनेजा जी, जो जैसे ही हम प्रोग्राम शुरू करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़
1: जुड़
0: जाते हैं, और
1: जाते
0: हम
1: हैं
0: दोनों
1: हम,
0: को वो भी नमस्कार कहते हुए हमारा अभिनंदन कर रहे हैं। तो आपका भी बहुत
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: स्वागत।
0: स्वागत, और अगर मैं कहूँ स्वागत की बात तो बहुत सारे और बेशुमार संदेशे आए हैं।
1: और इससे कितना अच्छा लगता है ना वंदना, जब हमारे पास आप संदेश भेजते हैं ना श्रोताओं, तो सच में दिल खुश हो जाता है और हमें लगता है कि हम और बेहतर प्रोग्राम करें आपके लिए, और आप हमें इसी तरह से प्यारे से संदेश हमें भेजते रहें।
0: कहना तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन विराम लगाएंगे,
1: लेकिन
0: और चूंकि संगीतमय यात्रा है, तो आइए अब हम नहीं कहते, ये गीत कुछ कहता है।
1: जी
2: मुझे कुछ कहना
1: मुझे भी कुछ कहना है,
2: है, मुझे कुछ कहना
1: मुझे भी कुछ कहना है,
2: है, पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम, तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कैसी हूँ,

0: भाई हमारे लिसनर तो रहे ना इसी बीच बहुत कुछ कह रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम्हें क्या कहना है।
1: मुझे बहुत कुछ कहना है कि रिश्ते ना बड़े नाजुक होते हैं। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ होता है, कुछ नोकझोंक होती है, कुछ प्यार होता है, कुछ कहा सुनी होती है, लेकिन आखिर में आते हैं हम अपनों के पास ही हैं, उस रिश्ते के पास ही हैं, क्योंकि वो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं। तो कभी भी कोई बात बिगड़ जाए ना, तो कभी भी किसी का साथ ना छोड़े। और कोई भी दिल से कहते हैं ना, जब हम किसी के दिल के तार मिले रहते हैं ना, तो दिल टूटता भी है लेकिन हम एक दूसरे को जोड़ते भी हैं अपनी ही बातों से। क्यों, सही कहा ना
0: बिल्कुल
1: मैंने?
0: बिल्कुल तुमने ठीक कहा। और इसी बीच एक ऐसा रहना हमारे पास संदेश आया है जिसने मुझे भी थोड़ा सा ना इमोशनल सा कर दिया है।
1: क्या बात है।
0: ये एक पिता की रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है, और बहुत ही खूबसूरत से केरला शहर से, और एक केरला का त्रिवेंद्रम सिटी है जहां से ये मैसेज हमें भेजा है गया श्री ने। और वो कहते हैं, डियर एंकर्स, आप लोग कितना अच्छे से बात करते हैं। और इनकी बेटी है रेना
1: अच्छा।
0: राजश्री, और मुझे लग रहा है मूड स्विंग होते होंगे उन्हें गया जी, कई बार पता नहीं चलता। ये जो एक एज होती है ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब भी कई बार ऐसा होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि वो किस बात पर मुझसे गुस्सा हो जाती है, और ना ही मुझे बताती है, और ना ही मैं समझ पाता हूं।
1: वरना ये कई बार ना, मैं अपने श्रोता से यही कहूंगी जिन्होंने हमें मैसेज किया है, कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं समझ पाते, हम शायद उन्हें समझा नहीं पाते। और बच्चे इस स्थिति में भी होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति इस तरह की होती है, क्योंकि बदलाव होता है शारीरिक और मानसिक, तो वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो कई बार उस एहसास को समझ ही नहीं पाते हैं। तो कभी कभी ना आप उसे अपनी आंखों से, प्यार से कोशिश कीजिएगा, प्यार से उसे समझाने की। क्योंकि कई बार हम माता पिता क्या करते हैं ना, बहुत गुस्से में उस चीज को टैकल करते हैं। मगर मैं आपसे यही कहूंगी कि उसे प्यार से समझाएं, प्यार से अपने एक रिश्ते को बैठ कर, कभी कभी ना हम बैठते नहीं हैं एक दूसरे के साथ, हम सोचते हैं वो समझ गया होगा, वो समझ गई होगी, मगर ऐसा नहीं है। समझाने के लिए हमें बात कहनी भी बहुत जरूरी है। तो चलिए बंधु।
0: हाँ, और श्रीनिवासन जी की बात से भी मुझे रहना ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इगर हैं कि ये जो दूरी है ना वो
1: वो
0: पट
1: दूर
0: जाए।
1: हो
0: और
1: जाए।
0: यकीन मानिए, थोड़ा सा आप उसे भी समय दीजिए, क्योंकि कभी कभी जैसा कि रैना ने भी बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आप बस अपना जो एहसास पिता वाला जो बनाए हुए है ना, उसे बनाए रखिए।
1: बरकरार।
0: और ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने, हालांकि हमें थोड़ा पुराना कहा, पुराना तो नहीं लेकिन एक

0: अति प्यारा सा सोनू जी की आवाज में ये गीत आपको और आपकी डॉटर को मैं और रैना डेडिकेट करते हैं।
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

0: रहना भाई, उम्मीद करते हैं श्रीनिवासन जी ने जो इतने प्यार से हमें संदेश भेजा था, बहुत जल्द उनके उनके डॉटर के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे और हम पे
1: बिल्कुल
0: बहुत ही
1: होंगे,
0: अच्छा सा मैसेज भी पहुंचेगा, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी के साथ अतुल जी ने भी, अतुल पटेल जी ने हमें मैसेज भेजा है और खासियत यह है कि ये संदेश रहना हमें सात समंदर पार से आया।
1: पार, क्या बात है, देखो हमारे श्रोता कहाँ कहाँ है।
0: हाँ, और ये हमें लिखते हैं केटी टेक्सस से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, तो ये

0: जो है परंपरा हालांकि हम आज आपके लिए अतुल जी तोड़ रहे हैं, क्योंकि सात समुद्र पार से आपने हमें संदेश भेजा है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमारे और साथी ये ना सोचे कि हम उन्हें बहुत लाइट ले रहे हैं। सभी के संदेश हम शामिल करेंगे बस इस एक म्यूजिकल छोटे से ब्रेक के बाद।

0: और भाई देखो रेनू, ये बजाया गया खूबसूरत सा गीत जो था, या फिर कहूँ ये जो आवाज थी, ये सात समंदर पार तक पहुंच भी गई। वो मुझे
1: बिल्कुल
0: अंदाजा से लगा कि अतुल पटेल जी का संदेश हम तक पहुंच गया है कि थैंक्स फॉर माय रिक्वेस्ट। और वो बता रहे हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, चाइल्डहुड में थे, तभी से वो विविध भारती सुनते हैं। भाई थैंक यू।
1: वो कितनी अच्छी बात है, वरना हमारे श्रोताओं के माध्यम से भी हम इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग जो हम कभी शायद भूल भी जाते हैं, लेकिन ये हमें याद दिलाते हैं और हम
0: रिवाइव
1: भी सुन
0: करवा
1: पाते
0: देते हैं।
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच बहुत सारे और भी तमाम हमारे लिसनर्स हमारे साथ
1: हाँ,
0: जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करते हैं सभी
1: सभी
0: को
1: का हम
0: लेकर आए।
1: शामिल करें।
0: अहमद
1: बिल्कुल
0: फूल वाले हमें सुन रहे हैं और लिखते हैं कि हमें नजरअंदाज मत कीजिएगा। भाई हमने कभी ऐसी हिमाकत की है कि अपने लिसनर्स को हम शामिल ना करें। अहमद भाई फूल वाले साथ में हैं, उनके दुखनी सदफ आरजू, जुही इकबाल, इमरान, और कापस हेड़ा बॉर्डर से है आमना, आसमा, परी, राबिया, मताशा, आशु, अहमद फूल वाले और समस्त फूल वालों की फैमिली। भाई फूल तो हमें वैसे ही बहुत पसंद है, तो आपने कैसे सोचा कि हम आपका संदेश जो है वो नहीं लेंगे। इसी बीच बुधराज खोरवाल हमारे साथ हैं, अनिल मोहन साहब मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज से हमें सुन रहे हैं, और हाजी मंजर साहब भी हमें सुन रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ हैं, दिलावर खान सुन रहे हैं, जीतू प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नंद किशोर घाटे हैं, और साथ हैं हमारे टी डी मल्होत्रा साहब भी मोहाली से इस समय हमें ट्यून इन करके सुन रहे हैं, अनिल कोखले हैं हमारे साथ, और बिट्टू गंगेजा हैं, छोटे अंसारी हैं, सिद्धार्थ गोडने, स्वीटी जोड़ा, और इसी बीच सतीश अनेजा साहब और हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी शायरी भी हमें लिख कर भेजी है
1: क्या
0: ना। हम
1: बात है,
0: कोशिश करेंगे कि
1: कोशिश
0: फिर से हम
1: करेंगे
0: उनका
1: पहुंचे।
0: संदेश लें, पैनल
1: बिल्कुल
0: सभी संदेशों को शामिल कर लें। इसी बीच कृष्णा हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं सुदर्शन मुखी साहब, ताज मोहम्मद है, किशन सपकाल भी हमारे साथ हैं, नासिर शेख हैं, रामलाल चंद्रवंशी हमें सुन रहे हैं, और साथ में हमारे दिलावर खान हैं, और दारा सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फगु राम यादव साहब हैं, और हम दोनों को प्रेम भरा नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार आपको
1: नमस्कार
0: भी।
1: जी।
0: और अनिल मोहन साहब कहते हैं कि जो कार्यक्रम के गीत हैं ना, वो इन्हें बहुत बहुत पसंद आ रहे हैं,
1: बहुत बहुत
0: और वो कहते
1: शुक्रिया।
0: हैं कि आपने कार्यक्रम के जो प्यार की जो मिठास है ना, उससे लबालब गीतों का चुनाव किया है, और प्यार वाकई जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मनचाहा प्यार मिलता है। बहरहाल हमेशा की तरह शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए वो हमें देते हैं बधाई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से साथ हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक। और अब एक वो संदेश है जिसके लिए हम बहुत देर लगा रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: है
1: अभी
0: ना।
1: एक संदेश आया है हमारा, हमारे तन्वी के, हमारे श्रोता हैं, उन्होंने हमें भेजी है अपनी एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत से।

0: भाई वाकई बहुत ही खूबसूरत सा गीत रहना, और यही एक
1: ये।
0: हमसफर, सच्चे हमसफर का मतलब जो अगर हम कहें यही होता है कि कोई भी बात बिगड़ जाए
1: बिल्कुल
0: तो वो एक ऐसा साथी खड़ा हो जो हर मौके पर हमारा साथ
1: साथ
0: दे, है
1: दे।
0: ना।
1: रिश्ता तो वही होता है ना, असली
0: बिल्कुल
1: रिश्ता वही है।
0: बिल्कुल। और इसी बीच देखो सतीश अनिजा साहब ने क्या खूब हमें लिखकर भेजा है। वो कहते हैं, तेरी सादगी ही मेरे दिल का सुकून बन गई, तेरी बातें हर रात की हंसी गुफ्तगू बन गई, ना जाने किस मोड़ पर जोड़ा खुदा ने ये रिश्ता, कि तू मेरी आदत, मेरी ख्वाहिश और मेरी
1: क्या
0: रूह बन गई।
1: बात है,
0: बहुत ही डीप
1: खूबसूरत।
0: है ना, बहुत ही प्यारा संदेश सतीश अनिजा साहब आपने हमें भेजा है। और इसी बीच हमारे और भी कई साथी हैं, लालगिरी साहब भी हमें राजस्थान से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यक्रम जो है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी बीच अश्विनी चुग साहब हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं हर गीत इन्हें लाजवाब लग
1: क्या
0: रहा
1: बात
0: है।
1: है। और उषा
0: और
1: मोहन जी का भी मैसेज आया
0: हाँ,
1: है।
0: उषा मोहन जी लिखती है, रैना जी और वंदना जी, जहाँ एक और सात समंदर पार से आपको सुना जा रहा है, वही इस समय आपका एक नियमित श्रोता
1: वाह
0: बिल्कुल आपको करीब से सुन रहा है, ठीक आपके प्रसारण भवन के सामने से ही।
1: क्या बात
0: बधाई
1: है।
0: स्वीकार कीजिए। और पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन के साथ ये संदेश हम तक पहुंचे। बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया भाई
1: शुक्रिया
0: उषा
1: आपका।
0: मोहन जी और अनिल मोहन जी। हमें बस यूं ही सुनते रहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं रहना, अगर हमारे लिसनर्स हैं हमें पसंद कर रहे हैं वो है तो हमारा वजूद
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल, आप हमें इसी तरह से अपना प्यार, अपना संदेश हमें भेजते रहें और हम इसी तरह से कार्यक्रम करते रहें।
0: करते रहें। और अश्विनी चुग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऐसा खूबसूरत गीत जो प्रेम की पराकाष्ठा को बयां करता है, या फिर एक ऐसा एहसास जिसे कई बार हम शायद लफ्ज नहीं दे पाते लेकिन उसे बखूबी
1: बहुगे
0: जिया जा सकता है।

0: और रहना इसी के साथ कार्यक्रम को हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर ले आए हैं। अनिल कोहले इसी समय हमारे साथ जुड़े हैं, दिलावर खान साहब ने बहुत ही खूबसूरत सी चंद लाइनें भी लिखी हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम उसे शामिल कर पाए। अरुण कुमार पांडे जी भी हमें सुन रहे हैं और साथ में है कृष्णा जटोलिया साहब भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: फिर मिलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश लेकर, और आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ हम संपन्न करते हुए आपको छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारा प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। प्रातः 4:50 पर एक बार पुनः हम आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरेश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में

0: करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तमिल भाषा की शास्त्रीय और कालजयी ज्ञान कृति तिरुकुलर का रूसी अनुवाद सौंपे जाने की सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोलिक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: half of the world's population, and that is why they have a great dynamic, vibrant, and domestic markets. Iranian President Masoud Pezeshkian suggested that one of the most important steps is to expand the use of national currencies in trade among the members. He said this step must be accompanied by the establishment of the necessary instruments for managing currency risks and reciprocal settlements. The stage is all set for the 18th BRICS summit to be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. During the summit, Prime Minister Narendra Modi will play host to world leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iranian President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim arrived in New Delhi to attend the BRICS summit. Deputy Prime Minister of Russia, Alexei Ovashuk, President of Egypt, Abdel Fattah al-Sisi, Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, President of and Vice President of Nigeria, Qasim Shettima, have also arrived for the summit. In the Junior Asia Cup hockey, Indian junior men's team defeated Malaysia 3-1 in the first semi-final yesterday to book a place in the final at Mochi in China. India will face South Africa in the final on Sunday. South Korea defeated Pakistan yesterday to reach the final. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो के मुताबिक वक्त हो चला है 12:10 और पूरे हो गए ये 10 सेकेंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको हर दिन नए कलाकार के बारे में बताते हैं, उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने किस तरह से खुद को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए किस तरह से संघर्ष किया। ये वो कहानियां होती है जो हमें आपको प्रेरित भी करती है, और इन गीतकार, संगीतकार, कलाकार ने अपने कला के जरिए हम सबका या तो मनोरंजन किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज फिर से एक ऐसे ही कलाकार के बारे में हम बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी आवाज के जरिए हम सबके दिलों में खास जगह बनाई है। अपनी आवाज के जरिए उन्होंने भारत देश का प्रतिनिधित्व भी किया है, क्योंकि इन्होंने दुनिया के अलग अलग जगहों पर भी बहुत सारे शोज किए, और जब कोई कलाकार भारत से बाहर जाकर शो करता है तो जाहिर तौर पर नाम तो देश का ही होता है। इसके अलावा वो फिलहाल जीवित है और अपनी कला के जरिए हम सबका लगातार मनोरंजन कर ही रहे हैं। आखिर किस कलाकार के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, आप इस गीत को सुनकर तो काफी हद तक जान भी जाएंगे, लेकिन इस गीत के बाद हम खुलासा करेंगे। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में। मैं हूं इस वक्त आपके साथ आपका दोस्त संजय सावर्ण।

जी हाँ दोस्तों, इस आवाज से कौन रूबरू नहीं है। आपने काफी हद तक जान लिया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं कैलाश खेर के बारे में। जी हाँ, कैलाश खेर एक भारतीय पार्श्व गायक, लाइव परफॉर्मर और संगीतकार हैं। उनके संगीत में भारतीय लोक और सूफी परंपराओं का पॉप रॉक और आध्यात्मिक प्रभावों के साथ मेल बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। कैलाश खेर अपनी अलग आवाज की वजह से खूब जाने जाते हैं। इनके गानों को खूब पसंद किया जाता है और इन्होंने फिल्मों में भी बहुत सारे गीत गाए, लेकिन इनकी पहचान एक सूफी गायक के रूप में ज्यादा है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावन, और आज बातें हो रही है जिस कलाकार की, वो हैं कैलाश खेर। जी हाँ, कैलाश खेर का जन्म 7 जुलाई 1973 को पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक गांव विनोद नगर में एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनके पिता मेहर सिंह खेर एक पारंपरिक लोक गायक थे और उनकी माँ का नाम चंद्रकांता मेहर सिंह खेर है। कैलाश खेर ने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के मेरठ में बिताया था। अब ये तो बातें हो गई कि कैलाश खेर का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, लेकिन कैलाश खेर ने किस उम्र से गाना गाना शुरू किया, किस तरह उन्हें सफलता मिली, उनके जीवन में किस तरह की कठिनाइयां भी आईं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म स्वदेश से।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावण। वक्त हो चला है 12:33 और बातें हो रही है कैलाश खेर की। जी हाँ, कैलाश खेर की संगीत में रुचि कम उम्र में ही हो गई थी और 14 साल की उम्र में उन्होंने शास्त्रीय और लोक संगीत की

ट्रेनिंग के लिए एक अच्छे गुरु की तलाश में घर छोड़ दिया था। कैलाश खेर का ऐसा मानना था कि अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए एकांत की जरूरत है। कमाल की बात यह है कि इतनी छोटी उम्र में अपनी पढ़ाई, रहने सहने के खर्च के लिए उन्होंने दूसरे छात्रों को संगीत भी सिखाना शुरू कर दिया था। और एक बात और भी उनके साथ हुई कि चूंकि उन्होंने घर छोड़ा था इस उम्मीद में कि उन्हें एक सच्चे और अच्छे गुरु मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कोई सही विकल्प नहीं मिल पाने की स्थिति में खेर ने मशहूर उस्तादों का संगीत सुनकर अपनी सीख को, यानी अपनी संगीत को सीखना जारी रखा। उन्होंने किसी से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, वो बस सुनते थे जो उस वक्त बड़े बड़े सिंगर थे, उनकी आवाज में गाए गए गीतों को, उनके द्वारा लयबद्ध किए गए संगीतों को, और फिर उससे ही उन्होंने सीखना शुरू किया और काफी कुछ हासिल भी किया।

जी हाँ दोस्तों, कैलाश खेर जिस तरीके से संभव हो पा रहा था, संगीत तो सीख ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपने एक पारिवारिक मित्र के साथ भारतीय हस्तशिल्प निर्यात व्यवसाय में भी हाथ आजमाया और वो इस काम में भी जुट गए। 1999 तक वो इस निर्यात व्यवसाय के साथ भी जुड़े रहे, लेकिन 1999 में ये काम बंद हो गया। और इस काम के बंद होने के बाद कैलाश खेर अवसाद से जूझने लगे और उन्होंने आत्महत्या का भी प्रयास किया। हालांकि इसके बाद वो इससे उबरे और इस दुख से, तकलीफ से उबरने के बाद उन्होंने 6 महीने सिंगापुर और थाईलैंड में बिताए। इसके बाद वो वापस अपने परिवार के पास दिल्ली लौट आए और फिर यहां पर पत्राचार कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। यानी उनके जीवन में संघर्ष कम नहीं था। अब इसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, इसके बारे में हम बात करेंगे।

आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। और दोस्तों, वक्त देखिए ना कितनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की तरफ भी है। और जैसा कि हमने बात की थी कि 2001 में कैलाश खेर सिंगिंग में अपने करियर को बनाने के लिए मुंबई चले गए। वहां उन्होंने हॉस्टल में रहकर और अपना जीवन चलाने के लिए, या यूं कहिए कि गुजारे के लिए, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी काम किया। उन्हें एक जिंगल के लिए राम संपत के पास भेजा गया और वहां उनकी आवाज को चुन लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया और इसके लिए उन्हें 5,000 रुपए भी मिले थे। इसके बाद उन्होंने कई टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए कई सारे जिंगल रिकॉर्ड्स किए और कई ब्रांड्स के साथ काम करके अपनी कुछ पहचान, यानी कुछ हद तक इन जिंगल्स के जरिए अपनी पहचान बनाई। इनकी आवाज को लोगों ने सुनना शुरू किया और उसके बाद इन्हें कब फिल्म में गाने का मौका मिला ये बताएंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं पहले

जी हाँ दोस्तों, कैलाश खेर ने मुंबई में बहुत संघर्ष किया और तमाम कोशिशों के बाद 2003 में उन्हें फिल्म अंदाज में एक गीत गाने का मौका मिला और जिसके बोल थे रब्बा इश्क न होवे। और इसके बाद उन्होंने इसी साल एक गीत गाया अल्लाह के बंदे और इस गीत की वजह से उनकी लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने 2005 में मंगल पांडे द राइजिंग में एक गीत गाया और इसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल भी निभाया था। फिर 2006 में कॉरपोरेट में उन्होंने एक गीत गाया ओ सिकंदर। इन सब गीतों ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की और उन्हें एक सफल गायक के तौर पर स्थापित करने का भी काम किया। साथ ही साथ उनकी पहचान भी उनकी आवाज़ की वजह से बनती चली गई।

जी हाँ दोस्तों, कैलाश खेर मुख्य रूप से गजल, सूफी, कव्वाली, लोक संगीत और अन्य भक्ति गीत भी गाते हैं। उनके गानों में अक्सर शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक बोल, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ रोमांटिक गाने भी शामिल हैं। 2014 तक उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, सिंधी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी और राजस्थानी सहित 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में गीत गाए थे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 500 से ज्यादा गाने गाए और 1000 से ज्यादा रेडियो और टेलीविजन जिंगल भी रिकॉर्ड किए। कैलाश खेर इस वक्त 53 साल के हैं और वो पूरी तरह से संगीत में एक्टिव हैं। अपने गानों के जरिए, अपनी आवाज के जरिए वो हम सबकी दिलों पर राज करते हैं और उनके गीत आज भी खूब सुने और सराहे जाते हैं। फिलहाल सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में इतना ही। अपने दोस्त संजय सावन को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। लेकिन हम आपको उनके इस गीत के साथ छोड़े जाते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। अब रात्रि के 1 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।

0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों को यथासंभव सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यालय मंत्री की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition InnoProm India. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar during their meeting. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, safeguarding freedom of navigation and commerce, and the safety and well-being of seafarers. The Prime Minister thanked Iran for its regular high-level participation in the BRICS-related meetings despite the challenging circumstances. The Prime Minister also held a bilateral meeting with UN Secretary General Antonio Guterres. Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centers of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the economic strength of BRICS has grown at nearly twice the pace of the rest of the world. He said new possibilities for innovation, spanning everything from grassroots initiatives to frontier technologies, are taking shape within the BRICS countries.
0: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
2: Addressing the forum, Russian President Vladimir Putin said, over the last 5 years, more than 40

0: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
1: आइए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों में यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा योजना पहले से निर्धारित करने और

अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना, सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्यों देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। कांगो के पूर्वी हिस्से में आरंभ हुआ जानलेवा संक्रामक रोग इबोला अब इस अफ्रीकी देश के 7 प्रांतों में फैल गया है। यह इस बीमारी का अब तक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता प्रकोप है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर

एक तो ये कि भूपेन्द्र दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं?

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी इस कार्यक्रम में आपने गीत और गजल के आनंद लिए और अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे भक्तिमय संगीत का कार्यक्रम अर्चना, जिसमें आज आप सुनेंगे कर्नाटक भक्तिमय संगीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24/7।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप पारसाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ताला वैद्या कचेरी येला वेंकटेश्वरा राव तलमदी।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म, कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना ताला वैद्या कचेरी एला वेंकटेश्वरा राव तलमदि। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली के IR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर सुन रहे थे। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारी कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम जिन्हें आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे अश्वथासन और तितली क्रिया के बारे में। 5:20 पर वक्त होगा देशभक्ति फिल्म संगीत का, और उसके बाद 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग ललित में तनिमा ठाकुर का गायन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पैट्रियोटिक भजन सबद और नट। 6:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। हर रोज की तरह आज भी 6:45 पर होगा श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे। सात बजकर दस मिनट पर कार्यक्रम संगीतिका का होगा आयोजन, और उसमें आप सुनेंगे रोली बरवा का भजन गायन। 7:30 पर आपके लिए लेकर आएंगे गीतो भरी गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम थे जिन्हें आप इंद्रप्रस्थ पर आज सुन सकते हैं। सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और

0: बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9 बजे से 30 मिनट से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है। भारत ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी विकास विभाग सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। वहीं महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल दुबई में भारतीय टीम का सामना पिछले चैंपियन श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, सुबह के 5:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं खास कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे अश्वथासन और तितली क्रिया के बारे में।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से

वापस भरें, दोनों हथेलियां 28 के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं। पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं।

0: से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें, अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।
1: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
1: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
2: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
1: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग ललित में तनिमा ठाकुर का गायन।